दोस्तों, इस गीत की धुन सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा गीत है। लेकिन इस गीत को सुनवाने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि हम जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, आसपास का वातावरण और वहां की हवाओं से हम वाकिफ हो जाते हैं, और हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, हवाओं फिजाओं की तरह उसमें खुशबू महका दे।

दोस्तों, ये जिंदगी भी इसी तरह छोटी ही है। आज का पल कल बन जाता है और कल का बीता हुआ लम्हा परसों बन जाता है, इसलिए ये जिंदगी दो चार खड़ी होती है, इसे हंसी खुशी से बिता देना चाहिए।

दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी घड़ियां आती हैं। कभी खुशी के मौके आते हैं और कभी हमें अच्छा मूड नहीं होता, वैसे लम्हे आ जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को संभाल कर ऐसी घड़ी में रखते हैं।

भाई हम भी अपनी राम राम कहेंगे इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हर गाना जो हम कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको अच्छा लगता होगा, इसी उम्मीद के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। नमस्कार।

FM 106.1 MHz पर FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम और अब सुनते हैं वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

बचकर 55 मिनट तक। छह बजकर 55 मिनट से होंगे संस्कृत में समाचार। 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे 7 बजकर 5 मिनट पर।

7:10 पर गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम होगा। आज सवेरे कार्यक्रम होगा 7:30 पर और 8 बजे समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 8:30 पर उर्दू में आप समाचार सुन सकते हैं। आठ बजकर 45 मिनट पर म्यूजिकल दिल लगी में गीतों के साथ होंगी सुनीता चौहान। नौ बजे हिंदी में समाचार होंगे और 9:05 पर अंग्रेजी में। 9:10 की अगली पेशकश में 9:10 पर आपके साथ होंगी प्रियांशी भटनागर। तो ये था झरोखा अब से लेकर कुछ कार्यक्रमों का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में

0: प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Ashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. It focuses on multiple strategic components designed to ensure comprehensive and sustainable connectivity. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized so far. According to the Office of the Chief Electoral Officer of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of the special intensive

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। 6:11 और 58 सेकंड भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण सुन रहे हैं आप सुनीता के साथ। नमस्कार, सुप्रभात।

स्वीट मार्डन के अनुसार सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वो हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया और जीता।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, ये शरीर नश्वर है और इसके जरिए सिर्फ एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है।

श्री रामचरितमानस में उल्लिखित है, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैरु अकारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। अर्थात काम क्रोध मद लोभ के अधीन लोग निर्दयी कपटी

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण सुन रहे हैं आप। 6:35 और 40 सेकंड आज शनिवार की सुबह, साथ हूं मैं सुनीता।

श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म सदा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करो। इसी कर्म से जनक ने सिद्धि प्राप्त की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, और अब समय हो चला है रामचरितमानस गान का। आइए बालकांड से सुनते हैं ये अंश।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, और अब आप सुनेंगे समाचार संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में। और समाचारों के बाद एक बार फिर सुनीता होगी आपके साथ यहीं एफएम गोल्ड पर, लेकर प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात। तो आइए सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण

0: के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. The Prime Minister will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pach Padra in Balotra. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Ministry and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary, were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbha for next 2 days. Gujarat Anti-Terrorist Squad has arrested

स्टूडियो की घड़ी 7:10 का कर रही है इशारा। आपका रेडियो ट्यून्ड है 100.1 MHz पर। सुनीता के साथ आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात आकाशवाणी FM गोल्ड पर। और पहला गाना वो जिसे मधुबाला जी सुन रही थी रेडियो पर, ये वाला गाना।

1960 की फिल्म बरसात की रात का ये सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब की आवाज, साहिर लुधियानवी थे गीतकार और संगीत रोशन का था। यकीन जानिए जब इस गाने को देखती हूँ मैं तो बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब रेडियो का जबरदस्त क्रेज हुआ करता था। हिंदी फिल्मों में भी ऐसे कई गाने हैं जिनमें स्क्रीन पर रेडियो होता है और होते हैं उसके आसपास संगीत प्रेमी। 1977 की फिल्म अनुरोध से नेक्स्ट सॉन्ग किशोरदा की आवाज में।

कहीं कहीं होगी हल्की बारिश, बादल छाए रहेंगे और मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा आज तापमान। ऐसे में मूड और माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए सुनते रहें एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है गोल्ड सुप्रभात, मैं हूं सुनीता और आज मैंने आपके लिए चुने हैं रेडियो सॉन्ग्स। और अब अभिमान फिल्म से इस गाने को एंजॉय करते हैं।

वैसे हिंदी फिल्में गानों में रेडियो पर गाने एंजॉय करते हुए देखना काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे एक और गाना है मेरे पास जिसमें हीरो स्टूडियो कंसोल पर हैं, जैसे इस वक्त मैं हूँ, और हीरोइन रेडियो पर वो गाना सुन रही हैं। उदित नारायण जी ने ये गाना गाया है। पर इस सॉन्ग से पहले मैं बता देती हूँ कि आज 10:30 बजे सुबह आप सुन पाएंगे रिक्वेस्ट बेस्ड शो दिल का मेल बॉक्स। तस्वीर प्रोग्राम होगा 11:10 पर, जिसमें आज जानकारी महाबलेश्वर की होगी, और कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम में दोपहर 1:10 पर प्लेबैक सिंगर आज रहेंगे अमित कुमार, उनकी बातें होंगी। तो चलिए, ये जो गाना अभी मैंने जिक्र किया वो आपके लिए प्ले कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा गाना है।

0: सच बताऊं जी तो चाहता है कि बस ये गाने यूं ही बजते रहें और हम इन्हें एंजॉय करते रहें, लेकिन बीच में जानना जरूरी है कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। समाचार सेवा का प्रोग्राम अब सुनेंगे आप आज सवेरे, आइए सुनते हैं।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ हैं आज तन्वी खुराना। आज के इस अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। महानगरों की खबरें होंगी आज के इस अंक में, इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे और मौसम का हाल जानेंगे और अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार तन्वी को। नमस्कार तन्वी।
1: नमस्कार Farhad, good morning and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashwani network. Yes, absolutely. This is our daily news magazine program Aaj Savere and today is 4th of July 2026. Along with that, it's also a Saturday. So a very happy Saturday. I think you can all live a little more, laugh a little more. Well, who knows what future has in store for you. So better live in the present, right Farhad?
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर अपना प्रेजेंट जो है वो यानी आज का जो है वक्त खराब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन यूं ही जीते रहिए।
1: सो लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज़ हेडलाइंस।
0: जी तन्वी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान और गुजरात यात्रा से। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद बालतोरा जाएंगे, वे कई विकास परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरी परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन के निर्माण को भी मंजूरी देंगे। इसके अलावा वे फिर गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे।
1: Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries

0: Ministries and departments, including the Union Home Secretary and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary, were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought situations in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with the state government to advise farmers on the appropriate crops to sow.
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस ने बताया है कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
0: कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड दैट इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स $1 trillion एक्सपोर्ट टारगेट विद नियरली 15% ऑफ द एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said to achieve the target, goods exports will need to increase from about $440 billion to around $530 billion, while services exports will have to rise from roughly $421 billion to about $470 billion. He expressed confidence that merchandise exports would register around 15% of growth and services exports about 10 to 11% growth in the first quarter.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री रोनाल्ड लेस्क्यू ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्वता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का भी संकल्प लिया।
0: In Jammu and Kashmir, a total of 12,168 pilgrims paid obeisance at the Holy Cave Shrine on the opening day of the annual Amarnath Yatra, as the pilgrimage began from the twin base camps of Baltal and Pahalgam. More on this from our correspondent.
2: The yatra commenced in the early hours from both the traditional 48-kilometer Noon One Pahalgam route and the shorter 14-kilometer Baltal route. Pilgrims, including men, women, and sadhus, began their journey to the 3,880-meter-high Holy Cave Shrine amid chants of "Bam Bam Bhole." Meanwhile, the Jammu and Kashmir administration has issued an advisory urging devotees to undertake the pilgrimage only after completing advance registration and to strictly follow their allotted travel dates in line with the Supreme Court directions. A daily cap has been fixed on the number of pilgrims to ensure safety and smooth conduct of the yatra. The administration assured that every registered devotee will get an opportunity to undertake the pilgrimage as per the prescribed procedure and carrying capacity. Pilgrims have been urged to maintain discipline, cooperate with the authorities, and follow all guidelines for safe and orderly conduct of the pilgrimage. Authorities have deployed multi-tier security arrangements along both the routes with personnel from J&K Police, CRPF and other security forces ensuring safety and smooth conduct of the yatra. The 57-day pilgrimage will conclude on 28th of August. With Gulshan Raina's report, this is Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
0: Moving on to sports, in the FIFA World Cup, Argentina beat Cabo Verde 3-2 after extra time in the thrilling round of 32 match at Miami Gardens in the US to enter the round of 16. Earlier, Egypt advanced after defeating Australia 4-2 in a penalty shootout at Arlington in the US. We have a report.
3: Defending champions Argentina survived a major scare against Cabo Verde, a nation of just over 5 lakh people, before booking their place in the round of 16. Lionel Messi put Argentina ahead in the 29th minute with his 7th goal of the tournament and the 20th World Cup goal of his career in his 30th appearance across 6 editions. Diroy Duarte restored parity for Cabo Verde in the 59th minute, forcing the match into extra time. Lisandro Martinez gave Argentina the lead.

0: once again, but Sidney Lopes Cabral produced a stunning equalizer to keep the underdog's dream alive. The decisive moment came in the 111th minute when Cristian Romero's header from a messy corner deflected off Dine Borges and into the net for an own goal, sealing Argentina's dramatic victory. Earlier, Australia and Egypt were tied 1-1 after regulation time and goalless extra time before Egypt prevailed 4-2 in the penalty shootout to register their first ever World Cup knockout stage victory. Argentina will now face Egypt in the round of 16 on Tuesday. Manik from Sports Desk for Akashvani News.
1: और अब विंबलडन की बात कर लेते हैं। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने अपने करियर की 105वीं जीत दर्ज की। सात बार के चैंपियन जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रिंडरनेक्स को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
2: And in men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today. The match will begin at 7 this evening, Indian Standard Time. The opening game of the 5-match series was abandoned due to rain at Chesterley Street.
1: और श्रोताओ, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले तन्वी से जानते हैं बेंगलुरु में क्या है खास।
2: The Karnataka Tourism Department is preparing a comprehensive coastal Malnad to Karnataka tourism policy to unlock the tourism potential of these regions. The tourism minister in the state, K.J. George, has informed that this new policy under preparation will have a strong focus on cruise tourism, beach tourism and world-class visitor infrastructure. He was speaking after a meeting with senior officials of the department after the tourism initiatives and long-term strategies being worked out to position Karnataka among India's leading tourism destinations. The new region-specific tourism policy covering 6 districts across the coastal and Malnad regions will promote theme-based tourism circuits, beach tourism, cruise tourism, adventure tourism and community-led tourism initiatives that generate sustainable economic opportunities for the local communities. The aim is to attract more international cruise liners to Bengaluru and other ports in the state and develop curated travel experiences that encourage cruise passengers to spend time in Karnataka.
1: और अब राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। वहीं घर घर जाकर मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र बांटने का काम भी अभी जारी है। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में प्रारंभ की गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रथम समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली भाजपा महामंत्री और एसआईआर प्रक्रिया प्रमुख योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि दिल्ली में अन्य दलों की तरह ही भाजपा के भी बूथ लेवल एजेंट 2 चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। और उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 13,033 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं और इनमें से 12,000 से अधिक पर भाजपा के बीएलओ चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं।
2: Moving towards Hyderabad, the Telangana government has launched the online beneficiary management and monitoring system for the Christian Minorities Finance Corporation to enhance socio-economic empowerment through transparent, technology-driven welfare initiatives. Inaugurated by Minorities Welfare Minister Mohammad Azruddin at the State Secretariat, the digital portal streamlines the application process for several self-employment and livelihood schemes. The initiative introduces online applications for the sewing machine scheme aimed at empowering women alongside transport and petty business schemes offering motorbikes, e-bikes, scooters and e-scooters to the eligible youth. These initiatives focus on fostering sustainable entrepreneurship and financial independence across the community.
1: और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के नियमों में सुधार, सरकारी फाइलों के शीघ्र निपटान और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के सदस्य वाली एक संयुक्त समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा। वहीं मुंबई के मनोरी में प्रतिदिन 20 करोड़ लीटर पानी को खारे पानी में बदलने वाले संयंत्र का काम दिसंबर में शुरू हुआ और इसके 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रभारी उदय सामंत ने कहा कि ये परियोजना मुंबई में पानी की कमी को दूर करने में सहायक होगी।
2: and we have some

0: important information from Goa. Goa's innovation and startup ecosystem will take center stage this evening as the Idea Buzz Startup Goa Day 2026 Grand Finale is held at the Entertainment Society of Goa in Panaji. We have a report.
1: The event organized by Sangam Seva Foundation in association with Idea Buzz and supported by the Goa government will bring together innovators, entrepreneurs, investors, mentors and industry leaders on a common platform. Startups from sectors including technology, tourism, manufacturing, agriculture, healthcare, education and sustainability will showcase their innovations. The program will also feature keynote sessions, networking opportunities and an award ceremony to announce the top 4 startups and the first Goenso Udyogpati, that is in the List of Goa. Selected startups will receive mentorship, incubation support, investor connect opportunities, and national exposure through the Idea Buzz Startup Fest in New Delhi. More than 200 participants are expected to attend. Chief Minister Dr. Pramod Sawant will be the chief guest, while Information Technology and Tourism Minister Rohan Khamte will attend as the guest of honor. For Aaj Savere, Mahesh Sobde, Akashwani News, Panaji.
0: और अब बात पश्चिम बंगाल की. मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल निकट भविष्य में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नया औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार है. कल बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की आधिकारिक घोषणाएं जल्द होने की उम्मीद है. और श्रोता, आइए महानगरों के मौसम का रुख कर लेते हैं. तो आज तैयार हो जाइए, राजधानी दिल्ली में आज बारिश की संभावना है, यानी कि गर्मी से तन्वी राहत मिल सकती है. आज न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं मुंबई में भी आज बादल छाए रहेंगे और बारिश रहेगी. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. कोलकाता में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछारें पड़ सकते हैं. न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. And moving towards Chennai, Bengaluru and Hyderabad, Chennai is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 29 degrees and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The temperature will hover somewhere between a minimum of 23 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius. और श्रोताओं, आज है 4 जुलाई 2026. तो आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं. तो तन्वी, सबसे पहले क्या है?
2: लेट्स बिगिन विद द ईयर 1776. द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड इन फिलाडेल्फिया एंड फॉलोड बाय दैट इन द ईयर 1784 फ्रेंच वुमन एलिजाबेथ थिबल बिकेम द वेरी फर्स्ट फीमेल टू फ्लाई ऑन अ हॉट एयर बलून दैट वॉज अनटेथर्ड. After that, 1826, in a striking historical coincidence, both John Adams and Thomas Jefferson, the second and the third U.S. presidents and signers of the Declaration, died on the 50th anniversary of the Declaration's adoption.
0: जी तन्वी, और 1894 की अगर बात की जाए तो हवाई गणराज्य का गठन आज ही के दिन किया गया था, जो बाद में 1900 में आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बना.
2: In the year 1896, Henry Ford completed the first gasoline-powered vehicle, Ford Quadricycle, and also gave a test run.
0: 1946 में आज के दिन फिलीपींस को अमेरिका से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई.
2: The first Pulitzer Prize awards were awarded on 4th of June 1917. These prizes, established by Joseph Pulitzer's will, were awarded for the work published in 1916. The first awards were for journalism and letters, with Herbert Baird Swoop winning for reporting and the New York Tribune winning for editorial writing. And in 1919, the 19th Amendment to the U.S. Constitution, which gave women the right to vote, was passed by the Senate.
0: और तन्वी, आज के दिन 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टाइगर हिल पर घुसपैठियों को खड़ेत कर कब्जा कर लिया. और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम लोग याद कर लेते हैं. सबसे पहले बात हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशील कुमार की. वो 60 के दशक की हिट फिल्म में दोस्ती में बैसाखी का सहारा लिए अपंग रामनाथ के किरदार में पर्दे पर नजर आए और इस फिल्म का गाना भी काफी लोकप्रिय रहा. तो आइए सुन लेते हैं.

0: इसके अलावा फिल्म फिर सुबह होगी, धूल का फूल, मैंने जीना सीख लिया, काला बाजार, श्रीमान सत्यवादी, संजोग, संपूर्ण रामायण इनकी काफी लोकप्रिय रही। राजश्री प्रोडक्शंस के मालिक ताराचंद बड़जात्या 1959 में प्रदर्शित हुई बांग्ला फिल्म लालू भूलू का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे, जिसकी केंद्रीय भूमिकाओं के लिए वे 17-18 वर्ष के दो नए लड़कों की तलाश कर रहे थे और इसी में उन्होंने लिया सुशील कुमार को। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: And the next person in our list is Naseem Bano. It is her birth anniversary. An Indian actress, and she started her acting career in the mid-1930s. She continued to act till mid-1950s. Her first film was Khoon Ka Khoon, which was based on Hamlet. That came in 1935. According to the composer Naushad, she got the sobriquet Pari Chehra, that's the fairy face, Naseem, through the publicity advertisements of her films, and she was the mother of actress Saira Bano. Let's hear one of the beautiful tracks picturized on her from her film Anokhi Ada.

0: Let me just tell you some of the films that she did. Pukar, Chal Chal Re Naujawa, Anokhi Ada, Sheesh Mehel, Khan Bahadur, Meetha Zeher, Vasanti and many more. And she worked in what became the most famous film of hers, that was Pukar, in the role of Noor Jahan. To prepare for the film, she went riding every day and also learned singing. The film took over a year to complete and brought Naseem into prominence into a spectacular manner. And the publicity of the film dealt on her beauty, calling her beauty queen and Pari Chehra, a name that she was to endure over the years before passing on to her daughter Saira Bano.
1: और श्रोताओं, आइए अब जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनके विचार को जान लेते हैं। उनका मानना था कि किसी की निंदा ना करें, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, और अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। जी हाँ, ये कहना था स्वामी विवेकानंद का। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रखंड विद्वान थे ये। विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। और शिकागो में भी उन्होंने एक अपनी स्पीच दी थी, हमने एक आर्काइव दूरदर्शन के उसमें से निकाला है। तो तन्वी, क्यों ना ये स्पीच सुन लेते हैं।
2: इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पांस टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम व्हिच यू हैव गिवन अस। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मंक्स इन द वर्ल्ड। आई थैंक यू in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
0: Like Farhad said, today is his death anniversary. We are talking about Swami Vivekanand. Celebrated as a patriotic saint, his birth anniversary is observed in India as the National Youth Day. And William Hastie, the principal of Scottish Church College, Calcutta, from where Narendra graduated, wrote about him, "Narendra is really a genius. I have travelled far and wide, but I have never come across a lad of his talents and possibilities, even in German universities, among philosophical students. He is bound to make his mark in life."
1: बिल्कुल तन्वी, और उन्होंने कहा था कि हर धर्म समुद्र तक पहुंचने वाली नदी की तरह है, रास्ते अलग हैं, मंजिल एक है। उन्होंने भारत को एक स्पिरिचुअल गुरु बताया और कहा कि भारत ने दुनिया को शांति और

0: और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा। भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक अम्मू स्वामीनाथन ने भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं शामिल थीं। इन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अम्मू स्वामीनाथन इन्हीं में से एक थीं।
1: एंड टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मैरी क्यूरी, अ पोलिश एंड नेचुरलाइज्ड फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट। शी शेयर द 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद हर हस्बैंड पियर क्यूरी for their joint researches on the radioactivity phenomena. She won the 1911 Nobel Prize in Chemistry for the discovery of the elements radium and polonium by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element. She was the first woman to win a Nobel Prize, the first person to win a Nobel Prize twice, and the only person to win a Nobel Prize in two different scientific fields. She and her husband were the first married couple to win the Nobel Prize, launching the Curie family legacy of 5 Nobel Prizes. She was in 1906 the first woman to become a professor at the University of Paris. There's a movie based on her titled Radioactivity. Let's hear a dialogue of the main protagonist, who is playing the role of Marie Curie.
2: I want to tell you about radium.
3: A most peculiar and remarkable element because it does not behave as it should.
2: Science is changing. And the very people who are running science are the people who believe the world is flat. And I'm going to prove them wrong.
3: You're proposing a partnership.
2: There is another element that's skewing the results.
3: You have fundamentally misunderstood the atom.
4: Our work's been nominated for the Nobel Prize for our discovery of radioactivity. And the commendation...
1: In 1895, Marie Curie married Pierre Curie, with whom she conducted pioneering research on radioactivity, a term she coined.
0: और श्रोताओं, आज जानी मानी सिंगर श्रद्धा पंडित का भी जन्मदिन है। इन्होंने 1998 में फिल्म खामोशी से अपने गायन के करियर की शुरुआत की। इन्होंने दिल्ली 6 का ससुराल गेंदा फूल, लेडीज वर्सेस रिकी बहल का जिगर का टुकड़ा और काफी सारे लोकप्रिय गीत गाए। तो आइए सुन लेते हैं उनका ये प्यारा सा गीत, पहली पहली बार बलिए।

0: stations of the Imperial Police to acquire firearms for his forces, which resulted in significant police casualties. And the Alluri Sitaram Raju district and the Alluri Sitaram Raju patrons in May 2022, subsequently paying homage to the brave sons and daughters of Uttarakhand in security of the nation and furthering the cause of the Uttarakhand War Memorial Trust. So here we have come towards the end of our program.
1: जी बिल्कुल तन्वी, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा अपने श्रोताओं को अलविदा, लेकिन चलते चलते हम स्वामी विवेकानंद के विचार को याद कर लेते हैं, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से भी यही कहना चाहेंगे, अगर आपने ठान लिया है तो आज ही उस काम को जरूर करिए, तभी आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो इसके साथ ही वक्त हो चला है अब आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप दोबारा इस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
0: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभाता हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
3: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
2: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
4: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

0: पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होलांड लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500

0: औषधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़, जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की

0: से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें। मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती। बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन, जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat Anti-Terrorist Squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
2: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total

0: of military purchases for all three services to boost combat readiness. All the dailies have noticed the government's order on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्कसाली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे टी20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोजा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे, जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रूपये की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी जिलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोजगार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से एमएसएमईज, पैकेजिंग, कपड़े की सनअतों, ऑटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फरोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवियत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी जिला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: बाद में शाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनंद इलाके में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संगे मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कल पुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज ओसैट से एक खुदकफील

0: टेक्नोलॉजी इको निजाम की जानिब भारत के सफर में एक बड़े संगे मील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मस्नूई जहानत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेजी से तरक्की हुई है। ये यूनिट एडवांस्ड मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज्यादा पैदावार से अहम सनतों में आलमी और घरेलू सारिफिन को बराह रास्त फायदा होगा। इन सनतों को ऑटोमोटिव, सनती खुदकारी, 5G मवासलात और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तौसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश ए मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश ए मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जबान में तर्जुमा करने का काम भी कर रहे थे। कौमी राजधानी में अब तक 1,02,000 से ज्यादा शुमारियाती फॉर्म्स डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के हिस्से के तौर पर तकरीबन 33,14,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर शुमारियाती फॉर्म्स तकसीम करने का काम फिलहाल जारी है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवां माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कल नई दिल्ली में तिजारती मीटिंग के बोर्ड से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए अशिया की बरामदात में इजाफे की जरूरत होगी। ये बरामदात अभी तकरीबन 480 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, जिसमें इजाफा करके इन्हें तकरीबन 530 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का किया जाएगा, जबकि खिदमात की बरामदात में सरदस्त तकरीबन 421 अरब डॉलर की मालियत में इजाफा करके इसे तकरीबन 470 अरब अमरीकी डॉलर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह और ज़रात और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनिनो की वजह से मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात से मुतालिक सूरतेहाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के कुछ इलाकों में एलनिनो की वजह से मामूल से कम बारिश और खुश्क साली के इम्कानी हालात से मुतालिक सूरतेहाल पर लगातार करीबी नजर रख रही है। उन्होंने ज़रात की वजारत और मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकन्ना रहें और रियासती सरकारों के साथ तालमेल रखें ताकि किसानों को सही फसल बोने के बारे में मशवरा दिया जा सके। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सदाकत, मोतबरियत और आला तरीन पेशावराना मेयारात पर अहदबस्ता रहना चाहिए। कल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि जब मीडिया मुत्तला करता है, सवालात करता है और मोतबरियत बरकरार रखते हुए अवामी मुबाहसे को फरोग देता है तो जमहूरियत को फरोग हासिल होता है। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में हर रोज हजारों यात्री पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अकीदतमंदों, सयाहों और मकामी लोगों के लिए नई दिलचस्प सरगर्मियां शामिल की गई हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तवी दरिया के किनारे कश्ती की सहूलत शुरू की है। इसके अलावा पैडल वाली कश्तियां, राफ्ट्स, मोटरबोट्स और शिकारा की सहूलियात से भी यात्री लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कल सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट्स ने बालतल के 2 बेस कैंपों से यात्रियों को 3,880 मीटर बुलंदी पर वाकई पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी इंदराज के बाद उनके लिए मखसूस की गई तारीखों पर ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएं। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं।

0: ईरान के सीनियर रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने आयतुल्ला अली खामनेई को ईरान के मुसल्ला अजीम में खराज अकीदत पेश किया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और खारिजी उमूर के वजीर मुमलिकत पवित्रा मार्गरीता ने आखिरी रसूम में शिरकत की। उनके जसद खाकी का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मुकद्दस शहर मशहद में इस महीने की 9 तारीख को उनकी तदफीन कर दी जाएगी। सरकारी तौर पर यह सोग 40 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज दो रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह रियासत का पहला दौरा होगा। पहले दिन वो इंदौर पहुंचेंगे, जहां वो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जनाब कुमार ओमकारेश्वर और महेश्वर के मजहबी और तारीखी मकामात जाएंगे। आयुर्वेदिक उलूम में तहकीक के मरकजी कौंसिल CCRAS ने कल नई दिल्ली में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 5वीं मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग आयुष वजारत के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा की सदारत में मुनाकिद की गई। वजारत ने बताया कि यह मीटिंग शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निजाम को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस इको निजाम में आयुर्वेद की तालीम, तहकीक, साइंसी मवासलात और डिजिटल हुक्मरानी को फरोग देने के मकसद से 3 बड़े इकदाम किए गए हैं। CCRAS के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने कहा कि कौंसिल शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निजाम की तामीर का पाबंद है, जिससे आयुर्वेद को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होगी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मगरबी मध्य प्रदेश और ओडिशा में शदीद से शदीद तर और कहीं कहीं पर इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मशरकी राजस्थान, मशरकी मध्य प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले 2 दिन के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान आज दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कल दर्ज हरारत ज्यादा तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक और कम से कम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की पेशगोई की है। महकमे ने जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई के साथ इक्का दुक्का मकामात पर अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे ने लोगों को नालों, झरनों और चट्टाने खिसकने के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया है। उधर केरलम में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के 14 जिलों में से 11 में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी T20 बैन अल-अक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अल-अक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी, जिसे मुसल्ला अफवाज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सम्त में बड़ा कदम माना गया है। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसमें वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा होगा, फिर सिंध तास आबी मुहिदे पर बात होगी। आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम के आगाज की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने

0: तवज्जो मरकूज की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
1: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनिनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

मौसम हसीन, दिल खुश और स्टूडियो का माहौल सुरीला, रंगीला, चमकीला। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड स्टूडियो से आपसे बातें कर रही हूँ मैं सुनीता। ये है म्यूजिकल दिल लगी।

अलका याग्निक कुमार सानू का ये डुएट था फिल्म क्रिमिनल से, जो रिलीज हुई 1995 में। तेलुगु और हिंदी में बनी थी ये फिल्म। लीड पेयर नागार्जुन और मनीषा कोयराला का। गीत इंदिवर ने लिखे और म्यूजिक कंपोजर एमएम कीरावानी, जिन्हें हम एमएम करीम नाम से भी जानते हैं। जाने माने फिल्म मेकर एसएस राजामौली इन्हीं के कजिन हैं। 4 जुलाई 1961 को हुआ इनका जन्म। 1990 में करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म से की और क्रिमिनल वो पहली हिंदी फिल्म थी जिसके लिए इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया। मेरी प्लेलिस्ट का नेक्स्ट सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत, चित्रा के साथ एमएम क्रीम खुद ही गा रहे हैं इस गाने को। इस रात की सुबह नई फिल्म से एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल कंपोजिशन।

जख्म फिल्म के इस बेहद पॉपुलर गाने को और बेहद मेलोडियस गाने को भी संगीत से सजाया एमएम करीम ने, और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम, ये म्यूजिकल जिंदगी और ये गाने पसंद आ रहे होंगे।

0: गली में चांद यूं ही निकला रहेगा, ये खूबसूरत सुबह यूं ही बनी रहेगी। लेकिन अभी अगला सेगमेंट जो है म्यूजिकल दिल्लगी का, उसके साथ होंगी प्रियांशी आपके साथ। फिलहाल सुनीता सेज बाय बाय, टेक केयर, से स्टे ब्लेस्ड। अगले शनिवार फिर मिलूंगी मैं आपसे यहीं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहले तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन

नमस्कार, सुप्रभात और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, जुलाई की सुबह अपने साथ एक अलग ही रौनक लेकर आती है और शनिवार की सुबह हो तो और भी वो रौनक बढ़ जाती है। पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी नमी, खुलती हुई खिड़कियां, दूर कहीं बादलों की हल्की आहट, हवा में एक ताजगी घुल जाती है कुछ इस उमस के साथ। सावन की दस्तक के साथ धरती अपनी रंगत सवारने लगती है। यही मौसम है जब रास्तों का रंग बदलता है, खेतों का मन बदलता है और नदियों की चाल भी। पानी अपने हर रूप में धरती पर उतर आ रहा है, ओस बनकर, कहीं फुहार बनकर और कहीं धारा बनकर। आज की इस सुहानी सुबह में हम भी उसी प्रवाह के साथ चलेंगे। मौसम की बात होगी, कुछ यादें साथ चलेंगी और आज के दिन से जुड़े कुछ विशेष प्रसंग भी आएंगे और हमेशा की तरह आपके साथ होंगे मधुर सदाबहार गीत। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आशाओं की इन्हीं किरणों के साथ आइए आज के म्यूजिकल दिलगी का आगाज करते हैं एक छोटी सी आशा से।

प्रकृति के आंगन में ले चला हमें मिनमिनी के स्वरों में ये मधुर गीत फिल्म रोजा से। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और इस मौसम का संगीत भी तो कुछ ऐसा ही है। जुलाई का महीना इसी परिवर्तन का मौसम है। सुबह की धूप बादलों से रास्ता बांटती है, हवा में नमी ठहर जाती है, पत्तों पर धुली हुई हरियाली चमक उठती है, और बरसात अपना परिचय एक ही दिन में कहां देती है। एक फुहार उसके नाम का एक नया अक्षर लिखती है। इन्हीं भावों में लीन आइए सुनते हैं ये कर्णप्रिय गीत।

श्रोताओं, छोटी छोटी धाराएं मिलकर नदी का रूप ले लेती हैं। यही प्रकृति का स्वभाव है और समाज का भी कुछ ऐसा ही स्वभाव है। वो भी ऐसे ही आगे बढ़ता है, साथ चलने से और साथ जुड़ने से। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। इस वर्ष का थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। भारत में आज ही के दिन सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। देश भर में सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वहां कृषि, डेयरी, वित्त और जनजातीय उद्यमों से जुड़ी सहकारी संस्थाएं साझी भागीदारी और सतत विकास की दिशा में अपने अनुभव साझा कर रही हैं। सहयोग की यही भावना तो समाज को मजबूत बनाती है। तो आइए हम भी जुड़ जाएं इन सुरों के साथ।

श्रोताओं, हमारा इनबॉक्स सदा ही आपके संदेशों की प्रतीक्षा में है, तो हिचकिचाइए नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ fmgoldairdelhi@gmail.com। इस पर संदेश भेजिए और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह सुबह ही दिल का मेलबॉक्स कार्यक्रम के संदेश आना शुरू हो चुके हैं। याद रखिएगा, 10:30 पर मैं मिलूंगी आपको दिल का मेलबॉक्स कार्यक्रम में, जहां आपकी पसंद के गीत सुनाऊंगी। तो जल्द ही सोच लीजिए और लिख भेजिए अपनी फरमाइशें हमें। बहादुरगढ़ हरियाणा से महेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही प्यारा सा संदेश उन्होंने हमें लिख भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, हम भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो श्रोताओं, आगे बढ़े कार्यक्रम में। पहाड़ों के बीच उतरती जलधाराएं अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। पूर्वी घाट के जंगलों ने ऐसे ही एक निर्भीक योद्धा के कदमों की आहट भी सुनी थी। आज के दिन यानी 4 जुलाई को महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ था। मन्यम वीरडू के नाम से विख्यात राजू ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया। पूर्वी घाट के जंगल उनके साथी थे और उन्होंने इसी समझ को अपने संघर्ष की शक्ति बनाया। आदिवासी समुदायों को संगठित कर उन्होंने उनके अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। उनकी जयंती पर शत शत नमन।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं आपके साथ हूं प्रियांशी और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिकल दिल्लगी। तो आइए संगीत यात्रा पर आगे चलें। बरसत हर्षत लोग सब करशत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होए। वर्षा केवल ऋतु नहीं, भारतीय जीवन का एक उत्सव है। कहीं धान की रोपाई चल रही है, कहीं झूले पड़ने लगे हैं, कहीं कजरी की तान गूंज रही है। खेतों की मेड़ों से लेकर पहाड़ों की पगडंडियों तक बरसात अपने साथ रंग राग और रौनक लेकर चलती है। इन्हीं दिनों देश के कई पर्वतीय अंचल अपने सबसे मनोहरी रूप में दिखाई देते हैं। आज 11:10 पर कार्यक्रम तस्वीर में हम चलेंगे महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, जहां बादल घाटियों में उतरते हैं और झरने रास्तों का संगीत बन जाते हैं।

श्रोताओं, आपका साथ ही तो इस सफर को सुहाना बनाता है। अग्रसेन यादव जी, शकुंतला जी और गरिमा हमारे साथ जुड़े हैं नई दिल्ली से। अलीगढ़ से सलीम अख्तर और रेशमा बेगम, आपको भी नमस्कार। और सुशील पठानिया, चंदा, अंजलि और सचिन भी हमारे साथ जुड़े हैं हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें संदेश भेजने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, आप सब भी अपनी फरमाइशें तैयार रखिए और अपने संदेश भी अपना नाम और शहर के साथ लिख भेजिएगा हमें fmgoldairdelhi@gmail.com पर। 10:30 पर कार्यक्रम होगा दिल का मेलबॉक्स। फिलहाल बरसात की बात चली है तो आज मौसम का हाल भी जान लेते हैं। दिल्ली में आज दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है, ये तो आपको खिड़की के बाहर भी दिख रहा होगा अगर आप दिल्ली और NCR में हैं। और नहीं तो हमें लिख के बताइए क्या आपके पास भी बारिश के ऐसे, क्षमा कीजिएगा, क्या आपके पास भी ऐसी ही बारिश होने वाली है। हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में भी राजधानी में मॉनसून का यही रंग बना रह सकता है। बीच बीच में बारिश है, बादलों की आवाजाही है और फुहारों का यही सिलसिला चलता रहेगा। तो आज अगर आप घर से निकलें तो छाता साथ रखिएगा। जुलाई की बारिश है, दस्तक देने से पहले इजाजत नहीं मांगती और इसकी तो अपनी आदत है, बिना बताए ही मिलने चली आती।

नदियां समुद्र तक पहुंचती हैं और समुद्र लाखों लोगों के जीवन तक। भोर होते ही कई तटीय बस्तियों में नावें किनारे छोड़ देती हैं, जाल खुलते हैं और दिन की शुरुआत लहरों के साथ होती है। इसी जीवन को नई मजबूती देने की दिशा में भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने और उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक एक सशक्त मूल्य श्रृंखला विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 40% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को 60% तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। बायोफ्लॉक और रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों, शीत भंडारण और एकीकृत मत्स्य पार्कों के विकास के माध्यम से 55 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों के अवसर सृजित करने का लक्ष्य भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लहरों के इस संसार में मेहनत, उम्मीद और रोजी रोटी एक साथ बहती हैं। हमारी थाली तक पहुंचने वाली हर मछली अपने साथ किसी मछुआरे का श्रम, किसी परिवार का विश्वास और समुद्र के साथ पीढ़ियों पुराना रिश्ता भी लेकर आती है। ऐसे प्रयास तभी सार्थक बनते हैं जब जल संपदा का संरक्षण और उससे जुड़े

समुद्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका धैर्य है। अनगिनत नदियां उसमें आकर मिलती हैं, फिर भी उसका विस्तार बना रहता है। कुछ व्यक्तित्व भी ऐसे ही तो होते हैं, उनका प्रभाव ऊंचे स्वर में नहीं, गहरे मूल्यों में दिखाई देता है। आज 4 जुलाई को भारत रत्न गुजारीलाल नंद की जयंती है। स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी विचारधारा के अनुयायी और अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने भारत की प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमिक कल्याण, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक सौहार्द की दिशा में उनके प्रयास दूरगामी भी सिद्ध हुए। वर्ष 1964 और 1966 के में देश के लिए संक्रमण के कठिन दिनों में उन्होंने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली और सार्वजनिक

जीवन में उनकी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति समर्पण आज भी एक प्रेरक उदाहरण है। इन्हीं योगदानों के लिए उन्हें वर्ष 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। और आज ही स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि भी है। आधुनिक भारत के उन महान चिंतकों में उनका स्थान अग्रणी है जिन्होंने वेदांत और योग के संदेश को विश्व पटल तक पहुंचाया। शिकागो के विश्व धर्म संसद में उनके उद्बोध ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा को आध्यात्मिक साधना से उन्होंने जोड़ा। उनके विचार आज भी आत्मविश्वास, सामाजिक समरसता और मानव सेवा की राह को आलोकित करते हैं।

श्रोताओं, आपसे विदा लूं उससे पहले एक आवश्यक समाचार सुन लीजिए। साउथ दिल्ली में शेखसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती रोगी को अति शीघ्र 2 यूनिट खून की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों, रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया कर मोबाइल नंबर 9810652903 इस पर संपर्क करें। मैं नंबर फिर दोहराती हूं, 9810652903। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। शेखसराय के निजी अस्पताल में भर्ती हैं रोगी, उनको खून की आवश्यकता है। यदि आप समर्थ हों तो जरूर रक्तदान करें।

श्रोताओं, सावन हर वर्ष लौटता है, फिर भी कभी दो सावन एक जैसे कहाँ होते हैं। शायद प्रकृति इसी तरह चुपचाप याद दिलाती है कि परिवर्तन ही जीवन की सबसे विश्वसनीय धुन है। जाते जाते आपको सिनेमा जगत से एक दिलचस्प बात बताएं। फिल्म मंजिल के गीत रिमझिम गिरे सावन को निर्देशक बासु चटर्जी ने मुंबई की वास्तविक मानसून में फिल्माया था। उन्होंने शहर की असली फुहारों को कैमरे में कैद किया है और शायद यही कारण है कि आज भी उस गीत में मुंबई की बारिश सांस लेती हुई महसूस होती है। फिलहाल इसी कामना के साथ कि आपका दिन नई ताजगी, नए विचार और नई मुस्कानों से भर जाए, मैं प्रियांशी भटनागर आपसे अनुमति चाहूंगी। सुनते रहिए आकाशवाणी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार

0: in the final round of 32 match at Kansas City Stadium in the US to book their place in the next round. John Arias scored the winner in the 14th minute with a close range finish. Colombia will now face Switzerland in the round of 16. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केइको फुजिमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब समाचार विस्तार से। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की 6 दिवसीय राजकीय अंतिम यात्रा तेहरान में आज से शुरू होगी। अधिकारियों को इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
2: ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिगफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। ये अंतिम संस्कार 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु के बाद हो रहा है। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पूर्व विदेशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि श्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में होंगे।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री मोदी की ये इंडोनेशिया की 4थी यात्रा है। इस दौरान श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता जाने का भी कार्यक्रम है। योग्यकार्ता में श्री मोदी प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि मलक्का जलडमरू मध्य समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यात्रा के दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों नेता इस दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के समापन में श्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए दुर्गा प्रसाद।
1: गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश

0: मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पेरू में केइको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। 51 वर्षीय फुजिमोरी पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं और चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। थी इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के सर्वोच्च चुनाव प्राधिकरण ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेज को हराया। पहले दौर के मतदान में दोनों उम्मीदवार 33 अन्य उम्मीदवारों से आगे चल रहे थे। इस बार के चुनाव में अपराध एक प्रमुख मुद्दा था। मोल्डोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मुंटेनो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलेक्जेंडर मुंटेनो को राष्ट्रपति माया सांडू ने नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मुंटेनो ने अपने इस्तीफे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। राष्ट्रपति माया सांडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जल्द ही नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तब तक मुंटेनो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। राष्ट्रपति सांडू विभिन्न संसदीय दलों से परामर्श के बाद नए प्रधानमंत्री का चयन करेंगी। अमेरिका आज अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 4 जुलाई को 1776 में आज ही के दिन अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वाधीनता की औपचारिक घोषणा की थी। स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी के कारण कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे दक्षिण यूरोप में सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्पेन में कैटालोनिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जंगल में लगी भीषण आग अब भी बेकाबू है, जिससे लगभग 2300 हेक्टेयर भूमि की वनस्पति नष्ट हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में लू के कारण 3700 लोगों की मौत हुई है, जबकि स्पेन में गर्मी के कारण जून के अंत से अब तक 1000 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हरा दिया है। कोलंबिया के जॉन एरियास ने 14वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल किया। अंतिम 16 के मैच में अब कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उन्होंने अपने करियर की 105वीं जीत दर्ज की। 7 बार के चैंपियन जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रिंडर कनेच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कनाडा के फेलिक्स ओवर एलियासिम ने अमेरिका के माइकल झिंग को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस बीच महिला सिंगल्स में अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला और कोको गॉफ के साथ साथ जापान की नाओमी ओसाका भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केको फुजीमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुप्रभात और हार्दिक अभिनंदन और शुभ शनिवार आप सभी को। मैं आपके साथ प्रियांशी और कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेलबॉक्स। आप सभी के मनपसंद गीतों की सुरीली माला लिए हाजिर हूं मैं। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके सभी संदेशों को कार्यक्रम में सम्मिलित कर पाएं। यदि ना कर पाएं तो इसे हमारी चूक समझकर क्षमा कीजिएगा और ऐसे ही लिखते रहिएगा। आपके मन में कोई बात हो, कोई दुआ, कोई छोटा सा संकल्प या कोई खास संदेश, तो उन्हें भी अपने प्रिय गीतों के साथ हमें अवश्य भेजिए। तो श्रोताओं, जल्द ही लिख भेजिए हमें ये सारी बातें, अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और शहर fmgoldairdelhi@gmail.com पर। क्या पता कहीं अगला सुरमई पल आप ही की पसंद से चल पड़े। आइए शुरुआत करते हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन और इनके साथ हकीकतपुरा मऊ से जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। आइए शुरुआत करें इनके फरमाइशी गीत से।

श्रोताओं, आपके संदेशों की ओर जाएं उससे पहले फिर एक बार आपको ये जानकारी बता दें, यदि आप दिल्ली से सुन रहे हैं तो गौर फरमाएं, साउथ दिल्ली में शेख सराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती रोगी को अति शीघ्र 2 यूनिट खून की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, इस मोबाइल नंबर पर कृपया संपर्क करें 9810652903। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, 9810652903। संपर्क करने के लिए आपने आशा है नंबर सुन लिया होगा। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है, तो यदि आप समर्थ हों और इस जगह हों तो कृपया अवश्य रक्तदान कीजिएगा। अब आइए श्रोताओं, फिर आपके संदेशों की ओर चलें। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, आइए देखें। खरगांव सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोडाना हमारे साथ जुड़े हैं। सुदामा नगर मध्य प्रदेश से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु हैं हमारे साथ। आइए और देखें किस किस ने हमें संदेश भेजा है। नारायण खर्चे जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं ये। इनके साथ हैं ललिता, गणेश, कार्तिक, परी और स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका, लड्डू ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहिणी के सतप्रकाश सनोठिया जी ने हमें बहुत ही प्यारी सी कविता लिख भेजी है, इसका नाम है आस। कहते हैं, काले बादल घिर कर आए, तपती धरती को सहलाए, चली हवा छूकर मस्तानी, अब बरसेगा रिमझिम पानी, सौंधी मिट्टी महक उठेगी और हर बगिया फिर चहक उठेगी। सतप्रकाश जी, आशा तो हम सभी की यही है, तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर एके टंडन की फरमाइश पर ये गीत और बुलाते हैं बरसात को, रिमझिम बरसे पानी।

आइए श्रोताओं, फिर नजर डालते हैं आपके भेजे हुए संदेशों पर। देखें किसने लिखा है हमें, कहां से और किन गीतों के साथ। सलीम अख्तर और रेशमा बेगम लिख रहे हैं हमें अलीगढ़ से। शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखीजी, अनीता मुखीजी और सिमरन का संदेश प्राप्त हुआ है। पुराने श्रोतागण आज हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी, भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा, सत्यप्रकाश गोयल और स्वामी अनिल त्यागी, ये हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। और एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ, सुहेल हसन और रसीद वारसी हमारे साथ जुड़े हैं। और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं महेश जी की फरमाइश पर ये गीत। बहादुरगढ़ हरियाणा से लिख रहे हैं हमें

महेश और मीना जी की फरमाइश पर हमने सुना ये गीत। अब आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। नेमुआ बिहार से अफरोज शेख हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी जुड़े हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी हमारे साथ हैं। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू हमारे साथ हैं। रामनगर पूर्णिया बिहार से मुकेश और संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, जसवीर जसी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हैं। ये लिख रहे हैं हमें, कहां से लिख रहे हैं ये नहीं देखा, पंजाब से लिख रहे हैं, नथाना से। आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य, रचिता और आशीष राजा। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। सुधाकर जाधव जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इनके साथ हैं डॉक्टर प्रशांत, संचित प्रथमेश प्रणाली, सर्वत, सानवी और कल्पना। और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति और पौरुष। अब आइए नई दिल्ली के अग्रसेन यादव, शकुंतला यादव और गरिमा की फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं आपके संदेशों की ओर चलें उससे पहले एक बार फिर आपको ये जानकारी दें कि यदि आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो गौर करें, साउथ दिल्ली में शेख सराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती रोगी को अति शीघ्र 2 यूनिट खून की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता आप किसी भी ब्लड ग्रुप के हों तो रक्तदान करने में सक्षम हों तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9810652903। मैं फिर दोहराती हूं 9810652903। इस नंबर पर संपर्क करें, आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है, तो यदि आप समर्थ हों तो अवश्य जाएं और रक्तदान करें। अब एक बार फिर श्रोताओं चलते हैं आपके संदेशों की ओर। हमारे पास आपके संदेश लगातार आए जा रहे हैं। दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती, विनीता और रुद्रा ने हमें संदेश भेजा है। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार का संदेश प्राप्त हुआ है। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी जी हमें लिख रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से। बबलू कश्यप, सिराज मिथुन, अशरफ अली और नवाब अहमद भारती का संदेश प्राप्त हुआ है दिल्ली से, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप जुड़े हैं हमारे साथ। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बासी परिवार भी हमारे साथ जुड़ा है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजा, नबान और पूरा अब्बासी परिवार हमारे साथ जुड़ा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक भी हमारे साथ जुड़े हैं ढांडा से। जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो भी जुड़े हैं जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ, और रेनू रॉयल जुड़ी हैं रोहिणी से। आइए श्रोताओं इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये मधुर गीत।

श्रोताओं, आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। आपके संदेश, आपके अनुरोध और आपकी संवेदनाएं ही तो इस कार्यक्रम की रूह हैं। अपना प्रेम और प्रोत्साहन ऐसे ही भेजते रहिए, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। कहते हैं हाथ जुड़ाए छुड़ाए जाते हैं अक्सर, रिश्ते नहीं छुड़ाए जाते। गुलजार साहब के ये बोल सच ही तो हैं। मिलेंगे फिर समाचार के पश्चात। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रूकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आपका अभिनंदन है आपके प्रिय यात्रा कार्यक्रम तस्वीर में। आज की तस्वीर है महाबलेश्वर की। सह्याद्री की पर्वतमाला में बसा महाबलेश्वर उन विरल स्थानों में है जहां प्रकृति ने अपनी उदारता और इतिहास ने अपनी स्मृतियां एक साथ संजोकर रखी हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले का ये पर्वतीय नगर समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राचीन मंदिरों की घंटियों से लेकर धुंध में खोए दृश्य बिंदुओं तक, औपनिवेशिक काल की विरासत से लेकर स्ट्रॉबेरी के खेतों तक, महाबलेश्वर का प्रत्येक पड़ाव अपनी अलग कथा कहता है। इस नगर की यात्रा केवल पर्वतों और वादियों तक सीमित नहीं रहती, यहाँ की पगडंडियां तो इतिहास तक पहुंचती हैं। मंदिर आस्था का स्मरण कराते हैं और घाटियां प्रकृति का विराट रूप दिखाती हैं, और यहाँ का स्थानीय जीवन इस भूमि के सहज सौंदर्य से परिचित कराता है। तो आइए आज हर प्रकार से समृद्ध महाबलेश्वर की यात्रा आरंभ करें।

महाबलेश्वर की यात्रा का आरंभ पुराने महाबलेश्वर से कीजिए। यहीं स्थित पंचगंगा मंदिर के बारे में मान्यता है कि कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री और गायत्री, ये पांच पवित्र नदियों का उद्यम यहीं से होता है। समीप ही भगवान शिव को समर्पित प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर और कृष्णाबाई मंदिर ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपरा को आज भी जीवित रखा हुआ है। कृष्णा नदी के महात्म्य के बारे में तो कहा गया है, कृष्णा वेणी नदी प्राहु साक्षात विष्णु स्वरूपिणी, तस्यास्तीरे वसे नित्यम सरुद्रत्वं प्रपद्यते। अर्थात कृष्णा और वेणी नदियां साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप हैं और इनके पावन तट पर साधना करने वाला शिवत्व को प्राप्त होता है। आस्था के इस पड़ाव से आगे बढ़िए तो महाबलेश्वर का इतिहास भी आपका स्वागत करता है। समीप ही स्थित प्रतापगढ़ दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का साक्षी है, जबकि नगर के पुराने भवन और औपनिवेशिक स्थापत्य उस समय को याद दिलाते हैं जब महाबलेश्वर तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। यहीं से आरंभ होती है महाबलेश्वर की वो यात्रा जहां हर मोड़ पर इतिहास, आस्था और प्रकृति एक दूसरे का साथ निभाते दिखाई देते हैं।

महाबलेश्वर का परिचय उसके पर्वतों से पहले उसकी आस्था से होता है। महाबलेश्वर अर्थात महाबल के ईश्वर भगवान शिव की भूमि। सह्याद्री की इस पुण्य भूमि में स्थित प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर शताब्दियों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। हेमाडपंथी स्थापत्य शैली में निर्मित ये प्राचीन मंदिर विशाल काले पत्थरों, सुदृढ़ शिल्प और संतुलित रचना के कारण मध्यकालीन दक्कनी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन उपरांत कुछ क्षण समीप स्थित कृष्णाबाई मंदिर भी अवश्य जाइए। यहीं से कृष्णा घाटी का दृश्य एक अलग ही रूप में दिखाई देता है। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर् ब्रह्मादि नामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः। अर्थात हे महादेव, आपके महिमामय स्वरूप का पूर्ण वर्णन करना स्वयं ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी संभव नहीं। इसके बाद अब यदि दिन भर आपको महाबलेश्वर को देखना हो तो आर्थर सीट से शुरुआत कीजिए। क्वीन ऑफ पॉइंट्स कहलाने वाला ये दृश्य बिंदु सावित्री घाटी का अप्रतिम विस्तार दिखाता है और पास ही है टाइगर स्प्रिंग, जहां 12 महीने निर्मल जल प्रवाहित होता है। आगे केट्स पॉइंट से धौम बांध और कृष्णा घाटी का मनोरम दृश्य दिखता है, जबकि एलिफेंट्स हेड या नीडल पॉइंट से आप अनोखी शैल रचना के कारण सहज ही ध्यान खिंचा लेंगे। और यदि आपका समय साथ दे तो लुडविक पॉइंट तक अवश्य जाइए। सह्याद्री की पर्वतमालाएं वहां से

दूर दूर तक खुलती चली जाती हैं। दिन की शुरुआत यदि आपने विल्सन पॉइंट के सूर्योदय से की हो तो उसका समापन बॉम्बे पॉइंट के सूर्यास्त के साथ कीजिए, और यदि यात्रा वर्षा ऋतु की हो तो लिंगमाला, धोबी और चिनामैन जलप्रपात अपने पूरे वेग और सौंदर्य के साथ आपकी प्रतीक्षा करते मिलेंगे।

श्रोताओं, अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। लौट कर आपको बताएंगे महाबलेश्वर के महत्वाकांक्षी जगहों के बारे में।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और तस्वीर कार्यक्रम में मैं प्रियांशी आपको महाबलेश्वर की यात्रा पर ले चल रही हूँ। श्रोताओं, यात्रा में आगे चलें उससे पहले एक समाचार है आपके लिए। साउथ दिल्ली में शेख सराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती रोगी को अति शीघ्र 2 यूनिट खून की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और यदि रक्तदान करने में सक्षम हों तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9810652903। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ 9810652903। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है, तो आप समर्थ हों तो अवश्य रक्तदान कीजिए। और फिलहाल मेरे साथ चल पड़िए वापस महाबलेश्वर की यात्रा पर। तो श्रोताओं, दर्शन और दर्शनीय स्थलों के पश्चात अब इस यात्रा में कुछ ऐसे पड़ाव भी जोड़ लेते हैं जहां पहुंचकर आगे बढ़ने की जल्दी ही नहीं होगी। वेन्ना झील पहुंचकर यदि नौका विहार का मन हो जाए तो उसे टालिएगा मत। शांत जल, चारों ओर फैली हरियाली और किनारे की हलचल, महाबलेश्वर की दोपहर बिताने का इससे सुंदर तरीका कम ही मिलेगा। और आप चाहें तो नदी किनारे घुड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। और यदि एक दिन आपके पास अतिरिक्त हो तो टापोला का रुख कीजिए। कोयना नदी और शिवसागर जलाशय के विस्तृत बैक वाटर्स के कारण इसे मिनी कश्मीर कहा जाता है। नौकायन, कायाकिंग और प्रकृति की नीरवता, तीनों यहाँ आपका स्वागत करते हैं। सह्याद्री के ये सदाबहार वन अनेक पक्षियों, तितलियों और वन्य जीवों का भी आश्रय हैं। और भाग्य साथ दे तो मालाबार जायंट स्क्विरल, बार्किंग डियर या रंग बिरंगे पक्षियों की झलक भी आपकी यात्रा का हिस्सा बन सकती है।

श्रोताओं, यदि आप महाबलेश्वर आएं और पंचगणी ना जाएं तो यात्रा कुछ अधूरी सी लगेगी। टेबल लैंड के विशाल पठार पर कुछ देर पैदल चलिएगा। दूर तक फैला हुआ आकाश और समतल धरती इस क्षेत्र को एक अलग ही स्वर देते हैं। पारसी पॉइंट और सिडनी पॉइंट से धौम बांध का दृश्य विशेष रूप से आकर्षक दिखाई देता है। और हाँ, लौटते समय यदि सड़क किनारे किसी स्ट्रॉबेरी फार्म का बोर्ड दिख जाए तो गाड़ी कुछ देर के लिए रुकवा लीजिएगा। स्ट्रॉबेरी तो मिलेगी ही, और शायद महाबलेश्वर की सबसे मधुर स्मृतियों में से एक भी वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, क्योंकि महाबलेश्वर का स्वाद ही उसकी पहचान का उतना महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि उसके दृश्य। भारत की अधिकांश स्ट्रॉबेरी का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, इसलिए ताजी स्ट्रॉबेरी और क्रीम का स्वाद लिए बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। पंचगणी मार्ग पर स्थित मैप्रो गार्डन के जैम्स, क्रश सिरप और चॉकलेट फज भी यात्रियों की पहली पसंद है। भोजन में महाराष्ट्रियन थाली, मिसल पाव, वड़ा पाव और गर्मा गर्म कॉर्न पैटीज का स्वाद अवश्य लीजिए। लौटते समय स्थानीय बाजारों से स्ट्रॉबेरी, फज, चिक्की, शहद और हाथ से तराशी गई लकड़ी की वॉकिंग स्टिक्स या फिर काष्ठ निर्मित सजावटी वस्तुएं स्मृति चिन्ह के रूप में साथ ले जा सकते हैं। और यदि आपकी रुचि कला में हो तो पंचगणी के निकट ही स्थित है देवराय आर्ट विलेज। यहाँ पारंपरिक धातु एवं काष्ठ शिल्प से परिचित होने का एक सुंदर अवसर मिलेगा। और अगर आप मार्च या अप्रैल में यहाँ आए तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव इस पूरी यात्रा में मिठास का एक और रंग घोल देगा।

श्रोताओं, कहानियों के नगर में हम भी लौटे। उससे पहले एक बार फिर आपको ये जानकारी दें कि साउथ दिल्ली में शेख सराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक रोगी को अति शीघ्र 2 यूनिट खून की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता, अगर आप किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9810652903। मैं पुनः ये संपर्क नंबर रिपीट कर रही हूँ, 9810652903, 9810652903। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।

तो आइए श्रोताओं, अब आपको यात्रा की कुछ आवश्यक जानकारियां भी दे दें। दिल्ली से अगर आप महाबलेश्वर पहुंचने का सबसे सुविधाजनक मार्ग जानना चाहते हैं तो वो पुणे तक है, रेल या विमान से। पुणे से महाबलेश्वर लगभग 120 किलोमीटर दूर है, जहां टैक्सी और महाराष्ट्र राज्य परिवहन की नियमित बसें उपलब्ध हैं। और यदि आप मुंबई होकर यात्रा करना चाहें तो वहां से भी सड़क मार्ग द्वारा लगभग 5 से 6 घंटे में महाबलेश्वर पहुंचा जा सकता है। घूमने का सबसे सर्वोत्तम समय अक्टूबर से फरवरी माना जाता है, लेकिन अगर आपको

स्ट्रॉबेरी का मौसम देखना हो तो मार्च और अप्रैल चुनिए, और यदि आपको धुंध, हरियाली और प्रपातों का सौंदर्य आकर्षित करे तो वर्षा ऋतु का अपना अलग ही आनंद है। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत कई प्रमुख स्थलों और होटलों में रैंप तथा सुगम प्रवेश जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। फिर भी अगर आप वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ यात्रा करें तो पर्वतीय यात्रा से पहले संबंधित होटल या स्थल से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। और चलते चलते एक छोटी सी बात, प्रकृति तो हमें बहुत कुछ देती है लेकिन लौटते समय उसकी स्वच्छता और शांति अपने पीछे छोड़ना न भूलिएगा।

महाबलेश्वर की संस्कृति सह्याद्री की मिट्टी से उपजी है। यहाँ मंदिरों की आरती, संत परंपरा और मराठा इतिहास आज भी जनजीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। पंचगंगा और महाबलेश्वर मंदिरों में प्रतिदिन गूंजते शंख, घंटियां और स्त्रोत इस भूमि की आध्यात्मिक पहचान को स्वर देते हैं। लोक संस्कृति में पुवाड़ों की वीर गाथाएं, अभंग और कीर्तन की भक्ति धारा तथा

मरुड़ की लोक अभिव्यक्ति आज भी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखे हुए हैं। पर्व उत्सवों के अवसर पर लेजीम और धनगरी गाजा जैसे लोक नृत्य और लावणी की सजीव प्रस्तुतियां इस अंचल की सांस्कृतिक रंगत को और भी समृद्ध बनाती हैं। यदि समय साथ दे तो स्थानीय बाजार या किसी मंदिर परिसर में कुछ देर अवश्य ठहरिए। किसी भी यात्रा की सबसे सुंदर स्मृति आखिर केवल दृश्य नहीं, उस स्थान की संस्कृति और वहाँ के लोगों का अपनापन भी तो होता है।

सह्याद्री की वादियों में बसा महाबलेश्वर केवल एक रमणीय पर्वतीय नगर नहीं, बल्कि प्रकृति, आस्था और संस्कृति का ऐसा संगम है जो हर यात्री को कुछ न कुछ साथ लेकर लौटने का अवसर देता है। कोई यहाँ से धुंध में लिपटी पहाड़ियों की स्मृति ले जाता है, कोई कृष्णा का आशीर्वाद, तो कोई स्ट्रॉबेरी की मिठास और यहाँ के लोगों का सहज अपनापन। भारतीय संस्कृति का एक शाश्वत संदेश यही तो है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। अर्थात ये अपना है और वो पराया, ऐसे विचार संकी

ऋण मन वाले करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। इसी भावना के साथ आज की तस्वीर यहीं पूर्ण होती है। अगली यात्रा में फिर किसी नए नगर, नई संस्कृति और नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The inauguration of the new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region.

0: Sweden. घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और मैं हूं आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गूगल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम में 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर।
1: बिल्कुल। और मंजुला, शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की इस खूबसूरत से विचार के साथ। कहते हैं कि जीवन में सबसे मजबूत रिश्ता वो नहीं होता जो किसी और से जुड़ता है,
0: क्या बात,
1: बल्कि वो होता है जो इंसान का अपने आप से बनता है। क्योंकि हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा वादा निभाते हैं तब आपका आत्मविश्वास और भी गहरा हो जाता है,
0: क्या बात है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का सवाल, आपका सबसे सच्चा दोस्त कौन है, साथी कौन है, वो जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है या फिर वो जो हर सुबह आईने में आपको देखता है। आप अपना जवाब हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का सफर।

0: दोस्तों ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे आया सावन झूम के फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।
1: और दोस्तों 4 जुलाई का दिन इतिहास, समाज, संस्कृति के कई प्रेरणादायक पड़ावों की याद दिलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि साथ मिलकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे किसान हो, महिला स्वयं सहायता समूह, दुग्ध समितियां हो या छोटे व्यापारी, सहकारिता ने लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
0: इसके अलावा आज एक और खास दिन है मंजुला। आज भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री और देश के सादगीपूर्ण नेताओं में गिने जाने वाले गुलजारी लाल नंदा जी की जयंती है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और ईमानदार राजनीति को हमेशा प्राथमिकता दी।
1: और आज ही भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार नसीम बानो जी की जयंती भी है। उन्हें अपने दौर की ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता था। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो की माता थी। पुकार, चल चल रे नौजवान और अनोखी अदा जैसी फिल्मों में उनके प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया।
0: इसके साथ ही 4 जुलाई यानी स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि, उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास, राष्ट्र प्रेम और मानव सेवा की भावना जगाई।
1: और आज महान गीतकार भरत व्यास जी की पुण्यतिथि भी है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम ज्योति कलश

के और आधा है चंद्रमा रात आदि जैसी अमर गीतों के रचनाकार भरत व्यास ने अपनी लेखनी से भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों को शब्दों में अमर कर दिया। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये गीत, गूंज उठी शहनाई फिल्म से लता और रफी की आवाज में।

0: तो अभी हमने एक सवाल किया था कि आपका सबसे सच्चा साथी कौन है, तो जवाब आने शुरू हो गए हैं कल्पना। तो हम शुरू करते हैं। संदीप राय जी लिखते हैं कि मेरा बड़ा भाई मेरा सबसे अच्छा मित्र है। क्या बात है, वो हमेशा मेरी मदद करता है और सही मार्गदर्शन करता है।
1: और पूरन सिंह जी यादव लिखते हैं कि सब साथ छोड़ दें लेकिन रेडियो हमेशा साथ निभाता है, यानी इनका सबसे अच्छा साथी है रेडियो।
0: और नवीन भाटिया जी लिखते हैं कि मेरे फादर साहब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं।
1: और महेश अग्रवाल जी ने भी लिखा है कि भाई एफएम गोल्ड उनका सबसे अच्छा साथी है।
0: और अमिताभ रथ जी ने तो बहुत ही लंबा सा एक मेल भेजा है, लेकिन उसका सारांश ये है कि उनकी वाइफ उनकी सबसे अच्छी मित्र है।
1: बिल्कुल। और देखिए आज हमारे जो श्रोता हैं वो सब यही कह रहे हैं कि भाई आकाशवाणी उनका सबसे अच्छा दोस्त है, एफएम ही। तो ये चरण दास जी भी यही लिख रहे हैं। मंजुला क्या बात है।
0: हाँ, और आदित्य मुदगल जी लिखते हैं।

0: कि मेरी माँ, बस उन्होंने इतना ही लिखा है। और वैसे भी कल्पना कहते भी हैं कि माँ में तो पूरी दुनिया होती है।
1: बिल्कुल। और राधा शुक्ला जी ने हमें ईमेल किया है और उन्होंने लिखा है कि हमारा जो सच्चा साथी है वो अपना स्वास्थ्य होता है, तो हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।
0: बिल्कुल सही। तो चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आज की धरती जो होती है, आज की कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेस की नहीं होती है बल्कि उस सोच की जो कहती है कि धरती को बचाना है तो अपनी थाली से शुरुआत कीजिए। तो मिलिए निष्ठा चौहान से, एक ऐसी युवा इंजीनियर जिन्होंने एरोस्पेस जैसी शानदार नौकरी छोड़ दी। लोग समझ रहे थे कि ये करियर का सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन निष्ठा को दिख रहा था भारत का भविष्य।
1: बिल्कुल। और उन्होंने अहमदाबाद में शुरू किया गुजरात का पहला जीरो वेस्ट मिलेट कैफे, जिसका नाम कैफे आरम रखा। और यहाँ सिर्फ खाना नहीं परोसा जाता मंजुला, बल्कि एक सोच परोसी जाती है। यहाँ प्लास्टिक नहीं, स्टील के स्ट्रॉ हैं, टिश्यू पेपर नहीं, रीयूज होने वाले तौलिए हैं।
0: बिल्कुल। और डिस्पोजेबल प्लेटें नहीं है, केले और अरेका के पत्तों की प्लेटें हैं। बचा हुआ खाना कूड़ेदान में नहीं, कंपोस्ट बनकर फिर से मिट्टी में लौट जाता है। और सबसे खास बात, जिस मिलेट को कभी सिंपल अनाज कहा जाता था उसी से आज रागी डोसा, मिलेट मोमोज, बाजरे की भेल, रागी बन वाला वड़ा पाव जैसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो रहे हैं।
1: क्या बात है, यानी भारत का पारंपरिक खाना आधुनिक अंदाज में। और कैफे को ठंडा रखने के लिए पता है इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम भी अपनाया गया है। और यही नहीं, आरंभ बच्चों को टिकाऊ खान पान यानी कि शुद्ध भोजन की सीख भी देता है, ताकि पर्यावरण की चिंता बचपन से ही उनकी आदत बन जाए।
0: हाँ, और इन छोटी छोटी पहलों का असर कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये कैफे हर साल लगभग 47 जो टन कचरा कम करने में योगदान दे रहा है। निशा मानती है कि हेल्दी बनने के लिए एवोकाडो या इम्पोर्टेड सुपर फूड जरूरी नहीं है, हमारे अपने बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो ही सुपर फूड है।
1: और उनका ये कैफे हर महीने लाखों रुपए का कारोबार कर रहा है, लेकिन असली कमाई सिर्फ पैसे नहीं बल्कि हर साल टनों कचरा कम करना, स्थानीय किसानों का समर्थन करना और बच्चों को सिखाना कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो अगली बार जब आप किसी कैफे में जाएं, एक पल रुक कर सोचिए, क्या हम सिर्फ स्वाद चुन रहे हैं या अपने आने वाले कल का भविष्य भी, क्योंकि सच्चा विकास वही है जो धरती को भी संवारे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना अनाड़ी फिल्म से।
1: बिल्कुल, और मंजुला आप बात करेंगे महिलाओं की एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया, क्योंकि अब भारत की बेटियां सेना के उन पदों तक पहुंच गई हैं जहां सिर्फ पुरुष रहा करते हैं, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षित पहले महिला कैडेट्स के बैच को भारत के सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है।
0: और ये इतिहास में पहली बार है जो बदलते भारत की नई तस्वीर इस तरह की बेटियों ने सजाई है। और 25 जून 2026 को एनडीए ने पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियों को सीधे अधिकारी के रूप में प्रवेश दिया है। और इस बैच में 17 महिला कैडेट्स थी, जिनमें से 9 भारतीय सेना में अधिकारी बनी, 5 भारतीय वायुसेना अधिकारी बनी और 3 भारतीय नौसेना के उच्च पदों तक पहुंची है।
1: क्या बात है, और ये उपलब्धि हम इसलिए भी साझा कर रहे हैं मंजुला, क्योंकि एनडीए में महिलाओं के लिए समान अवसर का अध्याय शुरू हुआ है। ये सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम है।
0: और ये भारत के सैन्य इतिहास की बदलती हुई तस्वीर है, जहां अब बेटियों के लिए भी रास्ते खुल गए हैं, अब उनके पास भी उड़ने के लिए बराबर आसमान है।

0: श्रोताओं, एक खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे खामोशी फिल्म से, जिसे गाया कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने।
1: और ईमेल हमारे पास आने फिर से शुरू हो गए, और आज का जो सवाल है हमारा कि आपका सच्चा साथी कौन है, इस पे आपको रिप्लाई करना है। हमारा ईमेल आईडी fmgoalga@gmail.com। तो सुदर्शन मुखी जी ने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत बात कही इन्होंने, कि हमारा सच्चा और हर पल साथ देने वाला साथी है हमारा अपना आत्मविश्वास।
0: बिल्कुल। और कृष्ण कुमार गुप्ता लिखते हैं कि भाई हमारा जो सच्चा साथी है वो वही है जो मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहता है।
1: और निदा बानो लिखती हैं कि मेरा सच्चा साथी उम्मीद है।
0: बिल्कुल। और ऋचा अवस्थी लिखती हैं कि कहते हैं कि सबसे सच्चा साथी वो होता है जो हर सुख दुख में साथ दे, लेकिन मेरी सबसे अच्छी साथी मेरी बहनें हैं, तो हम उनसे सारी बातें करते हैं।
1: और रश्मि गुरुग्राम से लिखती हैं कि जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन सबसे सच्चा साथी वो होता है जो हर हाल में आपका साथ न छोड़े। मेरे लिए वो ईश्वर है जो हर खुशी हर मुश्किल में मेरा सहारा बनते हैं, और अगर दुनिया की बात करूं तो मेरा अपना विवेक और परिवार ही मेरे सबसे बड़े साथी। बहुत ही खूबसूरत बात कही।
0: बिल्कुल। और ऐसे ही अनिल मेहता जी लिखते हैं, देखो महिलाएं भी बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ इनकी सबसे अच्छी दोस्त है मंजुला।
1: क्या बात है, कहीं साथ तो नहीं बैठी हुई है
0: शायद इसीलिए।
1: हाँ, और गौरी शंकर जी लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम, राम कुछ राम। दोस्त मुसीबत में काम भी आते हैं, सभी नहीं, लेकिन हमें उन दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। मेरी तो बहनें ही लाखों में एक है, क्या बात है, जिन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया।
0: बिल्कुल। तो हमारे अन्य श्रोता भी हमें ऐसे ही ईमेल करते रहे, और आपके लिए ये प्यारा सा गीत।
2: दूं तुम्हें
3: हाँ,
2: क्या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है,

0: श्रोताओं, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे दीवार फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने।
1: और दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, आखिरी बार अपने मर्जी से कोई किताब कब पढ़ी थी और आखिरी बार आपने अपने मन की बात कागज पर कब लिखी थी? आज की भाग दौड़ में हम घंटों मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं लेकिन 5 पन्ने पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, जबकि सच तो ये है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसे लोग महसूस करें तो सिर्फ 2 आदतें अपनाइए, पढ़ना और लिखना।
0: बिल्कुल, देखो मंजुला, पढ़ना हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि ज्ञान देता है। ये हमारी सोच को गहराई देता है, हमारी कल्पना शक्ति को उड़ान देता है और शब्दों का खजाना भी बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, हमें एक अच्छा बातचीत करने वाला इंसान बनाता है, तभी तो हम अपने श्रोताओं से भी बात कर पाते हैं। अलग अलग विषयों की जानकारी होने के कारण हम आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, हमारी बातचीत प्रभावशाली बनती है, लोग हमें सुनना पसंद करते हैं और हमारा व्यक्तित्व अपने आप ही आकर्षक बनने लगता है।
1: क्या बात है। अब बात करते हैं लिखने की। लिखना सिर्फ शब्दों को कागज पर उतारना नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने विचारों को आकार देना है। जब आप लिखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोच स्पष्ट होती है और खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता कई गुना बेहतर हो जाती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर एन फ्रैंक की डायरी दुनिया तक ना पहुंची होती तो शायद इतिहास का वो दर्द, वो भावनाएं, उस दौर की सच्चाइयां हम कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं कर पाते। एक छोटी सी लड़की की लिखी हुई डायरी आज पूरी दुनिया के लिए इतिहास का जीवंत दस्तावेज है।
0: तो कौन जानता है, आज जो आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं, आपके अनुभव, आपके विचार, आपकी सीख, वही आने वाले समय में किसी बच्चे को प्रेरणा दे जाए, किसी शोध का आधार बन जाए या फिर पूरे समाज को नई दिशा दिखा जाए, है ना मंजुला? तो याद रखिए, जो पढ़ता है वो दुनिया को समझता है और जो लिखता है वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ता है।
1: बहुत ही खूबसूरत बात कही। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़िए और 10 मिनट लिखिए, चाहे किताब हो, अखबार हो, कविता हो, डायरी हो या अपने दिन का एक छोटा सा अनुभव। यकीन मानिए, कुछ महीने बाद लोग कहेंगे आप में कुछ अलग बात है, क्योंकि अच्छी किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे व्यक्तित्व गढ़ती हैं। और अच्छी लेखनी सिर्फ शब्द नहीं लिखती, वो विरासत छोड़ जाती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म थी तीन देवियां।
1: क्या कहने मंजुला जी। और देखो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी आदमी अकेला है। यानी आज की जो जिंदगी है वो जरूर व्यस्त हो रही है, लेकिन हर इंसान एक अकेलेपन से जूझ रहा है, और उसमें भी सबसे आगे है युवा। वो युवा जो हमें हमेशा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से कनेक्ट नजर आते हैं, वास्तव में भी सबसे ज्यादा अकेले हैं। क्यों?
0: सही कहा। पहले लोगों के पास नेटवर्क भले कम था लेकिन डीप कनेक्शंस थे। आज सोशल मीडिया पर भले ही 2 मिलियन फॉलोवर हैं, लेकिन ऐसे 2 लोग मिलने मुश्किल हो जाते हैं जिन्हें हम मुश्किल की घड़ी में फोन कर सकें।
1: और इससे यही समझ आता है कि आज लोग अकेले इसलिए नहीं है कि उनके पास लोग नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ऑडियंस तो है पर कनेक्शन नहीं है।
0: तो मेरा कहने का मतलब दिल से दिल का जुड़ाव। तो इसलिए जरूरी है कि खुश रहने के लिए इस अकेलेपन से बाहर रहें, इसके लिए रिश्तों को समय दें, कुछ नया सीखें, सोशल मीडिया का समय सीमित करें, मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहें, योगा करें, ध्यान करें।
1: साथ ही जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी चाहिए कि वे युवा मन को समझें, उन्हें सुनें, तुलना न करें, उपलब्धियों को सराहें, सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल दें। फिर इन अकेले पड़ते अपनों का मन राहत महसूस करेगा और वे खुश रहना सीख जाएंगे बजाय अकेले रहने के।

0: दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे कालिया फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने। और मंजुला क्या कह रही थी आप?
1: मैं ये कह रही थी कि जब भी घूमने की बात होती है तो ज्यादातर लोग सीधे बड़े शहरों, मशहूर हिल स्टेशंस या फिर बीच डेस्टिनेशंस का नाम लेते हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या आपने कभी उस भारत को देखा है जहां सुबह पक्षियों की आवाज से होती है, जहां हर घर की रसोई में पीढ़ियों पुराने स्वाद पकते हैं और जहां परंपराएं सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जी जाती है।
0: मगर नहीं देखा है तो आपकी ट्रेवल लिस्ट में भारत के गांव जरूर होने चाहिए, क्योंकि असली पर्यटन सिर्फ तस्वीरें लेने का नाम नहीं बल्कि किसी जगह की संस्कृति, खान पान, लोक कला, भाषा और लोगों को महसूस करने का नाम है। क्यों मंजुला? गांव आपको वो अनुभव देते हैं जो कोई भी 5 सितारा होटल आपको नहीं दे सकता।
1: हाँ, अगर हिमाचल प्रदेश जाए तो सिर्फ शिमला या मनाली ही नहीं बल्कि किन्नौर का खूबसूरत कल्पा, बर्फीले रेगिस्तान वाला स्पीति भी देखिए। वहाँ के शांत मठ, सेब के बाग और पहाड़ी जीवन आपको प्रकृति से जोड़ देगा।
0: और इसके साथ ही लद्दाख का लामायुरु गांव, जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है, यहां का अनोखा चंद्रमा जैसे धरती का नजारा और सदियों पुराना बौद्ध मठ किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराते हैं।
1: तो मेघालय का मावली नांग जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, नागालैंड का खोनोमा जो बहुत ही खूबसूरत ग्रीन विलेज है, तो यहां के साधारण से घर, मिट्टी के चूल्हे पे बनी एक रोटी, किसी बुजुर्ग की बनाई लोक कथा आपकी पूरी यात्रा को खूबसूरत बना सकता है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता जी और आशा जी को फिल्म प्रोफेसर से ये खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल मंजुला, देखो हमारे एक साथी है, इन्होंने एक बहुत ही अनोखा सा मैसेज किया है। इन्होंने लिखा है आशीष गिरी जी कि मेरा सच्चा साथी मेरा मोबाइल है जो मेरे मूड से चलता है, जब चाहे ऑन जब चाहे ऑफ।
0: और राधा पाठक जी लिखती है कि हमारा सच्चा साथी हमारा ज्ञान है जो हमें हमेशा सही राह पर ले जाता है।
1: बिल्कुल। और नवीन कुमार लिखते हैं कि पत्नी है जीवन की मधुर मुस्कान, उससे ही महकता है हर अरमान, सुख दुख में जो थामे हर पल हाथ, यही होती है जीवन की सच्ची साथी।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे हो जाला फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।
1: और इसी के साथ आज की हसीन सफर को देते हैं यही विराम। फिर मिलेंगे किसी दिन इसी समय पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। डीजे मंजुला
0: और कल्पना को अनुमति
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया

0: आकाशवाणी समाचार जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms and planning attacks in Jammu.

वक्त हो चला है 1:10 और 57 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है, 100.1 MHz पर कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। कलाकार बेमिसाल में आज हम किसका जिक्र करने वाले हैं, किसे याद करेंगे? कल जन्मदिन था अमित कुमार का, तो हम आज बात करेंगे अमित कुमार की। थोड़ा तो इस म्यूजिक से भी आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम जिक्र करेंगे अमित कुमार का। वैसे दोस्तों, जब पिता एक बेमिसाल शख्सियत होना तो बेटे का संघर्ष बड़ा दोगुना हो जाता है। एक बहुत बड़े फनकार का बेटा होना और सारी जिंदगी उसमें सांस लेना, कदम कदम पर पिता से तुलना होना, ये आसान नहीं है। सोचिए ना, ऐसे में बेटे की निजी प्रतिभा को जगह बनाने के लिए सारी जिंदगी जूझना पड़ता है। लेकिन गायक अमित कुमार के साथ यही हुआ, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष को स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वो अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। तो हम उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और वो हर पल कुछ नया रचते रहें, ऐसी कामना करते हैं।

बिल्कुल सधी हुई दिल को छू लेने वाली आवाज बालिका वधु से हमने ये गीत आपको सुनाया। सचिन पर फिल्माया गया है, सचिन इस फिल्म में है और क्या खूबसूरती से अमित कुमार ने इस गीत को गाया है। ये गीत नहीं, बहुत सारे ऐसे गीतों का जिक्र किया जा सकता है जो अमित कुमार ने गाए और क्या कमाल के उन गीतों को गाया है। शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत के 7 साल अमित कुमार अपनी माँ रूमा देवी के पास कोलकाता में रहे, जो खुद भी एक गायिका थी। दरअसल ये तब की बात है जब किशोर कुमार और रूमा देवी में अलगाव हो चुका था, लेकिन दोनों ने अमित कुमार को इसका एहसास नहीं होने दिया। किशोर कुमार नियमित रूप से अमित से मिलने कोलकाता जाया करते थे। इसके बाद अमित कुमार को हजारीबाग के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया गया, लेकिन साल भर बाद वे वापस कोलकाता रहने के लिए आ गए और उसके बाद की कहानी बड़ी मजेदार है, लेकिन वो हम आपको सुनाएंगे इस गीत के बाद।

आज हम याद कर रहे हैं गायक अमित कुमार को, और हमने आपको बताया कि किस तरह से वो हॉस्टल चले गए, लेकिन हॉस्टल से जब थोड़े बड़े हुए तो अमित कुमार वापस कोलकाता आ गए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो स्टेज पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे और अपने पिता के ही गाने जो है वो सुनाया करते थे। उन्हें इस तरह की जो गतिविधियां थी, जो इस तरह के कार्यक्रम थे, वो उनको बहुत भाते थे और दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों के दौरान तो अमित कुमार की लोकप्रियता देखते बनती थी। उनकी माँ को बहुत आश्चर्य होता था अमित की लोकप्रियता को देखकर। उन्होंने जब देखा कि अमित सिवाय गाना गाने के और कुछ नहीं करते, तो उन्होंने बल्कि इसकी तारीफ नहीं बल्कि किशोर कुमार से इसकी शिकायत की कि अमित जो है वो गाना गाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो किशोर कुमार दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के दौरान खुद अमित कुमार को सुनने आए। कार्यक्रम के दौरान वो उस केबिन में बैठे जाकर छुपकर जहां से लाइट और साउंड का संचालन किया जा रहा था, वो नहीं चाहते थे कि अमित कुमार को पता चले कि उनके पापा उनका गाना सुन रहे हैं। तो कार्यक्रम के बाद किशोर कुमार ने अमित कुमार से कहा कि भैया अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे साथ मुंबई चलो।

1:27 और 45 सेकेंड हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और अगर आप अभी हमसे जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि आज हम गायक अमित कुमार को हम याद कर रहे हैं और कल उनका जन्मदिन था, तो हमारी तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमने आपको बताया कि किस तरह से किशोर कुमार ने अमित कुमार का प्रोग्राम सुना और कहा कि भैया बोरिया बिस्तर समेट के मुंबई चलो, और अमित कुमार अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने पिता के पास मुंबई आ गए और मुंबई में होने वाले स्टेज शो में जहां किशोर कुमार गाने के लिए आमंत्रित होते थे, अमित कुमार उनकी लोकप्रियता देखकर दंग रह जाते थे। ये उनके सामने उनके पिता की जो छवि थी वो बन रही थी, तो किशोर कुमार स्टेज शो में अमित कुमार को भी गवाया करते थे। और ऐसे ही एक शो में एसडी बर्मन ने अमित कुमार को सुना और उनकी बहुत तारीफ की। और जैसा कि आपको पता है कि बालिका वधू में जो है जो उन्हें गाने का मौका मिला था उस फिल्म में, तो ये यहाँ से एक तरह से सफ़र शुरू हुआ था।

1968 की बात है। 1968 में अमित कुमार ने 16 साल की उम्र में अपने पिता की फिल्म दूर का राही के लिए पहला गीत मैं एक पंछी मतवाला रे रिकॉर्ड किया। पर्दे पर यह गीत अमित कुमार पर ही फिल्माया गया, लेकिन जब 1971 में फिल्म रिलीज हुई तो किन्हीं वजहों से फिल्म से इस गीत को हटा दिया गया। इस गीत को अमित कुमार की आवाज में फिर से ममता की छांव के लिए रिकॉर्ड किया गया। सही मायनों में अमित कुमार को फिल्मों में पार्श्व गायन का मौका मिला। फिल्म बालिका वधू से इस गीत में हालांकि किशोर कुमार की छाप तो दिखती है, लेकिन जो अमित कुमार का मौलिक रंग है वो भी इस गीत में महसूस किया जा सकता है। लेकिन फिल्म लव स्टोरी की अगर बात करें, 1980 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म ने अमित कुमार को सुपर डुपर स्टार बना दिया और इस फिल्म के गीत याद आ रही है तेरी याद आ रही है, इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और आपको पता है इस फिल्म फेयर के लिए किशोर कुमार भी नॉमिनेट थे, लेकिन ये अवार्ड गया उनके बेटे के हिस्से।

अच्छा, कितना होता है ना जब हमारे जो जब हम टीन एज में होते हैं या हम जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे होते हैं, उस जमाने के जो गाने होते हैं जब बजते हैं ना, तो वो अमित कुमार का ही गाना है, दिल में देखा जो तुझे यार, दिल में बची गिटार, है ना, उस टाइप का होने लगता है, नहीं? तो चलिए, बहुत हमने अमित कुमार के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उनके जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत पल, एक खूबसूरत मौका तब हुआ जब फिल्म कस्मे वादे के दौरान उन्हें अपने पिता के साथ गाना गाने का मौका मिला। गाना था आती रहेंगी बहारें, और उसके बाद उनकी कामयाबी का सिलसिला तो चलता ही रहा, और समय समय पर जाहिर है उनके ऊपर ये आरोप भी लगते रहे कि भाई वो अपने पिता की नकल करते हैं, अपने पिता के जैसी ही उनकी आवाज़ है। लेकिन अमित कुमार मेहनत करते रहे और मेहनत से गाते रहे, लगातार गाते रहे, और कई बार उन्होंने सफाई भी दी कि भाई अगर मेरी आवाज़ मेरे पिता से मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। और जाहिर सी बात है, कई बार रूप, रंग, आवाज़, बहुत सारी चीज़ें आनुवांशिक रूप में हमें मिलती हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि जब एक शख्सियत इतनी कामयाब होती है, बुलंदी पर होती है, तो जाहिर है उसके बाद उसकी औलाद या उसके घर के अन्य लोग उसके नीचे बिल्कुल दब कर रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा अमित कुमार के साथ भी हुआ। फिलहाल हम सुनते हैं ये बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा गाना।

तो गायक अमित कुमार की आज हमने ढेर सारी बातें की और हमें उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि बहुत सारे गीत उनके सुना सके, लेकिन वही बात है कि समय की सीमा है और उस सीमा में रहकर हमें काम करना होता है। लेकिन एक बार फिर हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आज भी कुछ नया रचते रहें, कुछ नया गढ़ते रहें। आपसे कहना यह है कि आप जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ, क्योंकि कार्यक्रमों का सिलसिला तो यहां पर चलता ही रहेगा। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। संगीता को इजाजत दीजिए, हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में पचपेदरा के मकाम पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। जनाब मोदी ने बलोतरा में खिताब करते हुए कहा कि
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
0: इसके अलावा वजीर आजम मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वजीर आजम ने चूरू सादुलपुर और चूरू रत्नागढ़ की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये इमारत 23,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमद और रफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, ताकि वो बिला रुकावट और आसानी से सफर कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तिजारत और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज किया, जिसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपए सर्फ किए जाने का निशाना रखा गया है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को तकवीत देने की गरज से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सनांत के मकाम पर CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इसे 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है। ये मरकज मुल्क की तकनीकी साजो सामान तैयार करने के सफर में एक अहम संग मील साबित होगा। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फेहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मंसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्विस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को

0: बात की इजाजत देगा कि वो इन अफराद के इक्तसादी असासे को मुंजमद करे, असलहे की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करे। यूएपीए की तरमीम से भारत के इंसदाद दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। इस तरमीम को 14 अगस्त 2019 में नोटिफाई किया गया था। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने आज इंतखाबी फहरिस्त के खसूसी नजरसानी अमल के तहत इंदराजी फार्म दाखिल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर, डिस्ट्रिक्ट इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर और बूथ सतह के अफसर ने दिल्ली में जारी इंतखाबी फहरिस्त की SIR के हिस्से के तौर पर उपराष्ट्रपति भवन में इंदराजी अमल में मदद की।
1: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो OTT पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदामात करे। जराये के मुताबिक मजीद बताया जराये ने कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदामात की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तहफ्फुज़ फराहम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिलाने वाला पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर 2019-29 तक मुकम्मल हो जाएगा। वो अहमदाबाद में नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उन्होंने गुजरात में रेलवे के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया था। जनाब अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और गुजरात सेक्शन में 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। रेलवे के वजीर ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम मरहलावार तरीके पर किया जा रहा है। सूरत को बिलमोरा से जोड़ने वाला पहला सेक्शन अगले साल शुरू किए जाने का प्रोग्राम है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कम्प्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहिमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सिमत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहिमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है। मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं। इसी दौरान आज कौमी राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को हबस और गर्मी से कुछ राहत मिली। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच, जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब इसे तर्क करना पड़ा था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों की क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे टी20 बैन अल-अक़वामी मैच में

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को

0: को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
0: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।

0: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचय

0: समाचार आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर स्वागत है आपका कार्यक्रम उन्नत किसान में। समय हुआ है 2:31 और आज गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा, और मेरे साथ है मेरे साथी
1: निरंकार दत्त वशिष्ठ, और हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। और पूजा जी, देखिए हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और इसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी भी रीढ़ है कृषि। और खाद्यान्न की अगर हम बात करें तो खाद्यान्न में भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में निर्यात के लिए भी हम उत्पादन करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में तापमान बढ़ रहा है, कहीं बाढ़ ज़्यादा आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, या कीटों का नियंत्रण हम नहीं

0: कर पाते हैं तो उससे भी हमारी फसल प्रभावित होती है। तो जलवायु में जो परिवर्तन हो करके हमारी कृषि प्रभावित हो रही है, इसकी वजह से जो हमारा खाद्यान्न है उसके उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों ही प्रभावित हो सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने बिल्कुल उस विषय को छेड़ दिया है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं।
0: जी
1: लेकिन अपने श्रोताओं को हम बताएं कि आज का ये जो विषय है ये समय परक भी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ गोल्ड स्टूडियो में है इस वक्त, वो इस विषय पर बड़ी गहन पकड़ भी रखती हैं। तो हम विषय के बारे में बताएं और अपने मेहमान से भी मिलवाएं अपने श्रोताओं को, इसके लिए निरंकार जी बता
0: जी
1: देते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे बीच हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी, जो कि पहले भी हमारे कार्यक्रम में आती रही हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद, इन सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: और पूजा जी, हम इनसे जानकारी तो लेंगे लेकिन हमारे श्रोताओं के जहन में अगर कुछ सवाल आएंगे तो वो भी सवाल करेंगे, उनको जुड़ने के लिए हमारे पास माध्यम है ये टेलीफोन
1: के जरिए जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज का विषय है जलवायु परिवर्तन और भारत की खाद्य सुरक्षा, जिसकी भूमिका निरंकार जी आपने बांध दी है अच्छी तरह से। और अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ से, जो इस वक्त हमारे साथ गोल्ड स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप इन नंबर्स पर हमें डायल करके सीधे जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। अगर दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं और उसके बाद 2342 1081, 2342 1081 और 2342 1083, 2342-1081 और 2342-1083, ये दो नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जब तक कॉल आते हैं निरंकार जी, हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन जो है ये क्या है और इसके कारण क्या है।
2: जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है अभी, तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जो हमारे मौसमी तत्व होते हैं, जैसे आपका तापमान है, वर्षा है, और आपका अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, आर्द्रता होती है, बादलों की स्थिति, ये सारे मौसमी तत्व में आते हैं। अगर ये दीर्घकालीन हम देखें कि दीर्घकालीन इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो जो जलवायु परिवर्तन होता है वो उसका जो तात्पर्य होता है वो हमारा दीर्घकालीन जो तापमान है उसमें क्या चेंज हो रहा है, या जो मौसमी पैटर्न हो रहा है उसमें क्या चेंज हो रहा है। और जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा जो हमारा दुनिया है वो इस समस्या से जूझ रहा है, जलवायु परिवर्तन की समस्या से। अभी आपने देखा ही होगा यूरोप में भी तापमान में काफी वृद्धि हुई है, आपके आपके भारत में तो हो ही रहे हैं, यूरोप के देश है या अन्य देशों में भी तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जैसे मौसम का जो पैटर्न है उसमें काफी अनिश्चितता आ रही है, कहीं पे आप देख रहे हैं कि सूखा ज्यादा हो रहा है, कहीं पे आप देखते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। अभी आज आप देख रहे होंगे कि जो बारिश हुई है उसमें देखा आपने, दिल्ली में ही देखा होगा कि किसी स्थान पे तो ऐसी बारिश हो गई

0: कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई और कई जगह आपका जो है बारिश ही नहीं हुआ।
1: हाँ जी हाँ, पूसा की तरफ से ही अभी मैं भी आई हूँ तो वहाँ काफी जोरदार बारिश हो गई थी,
0: वहाँ पे वाटर लॉगिंग जैसी समस्या हो गई थी,
1: जैसा हो रहा था। और यहाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल सूखा है।
0: ये हम कहेंगे कि मौसम एक टाइप से बदला हुआ है आज से आप देखते थे 10-15 साल पहले। अभी जैसे मानसून का चल रहा है आपका, दिल्ली में 29 को मानसून हिट कर जाता है तो उसके बाद जो मानसूनी वर्षा होती है, आप कहते हैं ना एक लंबे से क्षेत्र में आपकी बारिश होती है,
2: हमारे देश में
0: वो पैटर्न आप अभी नजर नहीं आ रहा है।
2: आज महाराष्ट्र की बात हम समाचारों में सुन रहे हैं, वहां पर भी भारी बारिश हुई है, मुंबई में,
1: गुजरात में भी चल रहा है,
2: अलग अलग जगह पर कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है तो कहीं पे कम बारिश,
0: कम बारिश हो रही है। तो यही हम कि मौसम में बदलाव हो रहा है। दूसरी जो चरम मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे हम अभी गर्मी में आपने देखा होगा अप्रैल मई में एकदम से तापमान आपका 45 डिग्री तक चला गया और वो जो है काफी दिनों तक चला जाता है, हीट वेव चल जाती है। तो इसकी जो चरम मौसमी जो घटनाएं हो रही है वो उसकी आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। बारिश की ये आपकी, जैसे अभी आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मानसून की वर्षा इतनी होगी, सामान्य के आसपास होगी या सामान्य से थोड़ी कम होगी, लेकिन आप देख रहे हैं वो होगी उतनी, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही नहीं हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस जो बारिश आपकी होनी है लगातार 5-6 दिनों में, वो 5-6 दिन में ना होकर एक ही दिन में, या मैं तो कहूंगी कि एक ही घंटे में हो रही है, उसके आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। जो चरम मौसम में जो घटनाएं हो रही है उसके आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जैसे तूफान से चक्रवात है उसके भी आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। तो ये सब कारण जो है जलवायु परिवर्तन के ही कारण है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसके कारण क्या है, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका जो मुख्य कारण है वो आपका जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है। जो हम वातावरण में ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन कर रहे हैं, इसमें जैसे आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, इसके कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ये हमारा एक लिमिट होती है कि उस लिमिट में ही होना चाहे, लेकिन हम उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, उससे ज्यादा हमारे वातावरण में ये सब ग्रीन हाउस गैस हो गई है। तो जब भी हमारा सूर्य का प्रकाश हमारी धरती आता है और धरती हमारी इसको अब्सॉर्ब करती है, उसके बाद ये रेडिएट करती है धरती से, तो ये जब वापस वातावरण में जाता है तो जो ग्रीन हाउस गैस की जो परत बनी है ऊपर, ये इसको अवशोषित कर लेती है और फिर ये वापस जो है वायुमंडल में जाने के बाद ये फिर से धरती पे छोड़ देती है। तो उससे जो है धरती का तापमान बढ़ रहा है। धरती के तापमान बढ़ने से जो अन्य मौसमी जो घटनाएं हो रही है, जैसे आपका सूखा पड़ना या कई जगह बाढ़ आना या एक्सट्रीम जो भी इवेंट हो रहे हैं, हीट वेव्स आ रही है या आपकी जो जो बारिश ही हो रही है, बेमौसम बारिश हो रही है, वो घटनाएं आपकी ज्यादा बढ़ रही हैं।
1: यानी कुल मिलाकर जैसा होना चाहिए वैसा ना होकर अपने, हम कह सकते हैं आसान शब्दों में अगर कहें तो उल्टा पुल्टा हो रहा है मौसम।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो आपने हमें बताया, बहुत अच्छी तरह से समझाया आसान भाषा में। अब इसी से आगे हम बात को अगर बढ़ाते हैं तो फिर बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग का जैसे आपने जिक्र किया, इसका हमारे देश की जो मुख्य फसलें हैं, और अगर मैं निरंकार जी
2: खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें,
1: गेहूं और चावल की बात करें, अगर हमारी जो मुख्य फसलें हैं उनकी पैदावार पर क्या असर इससे पड़ रहा है?
0: जी, जैसे कि आपके गेहूं चावल, गेहूं या आपका जो है धान ही नहीं, अन्य फसलें, सभी फसलों को जो है एक उपयुक्त मौसम की आवश्यकता होती है, चाहे वो आपके बुआई है, बुआई में आपका अंकुरण आना है या उसके विभिन्न चरण जो होते हैं, हर चरण में उनको एक उपयुक्त मौसम की आवश्यकता होती है। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि आजकल जलवायु परिवर्तन में आपके मौसम का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, चाहे वो तापमान है या अन्य मौसमी घटनाएं हैं, उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो इसका जो हमारी कोई भी फसल है उस पर काफी असर पड़ता है, उसकी गुणवत्ता पे असर पड़ेगा, उसकी जो उपज है उस पर भी असर पड़ेगा, दोनों पे असर पड़ेगा। क्योंकि एक आपका जो GDD होता है, ग्रोइंग डिग्री डे, तो जब फसल जो है एक चरण से दूसरे चरण में जाती है, उनकी डिफरेंट स्टेज होती है, जैसे अभी जर्मिनेशन है उसके बाद वो वनस्पति ग्रोथ में जाएगी, उसके बाद उसमें फूल आएगा जो हम रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं, उसके बाद उसके दाना बनना है, मैच्योर और होना है। तो हर स्टेज में उनको एक GDD होता है, ग्रोइंग डिग्री डेज की आवश्यकता होती है। और ये ग्रोइंग डिग्री डेज डिपेंड करता है आपका तापमान पर, जो मीन टेम्परेचर हम कहते हैं, अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान डिवाइडेड बाय 2 माइनस का बेस टेम्परेचर। ये बेस टेम्परेचर हर क्रॉप के लिए फिक्स होता है। तो जैसे ही उसको ये मिल जाता है, उपयुक्त मिल जाता है, वो एक चरण से दूसरे चरण में चले जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपका तापमान में वृद्धि हो रही है, अधिकतम तापमान भी अब बढ़ रहा है, न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ रहा है। तो जो फसल का एक चरण से दूसरे चरण में जाना है उसका जो पीरियड हो रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी आ गया ना आपका, जो 10 दिन में आना था वो आपका 5 दिन में ही आ रहा है, 6 दिन में ही आ रहा है, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो गई। तो जो आपका समय मिल रहा है वो आपको कम मिल रहा है। तो कम मिलने से क्या होगा, उसके दाने की जो गुणवत्ता है उसमें उसका असर पड़ेगा।

0: सारे कारण जो है मैं ये फसलों में जो हो रहा है उसकी गुणवत्ता है या उसके उपज है उस पर इसका काफी असर पड़ रहा है।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, एक सवाल उनका ले लेते हैं हम। हेलो हेलो
2: जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें अपना।
2: परमेश्वर शाह जिला से तुम्हारी बिहार से बोल रहे हैं जी।
1: जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए
2: जी। हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है, बीज तैयार है धान के, बारिश के बहुत ना के बराबर ही है।
0: हाँ जी हाँ जी, जैसे कि आपका क्वेश्चन वाजिब है, अभी आपकी धान की फसल लगने वाली है और धान तो हम कहते हैं कि इसको पानी की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होती है, तो आपके जैसे मौसम के अनुसार आजकल आपको खेती करनी है। जैसे कि मैं इस पे आपका आज का टॉपिक यही है कि आपको बदलते हुए मौसम में या जलवायु परिवर्तन में आपको किस प्रकार से आपको खेती करनी है ताकि आपकी खाद्य सुरक्षा बनी रहे। तो जैसे कि आपका अभी आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बारिश किस क्षेत्र में कितनी होने वाली है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको फसल का चयन करना है। अब जैसे आपने धान का चयन किया और धान में कई बार क्या होता है कि ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और हमारे पास पानी की सुविधा है या नहीं है। ज्यादातर अगर सुविधा नहीं है, अगर पानी की सुविधा, तो हम बारिश पे निर्भर करते हैं, रेनफेड कंडीशन, तो उसमें हमको उस टाइप की फसल की किस्में चयन करनी है। सबसे पहले आपने फसल का चयन किया, उसके बाद आपको किस्मों का चयन करना है, क्योंकि हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी की व्यवस्था तो ठीक है, हम उस टाइप की किस्में चयन कर सकते हैं। तो आजकल जैसे धान की कई टाइप की वेराइटियां आते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस भी आप लगा सकते हैं, इसके अलावा आपकी रेनफेड की भी कई वेराइटियां, उसको आप जो निकटतम जैसे आपका वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है या आपका यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो आप वहाँ का अपना क्षेत्र विशेष के हिसाब से आप अपनी फसल का चयन कर सकते हैं, आपकी फसलों की किस्मों का चयन कर सकते हैं।
3: यानी सूखा सहन करने वाली फसलों को उनको शामिल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसका खास तौर पर किन किन फसलों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है?
0: जी, जैसे कि मैं तो कहूंगी कि सारी फसलों पर इनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, धान पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, गेहूं, क्योंकि ये दोनों हमारी जो मुख्य फसलें हैं, धान और गेहूं जो है मुख्य फसलें हैं, तो इन पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। इसके अलावा जैसे सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो ये जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है ये भी आपके मौसम के प्रति काफी संवेदनशील होती है, और जैसे आपका मौसम में काफी परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, तो अगर आपकी सब्जी वर्गीय फसलें अगर आप लगा रहे हैं तो आपको मौसम आधारित खेती करनी है। आपको मौसम कब कैसे करवट बदल रहा है उसकी जानकारी उसमें जरूर होनी चाहिए और आपके फसलों में उस हिसाब से प्रबंधन करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आप जैसे जो भी क्षेत्र विशेष में, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपको फसल का चयन करना है उस क्षेत्र विशेष के लिए, फिर उसके आपने किस्म का चयन कर दिया, उसके बाद आपका आपका डे टू डे जो मौसम है उसमें भी काफी बदलाव आ रहा है हर दिन। जैसे आपका बारिश कब हो रही है, कितनी हो रही है, ज्यादा हो जाती है, कई बार जो है सूखा की स्थिति आ जाती है, कई बार इतनी बारिश हो जाती है कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो आपको उस अपनी जो फसल है उसमें जो मौसम आधारित जो किस प्रबंधन है वो करने चाहिए। और आजकल तो कई तकनीकें हैं, जैसे क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर हम बढ़ावा कह रहे हैं, मौसम अनुकूल जो कृषि है उसको आपको अपनाना चाहिए, और इसकी कई पद्धतियां हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या क्या उसमें पद्धतियां आप अपना सकते हैं ताकि जो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके दुष्प्रभाव से आप अपने खेती को बचा सकते हैं और जो हमारी भारत की खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित रख सकते हैं, उसको आप अच्छे से रख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर का जिक्र किया, यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी कई बार हम कहते हैं उसको, तो ऐसे में आपने अभी जैसे इस सवाल का जवाब दिया कि हमको ये देखना होगा कि अपनी फसलें कौन सी चुने और उनकी किस्में किस तरह की हों, तो क्या ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मिलेट्स हैं उस तरह की जो पारंपरिक फसलें हैं उनको बढ़ावा देने से हम अपने देश की जो खाद्य सुरक्षा है, जो आज का हमारा विषय है, उसको कहीं थोड़ा बहुत सुनिश्चित करने की तरफ बढ़ सकते हैं?
0: हाँ जी हाँ, जैसे कि आजकल अब मिलेट या सीरियन को भी हम काफी प्रमोट कर रहे हैं, तो जैसे हमारा कई जगह होता है कि बारिश कम हो रही है क्योंकि इसको पानी की कम आवश्यकता होती है, आपका पानी की समस्या है या ये सूखा को भी थोड़ा सा सहन करने की इनमें क्षमता होती है, तो इसमें आप मिलेट को प्रमोट कर सकते हैं। और जहाँ पे आपका पानी की कम आवश्यकता या पानी की आपके ये कैनाल नहीं है, नहर नहीं है या सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे आप मिलेट भी लगा सकते हैं और बारिश के आधार पे वर्षा,
3: क्योंकि वहाँ पे इन फसलों को पानी की कम जरूरत होती है।
0: हाँ, इनको कम जरूरत पड़ती है और थोड़ा इसमें जो है सूखा सहन करने की भी शक्ति होती है।

0: इसके अलावा भी जैसे आपको कई प्रबंधन और करने हैं, जैसे आपका फसल का तो चेंज करना ही है, मिलेट आप लगा सकते हैं, इसके अलावा आपका क्रॉप रोटेशन भी आप कर सकते हैं, फसल विविधीकरण कर सकते हैं, मिश्रित खेती आप कर सकते हैं, इसमें जैसे आप 2-3 फसलें आप लगा सकते हैं। इसमें कई बार क्या फायदा होता है कि जैसे आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें आपका मौसम में तो अनिश्चितता होती है, साथ में आपके कीट बीमारियों की भी आ जाते हैं, कई टाइप के आपके कीड़े बीमारियां भी आ जाते हैं। तो इसमें कई बार ये होता है कि सपोज आपकी एक फसल से अगर आपकी कम उत्पादन हो रहा है तो उसका कंपनसेट दूसरी फसल आपकी कर लेती है मिश्रित खेती से। तो मिश्रित खेती में एक फायदा और है, इंटीग्रेटेड फार्म हम कहते हैं, उसमें हम खाली आपको जो है खेती नहीं करनी, उसमें आपको पशुओं का भी लगाना है, क्योंकि पशुधन भी हम लगा कर सकते हैं, उसमें पोल्ट्री का भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन आप कर सकते हैं, बतख पालन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, किसान भाई बहनों को उससे काफी फायदा हो जाता है, आपको खेती से भी उसमें मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको और पशुधन है या मुर्गी पालन कर रहे हैं या बतख पालन कर रहे हैं उससे भी आपको अतिरिक्त आय का उससे मिल जाता है।
1: मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करें हम अपने,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: क्रॉप रोटेशन करना है,
0: फसल विविधीकरण करना है, उसके अलावा आप मिश्रित खेती कीजिए, आप किस्मों का तो चयन करना ही है आपको कि आपका अभी जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो उसमें आपको ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटी लेनी है, जहाँ पे आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे उस टाइप की फसलें लेनी है, उस टाइप की किस्में लेनी है।
1: निरंकार जी, जल संरक्षण के बारे में हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे,
2: हाँ।
1: क्या उसका भी हमें लगता है कि कुछ यहाँ पे
2: बिल्कुल वही पूछने वाला था कि जल संरक्षण है या टपक सिंचाई विधि है, क्या ये भी हमें कुछ मदद कर सकती है?
0: जी, जैसे कि अभी मानसून का आप सीजन देख रहे हैं तो इसमें तो आपको वर्षा जो जल संचय जरूर करना है, क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा भी है कि जो बारिश हमारी हो रही है उसकी इंटेंसिटी में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है और आपका जो है कई बार क्या होता है वाटर लॉगिंग जैसी समस्या जाती है। तो अब जैसे कई फसलें होती है आपकी, जैसे मक्का आपकी लगी है, सब्जी वर्गीय फसलें या दलहनी फसलें लगी है, तो इसमें अगर वाटर लॉगिंग जैसी समस्या आ गई तो आपकी फसलें खराब हो जाएंगी, तो पानी ज्यादा भर गया अगर तो उनकी जड़ें खराब हो जाती है, आपकी फसलें खराब है, तो आपको इसमें वाटर लॉगिंग की व्यवस्था करनी है और उसके आसपास आपको किसी खेत के आसपास या आप जो भी आपके खेत है या आपके विलेज लेवल पर एक पॉन्ड आप बना दीजिए और जो भी आपकी पानी जो खेतों से आप निकास कर रहे हैं उस पॉन्ड में आप उसको एकत्रित कर दीजिए। इससे कई फायदे हैं, एक तो आपका खेत का पानी जो है आपका पॉन्ड में एकत्रित हो रहा है तो उस खेत से जो खनिज लवण भी निकल रहे हैं पानी के साथ वो उस पॉन्ड में चले गए। अब जब सूखा पीरियड आता है, क्योंकि बारिश तो आपकी हमेशा हो नहीं रही है, आपका बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने से आपकी बारिश एक दिन हो रही है 4-5 दिन तक बारिश नहीं आ रही है, तो उस समय आपको फसलों को जो पानी की आवश्यकता होगी तो आप उस पॉन्ड को किसी पंप के जरिए या आप बकेट के जरिए वो फिर से आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, एक तो आपके फसलों को पानी मिल जाएगा, दूसरा जो आपका खेत से जो खनिज लवण उसमें पानी में मिक्स हुए वो भी फिर से आपको खेतों में मिल सकते हैं। तो इस मानसून सीजन में तो आपको वर्षा जल संचय करना चाहिए, इससे आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आपकी करनी चाहिए, इसमें आपको खेतों पानी तो मिलेगा ही, साथ में आपका जो भूजल है उसका भी आपका स्तर बढ़ेगा, जो ग्राउंड वाटर जो हम कह रहे हैं।
2: बिल्कुल, और हम तो अपने कार्यक्रम में बार बार अपने किसान भाइयों को जल संरक्षण की बात करते रहते हैं अपने विशेषज्ञों के द्वारा, खुद की बातचीत में और संगीत के माध्यम से भी।
1: बिल्कुल, और वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम, है ना। तो चलिए इसी बात पर हम एक ये लोग गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो जल संरक्षण के ही महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ है।

0: 2:52 और 11 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उन्नत किसान। और आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है जलवायु परिवर्तन और भारत की खाद्य सुरक्षा। और हमारे साथ मेहमान के तौर पर आज गोल्ड स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब से बहुत से विषयों पर निरंकार जी हमने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। इसी पर बात को आगे बढ़ाते हैं, जल संरक्षण की बात हम कर रहे थे तो आप जो थोड़ी देर पहले मुझसे जिक्र कर रहे थे, अब आप श्रोताओं के लिए वही सवाल डॉक्टर साहब से पूछिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने तरीके बताए हैं लेकिन हमारे देश में छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं?
2: जी, जैसे कि हमारे देश में छोटे छोटे किसान हैं और जिनका लैंड होल्डिंग भी काफी कम होता है, तो उनको तो सबसे पहले यही मैं कहूंगी कि जैसे वर्षा जल संचय तो आपको करना ही है, इसके अलावा जैसे आपको मिश्रित खेती करना है, इंटीग्रेटेड फार्म करना है, उसमें क्या क्या आपको पशुधन भी रखने हैं, उसके साथ साथ आपने खेती भी करना है। मिश्रित खेती हो गया, 2-3 फसलें आपको लगानी है, आप उसमें बतख पालन भी कर सकते हैं या मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। अगर धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें आप बतख भी रख सकते हैं, या आपके पास छोटे छोटे पौंड है तो उसमें मत्स्य पालन भी आप कर सकते हैं।
1: थोड़ी जमीन से ज्यादा फायदा,
2: ज्यादा आप फायदा
1: लेने के तरीके
2: अपना सकते हैं। और आपको जैसे ड्रिप इरिगेशन का भी अभी जैसे मैं जिक्र करना चाहूंगी, स्प्रिंकलर इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, तो इसमें जैसे आपके पास अगर कम पानी में ही आपका ज्यादा से ज्यादा आप इसमें खेतों में इसको डाल सकते हो, और जब आवश्यकता होती है उसी समय ये पानी जो आप अपने पौधों को दे सकते हैं, और पौधों को भी उपयुक्त समय पर अगर उपयुक्त वातावरण मिल रहा है, चाहे वो पानी है जो हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, उसको हम इरिगेशन के माध्यम से भी उसको उपयुक्त दे सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी हम उपयुक्त वातावरण देकर फसल की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: अजय डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने शुरू में किया बताया था कि हमारा जो जलवायु परिवर्तन है उसको होने के बहुत सारे कारण है, उसमें हम जन साधारण क्या भूमिका निभा सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन है उसका असर हमारे वातावरण में हमारी फसलों पर ना पड़े?
2: जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो कहीं से या तो हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम करें या जो ऑलरेडी वातावरण में उसको अवशोषित,
1: जैसे इस समय काफी एसी वगैरह चल रहे हैं।
2: हाँ जी, हाँ जी, तो इनको हम कम से कम करें तो उससे भी हम जो है कहीं ना कहीं जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान दे सकते हैं। इसमें हम जो भारत का प्रत्येक नागरिक है उसका योगदान होना जरूरी है, चाहे वो कृषि करता है या नहीं भी करता है, क्योंकि जैसे हम ज्यादा से ज्यादा वाहन चला रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, हम औद्योगिकरण के नाम पे अपने पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, और जो पेड़ होते हैं वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन को देते हैं, तो ये हमारे जो वातावरण से CO2
1: या रसायनों का बहुत उपयोग,
2: काफी उपयोग कर रहे हैं। खेती में जैसे कि अभी हमारा चल भी रहा है कि कम से कम जो

0: केमिकल फर्टिलाइजर है उनको कम से कम हम खेतों में यूज करें, जितनी हो सकता है उतना ही हम उसका यूज करें,
1: क्योंकि बाकी उड़ जाता है,
0: बाकी उड़ जाता है। और मौसम के अनुसार करें, क्योंकि ज्यादा तापमान में हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया तो खेत को भी नुकसान मिलेगा, हमारी जो धरती माता है वो भी खराब होगी और हमारा जो
1: पैसे का भी नुकसान होगा,
0: और वो ज्यादा से ज्यादा जो है वातावरण में उत्सर्जित होकर नाइट्रस ऑक्साइड आपका निकल जाएगा
1: और वो आसमान में कैसे जाएंगे,
0: वो खराब हो जाएगी। इस तो हमको जो है जैविक खेती अपनानी चाहिए, हमको नेचुरल खेती अपनानी चाहिए, प्राकृतिक खेती हमको करनी है, जिससे जो हमारी मृदा भी अच्छी बनी रहे और जो हमारे ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन हो रहा है वो वातावरण में कम से कम हो।
2: बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने जैविक खेती का भी जिक्र किया और यही बात हमारे भी होठों पर थी कि आप कुल मिलाकर यही संदेश देना चाह रही हैं कि हमें प्रकृति की गोद की तरफ वापसी करने की तरफ सोचना चाहिए, यानी औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के तौर पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी प्रकृति का और पर्यावरण का ख्याल हम सबको रखने की जरूरत है। हम जो कृषि से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी कृषि के बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छा ये संदेश आपने दिया, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर आप हमारे किसान भाई बहनों को इस विषय पर, खास तौर से इस विषय पर क्या सलाह देना चाहेंगी, और किसान भाई बहनों को जो कि जन साधारण से थोड़े से अलग हटके हैं क्योंकि इससे जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या क्या उपाय अपनाएं जिससे कि ये जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है इससे निपटने में वो सफल हो सके।
0: जी, इसके लिए तो जो जलवायु परिवर्तन की समस्या और हमारे भारत की खाद्य सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए तो मैं कहूंगी कि आपको जो जलवायु सहनशील कृषि है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हम कहते हैं या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इसको अपनाने की जरूरत है। इसकी जो विभिन्न पद्धतियां हैं इसको आप अगर अपनाएंगे तो आपकी उत्पादकता जो खेती में है वो बनी रहेगी। साथ में इसको अपनाने से जो हमारे जो मैंने कहा ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होता है वातावरण में वो कम से कम होगा, तो ये इसका भी योगदान एक हमारे जलवायु परिवर्तन को कम करने में होगा। इसके अलावा जैसे मौसम आधारित आपको खेती करनी है, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं कि मौसम में काफी अनिश्चितता आ रही है, तो जब भी आप कोई कृषि कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, सिंचाई करना है या आपको उसमें कोई स्प्रे करना है, तो उससे पहले आपको मौसम की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसके लिए आपको डिजिटल एग्रीकल्चर आजकल विभिन्न माध्यम है, जैसे आप मोबाइल के माध्यम है, डिजिटल ऐप डिफरेंट ऐप है उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, और मौसम की जानकारी तो आप अभी रेडियो के माध्यम से भी ले सकते हैं, आपका FM गोल्ड है, ऑल इंडिया रेडियो है, इसके माध्यम से भी आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं। और मौसम के आधारित खेती आप कीजिए, मौसम आधारित अगर खेती करेंगे तो आपको समय पे आप जो भी आपके उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी, आपकी रिसोर्स सेविंग होगी, आपके उपयुक्त मौसम के आधार पर आप अपनी फसलों में उपयुक्त प्रबंधन समय समय पर करते रहेंगे जिससे आपकी गुणवत्ता उत्पादकता बनी रहेगी, आपकी रिसोर्स सेविंग होगी, आपकी इनकम अच्छी रहेगी। तो मैं किसान भाई बहनों को यही सलाह दूंगी।
1: डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: जी। आप सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन और भारत की खाद्य सुरक्षा विषय पर आज विशेष बातचीत हमारी मेहमान डॉक्टर अनंता वशिष्ठ के साथ, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और कार्यक्रम आप सभी का जाना पहचाना और आप सबका मनपसंद उन्नत किसान। फिलहाल हम कार्यक्रम की अंत की ओर बढ़ रहे हैं और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ जुड़े हुए हैं मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा और मेरे साथी निरंकार। लेकिन अब निरंकार जी, वक्त हो रहा कि हम अपने श्रोताओं से इजाजत ले लें, और कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम आज हमारे श्रोताओं तक पहुंचा। तो फिलहाल आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।

0: फिल्म उद्योग प्रसार को ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि BIA अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्याय शास्त्र को भी दर्शाता है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हेवेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के शिष्टमंडल शामिल थे। 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश के शाश्वत ज्ञान को विश्व तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi dedicated, inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees at Balotra, Rajasthan. These projects spanned multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister dedicated India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector.
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: Earlier, Mr. Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. This marks a significant leap forward in country's civil aviation landscape and will further advance the vision of Ude Desh Ka Aam Nagrik.
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
1: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG Semi-Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility at Sanand in Ahmedabad. Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. The ministry said the government is committed to dismantling every terror module to safeguard the country and its citizens. Union Minister for Railways Ashwini Vaishnav has expressed

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद। इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं और लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक ही बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहेंगे?
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खाते मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूं वो नहीं हुआ, पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहां नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का, फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तिहानात पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सिमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रहीं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रहीं। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश, और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट चुमारा छपता, लेकिन अंग्रेज

0: बात में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे। यानी कि एक तालिबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला अफजाई मिली कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठा रहा। और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था। अभी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर MS वॉन्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी, तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रहा। प्रोफेसर AN धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए MPhil और PhD में, पहले जयरामन साहब थे, मैंने वहीं से MPhil भी किया, PhD भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि माय प्रोग्रेशन हैज नॉट बीन क्वाइट लीनियर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, मैंने उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया, और जब मैं इंग्लिश में, मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया।
1: रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कॉन्फर किया गया पद्मश्री, इट वॉज योर इनिशियल रिएक्शन, क्या आपके जहन में ये था कि पद्मश्री आपको कॉन्फर किया जाएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत काम करना पड़ता है पद्मश्री के लिए। इससे पहले मुझे बड़े बड़े एजाजात मिले हैं, साहित्य अकेडमी के कई अवार्ड मिले, स्टेट अवार्ड भी मिला है वगैरह वगैरह, मुझे बहुत सारे कंट्रीज का दौरा करना पड़ा। लेकिन ये जो है पद्मश्री, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मिलेगा।
1: प्रोफेसर शौक साहब, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग बाय ह्यूमन बीइंग, वेयर फ्रॉम दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन हैज ओरिजिनेटेड, तो आप क्यों लिखते हैं, आपने क्यों लिखना शुरू किया पहले से?
0: इट इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन व्हेन आई थिंक हाउ डिड आई राइट एंड व्हाई डिड आई राइट। इस एज में पहुंचकर जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग is an expression of creativity. So creativity in itself is an instinct for every human being. Creativity bachpan se hi paida hoti hai, playfulness. Jo playfulness bachpan ki hai, banana, bigadna, todna, marodna, vagera, aur phir se naya banana, ye human instinct hai. To instinctually kuch kaam karne se ये है कि सबसे पहले जो इन्वॉल्वड है पर्सन हु क्रिएट्स, ही गेट्स सम काइंड ऑफ प्लेजर इन मेकिंग एंड रिशेपिंग, एंड वही बेसिक पर्पस है। फॉर इंस्टेंस फॉर मी, वेदर आई राइट इन इंग्लिश और कश्मीरी और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, इट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट आई एम इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग। आई एम द फर्स्ट रीडर ऑफ माई राइटिंग, answerable to myself. I assess my writing first of all. I become the first critic of my writing. तो ये अलग बात है, फिर मुझे कोई पढ़ने वाला मिले या ना मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा लिख के गए हैं इस दुनिया से। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हर किसी शायर को, नावल निगार को, अफसाना निगार को, ड्रामा नवीस को ये देखना है कि इज इट सेटिस्फाइंग द क्रिएटर्स ओन इंस्टिंक्ट टू क्रिएट और नॉट। इफ इट डज नॉट, देन इट नीड नॉट बी मेड पब्लिक।
1: हिस्ट्री भी इसमें है कि इंसान का पहले से इंस्टिंक्ट रहा है। क्या आपको लगता है कि एज अ राइटर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इन द लाइफ आपको लोग जो पढ़ते हैं या पढ़ते थे, आपको किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता था?
0: सबसे पहले हम अपने आप हो जाएं लिखने से, कुछ क्रिएट करने से, तो वो बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसके साथ ये भी है, वरना कोई छापता ही नहीं, पब्लिश ही नहीं करता। पब्लिश इसलिए करते हैं कि कोई और भी उस दुनिया में हो जो मेरे एक्सपीरियंस में शरीक हो, शामिल हो, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कोई और समझने
1: वाला, रीडर जो आपका होगा,
0: रीडर जो होगा, या अगर कोई सिंगर हो, कोई सुनने वाला हो, अगर कोई पेंटिंग करता है तो कोई
1: देखने वाला,
0: तो इसी तरह स्कल्पचर वगैरह में भी फाइन आर्ट्स हैं, उनमें यही है, क्रिएटर के अलावा कोई और इसमें शामिल हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को बहुत सारे रीडर्स मिले, और मिलते भी नहीं। अगर हम किसी बड़े से बड़े राइटर को भी लें, दुनिया के सबसे अजीम, बस मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे अजीम दुनिया का राइटर जो है वो विलियम शेक्सपियर है। सब उसका नाम जानते हैं, कोई दुनिया में है ही नहीं जो भी एजुकेटेड है जो उसका नाम,
1: विलियम शेक्सपियर को, उनके नाम को नहीं जानते हैं।
0: उसके काम को कौन पढ़ा है? बहुत सारे लोग, उसके इतने दर्जनों ड्रामास हैं, उनको किसने पढ़ा है? किसी एक ने एक प्ले पढ़ा, किसी ने एक चैप्टर पढ़ा, किसी ने एक का सीन पढ़ा, कुछ डायलॉग्स याद किए, इतना ही मिल गया उसको। और शेक्सपियर को खुद क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो ये कि अपनी जिंदगी उसने बहुत ही फायदेमंद तरीके से गुजारी कि वो क्रिएट करता रहा और खुश होता रहा। वही खुशी जब वो

0: एक्सटेसी मिलेगी अपने आप को, क्रिएटर को, वो बड़ा इनाम है।
1: प्रोफेसर साहब, बीइंग एन ऑथर एंड राइटर, आपको क्या लगता है जिंदगी में किस तरह का पर्पस आपको लगा एज राइटर? आपको फीलिंग है आज की तारीख में?
0: न सिर्फ ये कि मैं अपने दुख दर्द और अपने तजुर्बात का इजहार करूं, बल्कि मैं एक जमाने में रहता हूं, किसी जगह रहता हूं। सबसे पहले मैं अपने घर में रहता हूं, फिर अपने मुल्क में रहता हूं, अपने रियासत में रहता हूं और इस दुनिया में रहता हूं, 21वीं सदी में रहता हूं। मेरा अकेलापन बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। मेरी एग्जिस्टेंस जो है, मेरा वजूद जो है, इज इन रिस्पॉन्स टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस 21st सेंचुरी लिविंग इन सरफेस ऑफ द ग्लोब। उन सब के साथ मेरा ताल्लुक है जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन एज राइटर, सेंसिटिव राइटर, वो आंसरेबल है, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं भी हो। उन सब लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, जो रिश्ता है अपने जमाने और स्पेस एंड टाइम के साथ रिश्ता है, वही रिश्ता, उस रिश्ते की बिना पर हम अब एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं और शरीक हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें। लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा, अपने एग्नीज और अपने पेन के बारे में लिखा, वो मेरा इंडिविजुअल पेन, मेरी इंडिविजुअल एग्नी नहीं, बल्कि पूरे 21वीं सदी के इंसान की मुसीबत है, उसका अजाब है, उसका तन्हाईपन है, वो लोनलीनेस है जो हमको मिली 21वीं सदी में। लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन को जब मैं बहुत ही इंटेंसिफाई करके लिखता हूँ तो वो यूनिवर्सल खुद ही बन जाता है। आज भी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जाने 16वीं सदी में या 17वीं सदी में कश्मीर कैसा था, कहाँ ढूंढेंगे वो? सबके सब इस जहानी पानी से चले गए हैं। तो अगर हम झलक ढूंढना चाहें, वो उस जमाने के अदब पारों में ढूंढ के निकालेंगे, कहीं कहीं कोई एक शेर, कोई एक मिसरा या कोई एक नज़्म पूरी मिलेगी, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ पाया 17वीं सदी या 18वीं सदी के बारे में, वरना लिरिसिज्म वो कॉमन हो जाता है। इसलिए तर्जमानी बुनियादी शर्त है अदब की।
1: प्रोफेसर साहब, व्हाट हैव बीन योर फोकस्ड एरियाज? आपके इमोशंस से जुड़ी हुई जो चीजें थी, वो हाउ दोज पैरामीटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड योर राइटिंग्स?
0: लाजमन है कि कोई राइटर इस दुनिया में किसी भी जबान में किसी भी मुल्क में लिखता हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिखता, अलग से होके नहीं लिखता
1: जी।
0: ही राइट्स इन रिस्पॉन्स टू अदर लिटरेचर्स ऑफ अदर लैंग्वेज ऑल्सो, विद इन हिज ओन लैंग्वेज, विद इन हिज ओन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके लिए डिलिबरेट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जरूरी आज के मसलन हाई फाई साइंस के बारे में लिखूं, AI के बारे में लिखूं, या आज के इंतजार के बारे में। अगर डिलिबरेटली हम कोशिश करेंगे, वो अच्छा अदब कभी नहीं बन पाता। हाँ, जरूर ये है कि मैंने जैसा कहा कि कोई भी शायर हो, अदीब हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता, ही हैज टू रीड अलॉट। क्योंकि अदब में दो चीजें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हालत। ठीक है, हमें उसका सब्जेक्ट मैटर मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हालत का ताल्लुक जहां तक है, मसलन अगर ये टेबल मेरे सामने है, ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, वो एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे, उसको जरूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा।
1: Exactly.
0: इसी तरह लिटरेचर में भी अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम अज कम उसने रशियन वगैरह लिटरेचर की बात न करूं, अगर अपने भारत की ही बात करें, कम अज कम प्रेमचंद को तो पढ़ना पड़ेगा, कम अज कम कृष्ण चंद्र को पढ़ना पड़ेगा। वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है।
1: प्रोफेसर अशोक साहब, द अमाउंट ऑफ टाइम, द कैन से द आवर्स, मंथ्स, लाइफ यू हैव स्पेंट ऑन राइटिंग्स इन एकेडमिक्स, हाउ द पीपल अराउंड यू, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड हु आर एसोसिएटेड विद यू, यू वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनीबॉडी?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
1: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri, Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी जम्मू

0: कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। शनिवार की बहुत खूबसूरत दोपहरी है, मॉनसून मुबारक हो आप सभी को। सभी को सीमा वर्मा का नमस्कार। मन भावन प्रोग्राम की पहली पेशकश मेरी ओर से आप सबके लिए।

चलिए इसी दीवानगी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मुझे आप सबका साथ मिला हुआ है, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके मैसेजेस जो हैं उन्हें देखना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए, शुरू से ही आपके मैसेजेस आने लग पड़े हैं, और इसके लिए एक बार फिर आप सभी को याद दिला दूँ, fmgoldaiadelhi@gmail.com इस पर आपको अपना संदेशा भेजना है। अब क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं हमें प्रोग्राम से पहले ही आना शुरू हो गए, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको ये एड्रेस पता है, लेकिन जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया है, आप 100.1 के साथ हैं। मेरा नाम है सीमा, कार्यक्रम का नाम मन भावन, और ये कार्यक्रम आपकी पसंद के गीतों का कार्यक्रम होता है। तो हम अब शुरू करते हैं आपके मैसेजेस को लेना। दिग्दर्शन जी और कविता गौड़ जी, आपने अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया इसका, पूरी तैयारी करके आप आए हैं इसके लिए शुक्रिया। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मैंने पढ़ने शुरू कर दिए हैं। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खुरवाल जी, सचिन, अमन और दीपांशु हैं, पानीपत से नरेश मल्होत्रा हैं, और साथ में लक्ष्य हैं, कोयल हैं, नानक चंद मल्होत्रा हैं। अगर हम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग से हमारे पास संजय साहू जी, सुनीता साहू और शशांक हैं इनके साथ, और सीमा साहू हैं। गांव नथाना पंजाब की बात करें तो हरजिंदर छिंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया, आपके साथ जसवीर जस्सी हैं और सीता हैं और गीता भी हैं। चंडीगढ़ मोहाली से टीडी मल्होत्रा साहब, आपका संदेशा हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ ऋतिक हैं, प्रतीक हैं, अनिल शर्मा हैं और जयवीर सिंह हैं। एक नाम और है आपके साथ जो कि है अमनदीप। आइए सुनते हैं एक और गीत इनमें से किसी एक की पसंद का।

FM Gold 100.1 आप सुन रहे हैं और आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के साथ. आपके साथ मनभावन प्रोग्राम है और 3:38 भी हो गए हैं. समय भी आपको बता दूं, आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा और मेरे साथ आपके बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड ख़त कह सकते हैं. ये मध्य प्रदेश से हमारे पास खरगोन जिला खरगोन से मास्टर अशोक वर्मा है, अर्चना वर्मा है, अनुज वर्मा है, आयुषी है, इनके साथ रमेश चंद्र वर्मा है, शेख मूसा भाई जान है, भाई राजकुमार बुडाना है और इन्होंने कुछ नाम और लिखे हैं. सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप.

ये आपने मैसेज किया है। आपको एक बात बताऊं, आप ना जिनके नाम आप लिख रहे हैं उन्हें ज़रूर आप कहें कि भाई आप संदेशा जो है वो अपना खुद भेजें। हम इतनी लंबी लिस्ट लिख देते हैं फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हमारा नहीं लिया जाता, नाम मिस हो जाता है, क्या करें। यहाँ पर एक और हमारे पास संदेशा आया है, ये आया है जी बोधराज खोरवाल जी हैं, कमला रानी हैं, गीतिका खोरवाल हैं, भानु प्रकाश हैं, उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने हमें मैसेज किया है। और हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, दो मैसेजेस आते हैं उत्तम नगर से और उनका सरनेम खोरवाल होता है, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज जाती हूँ कि अभी नाम लिया शायद मैंने। तो चलिए अब अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। और ये हरिद्वार से हमारे पास मैसेज आया है, मोहम्मद अंसारी साहब हैं, गुलाम साबिर राही साहब हैं, महराज जहाँ हैं, और इन्होंने आज़ाद नगर हरिद्वार से हमें अपना ये लिख कर भेजा है संदेशा। अब अगला संदेशा जो है वो हमारे पास आया है जी ऊपरकोट बुलंदशहर से।

अपना ध्यान जो है वो बढ़ाएं। तो जी भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा है, कपिल चिंपा है, ईशान चिंपा है और पूजा परिहार हैं इनके साथ। और एक आध संदेश और पढ़ लेती हूँ, फिर गीत जो है वो इंतज़ार कर रहा है लता जी की आवाज़ में। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया जी हैं, एंजल हैं, सोनू हैं और पप्पी भाटिया हैं इनके साथ। फरुखाबाद से

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम मन भावन है और 3:45:55 हो गए हैं जी। आपको मैं बता दूं, समय वैसे अभी है हमारे पास, तभी मैं आपको एक बार फिर से पता बता दूं, FM Gold AIR Delhi @gmail.com, FM Gold AIR Delhi

साथियों, आपने महसूस किया है कि किस तरह से अभी कुछ समय पहले ही तो हमने 2026 का स्वागत किया और अब हम सातवें महीने में आ पहुंचे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि समय बहुत बहुत जल्दी निकल रहा है। और मैं तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ याद दिलाऊंगी कि जो कुछ आपने 2026 के शुरू में सोचा था करने का, क्या उसे शुरुआत कर दी है आपने? क्या आप उस कार्य के बीच तक पहुंच गए हैं या आपने अभी तक शुरुआत की ही नहीं है? भाई, अब तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने शुरुआत की ही नहीं है तो अभी भी 2026 हमारी मुट्ठी में है, आप उस काम की शुरुआत कर सकते हैं जो आपने सोचा, क्योंकि बहुत सारी बातें हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। और वो क्यों नहीं कर पाते हैं उसका जवाब तो हम ही दे सकते हैं। कहीं कभी आलस आ जाता है, कभी हम कल पर टाल देते हैं कोई बात, तो ये जो विल पावर और डेडिकेशन है ये तो हमारे अंदर होनी चाहिए। बहरहाल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ आज मन भावन में मैं सीमा वर्मा हूँ। मेरे साथ आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं और वक्त ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूँ, FM गोल्ड AIR दिल्ली @ gmail.com।

0: भाई कई बार ऐसा होता है गीतों के आगे कुछ डायलॉग्स आ जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सुनते हैं और फिर गाना सुनते हैं तो एक मोटे मोटे तौर पे जो कहानी है ना उसका अंदाजा हमें, यानी फिल्म की जो कहानी है उसका अंदाजा हमें हो जाता है ना।
1: फिर क्या हुआ?

इसी के साथ अपनी दोस्त सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए मन भावन कार्यक्रम संपन्न करने की। आप साथ रहिए गोल्ड 100.1 के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन से केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को

इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में काबो वर्दे को अतिरिक्त समय के 3-2 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

4:11 और 6 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज। आइए साथियों, कुछ खूबसूरत फिल्मी गीत आप तक पहुंचाने लाई हूँ। पहला गीत मिलकर सुनते हैं।

इस कव्वाली के बाद साथियों आइए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में आपको अपना

बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ख्याल कैसे रखना है कि जब आप बाहर घर से निकलें तो ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास एक छतरी होना बहुत ज़रूरी है, और अपने फुटवेयर का भी ख्याल रखिएगा। कई बार आपका जो फुटवेयर होता है जब वो गीला हो जाता है तो ख़राब भी हो जाता है। तो आइए अब इसी बात के साथ एक गीत और सुनते हैं, और उसके बाद हम सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोज़गार समाचार।

0: is available on the MRPL careers portal at www.mrpl.co.in/careers. The National Institute of Technology, NIT, Raipur, an institute of national importance under the Ministry of Education, Government of India, has invited applications for the post of a registrar on deputation, including short-term contract basis. There is one vacancy in pay level 14 as per the 7th CPC. Eligible candidates from central state government organizations, autonomous bodies, universities and similar institutions may apply in the prescribed format. Applications must be submitted in hard copies along with supporting documents by 15th July 2026. Applicants are advised to regularly visit the website at www.nitrr.ac.in for detailed notifications, eligibility conditions and updates regarding the recruitment process. I repeat the website, it is www.nitrr.ac.in. Northeastern Police Academy, NEPA, Meghalaya, under the Ministry of Home Affairs, Government of India, has invited applications for the post of a joint director in the General Central Service Group A Gazetted Non-Ministerial category on a deputation basis. Eligible officers may apply in the prescribed format within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions, qualifications, experience requirements and application forms available on the official website. Do refer to www.nepa.gov.in. I repeat, it is www.nepa.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में सुपरवाइजर के 12 पद रिक्त हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा, आयुध निर्माणी नालंदा की वेबसाइट munitionsindia.in। भारत सरकार का उपक्रम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अधिकारी वित्त कुल 5 पद, अधिकारी मानव संसाधन 1 पद, अधिकारी चिकित्सक कुल 2 पद, बैकलॉग वरिष्ठ प्रबंधक सीसी लैब रिक्तियां 1, अधिकारी विधि विभाग 1 पद, सहायक अभियंता 5 पद, अभियंता विद्युत कुल 5 पद, वरिष्ठ अभियंता विद्युत कुल 5 पद, उपप्रबंधक 3 पद और अभियंता सिविल 2 पद। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अभियंता सिविल के 2 पद भी रिक्त हैं। योग्यता, अनुभव, आरक्षण, वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र का 23 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक का अंक। इसके अतिरिक्त आप कंपनी की वेबसाइट www.rcfltd.com के भर्ती अनुभाग पर जाकर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.dindayalport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई

0: आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन, वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
2: Hello Vaishnavi and to our listeners, Namaskar, good day everybody. And it's 4:30, it will be 4:31 now. So you're tuned to Parikrama on Akashwani Gold at 100.1 MHz with Shagun Chopra and Vaishnavi. So we are very thrilled to begin our program.
1: जी शगुन, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, श्रोताओं को यहाँ पे एक रोचक जानकारी दे चलते हैं।
2: Which is?
1: इस जुलाई में फीफा वर्ल्ड कप की वजह से लाखों फुटबॉल फैंस अपनी फोन स्क्रीन में ही व्यस्त रहते हैं।
2: ओह यस।
1: और लेकिन इसी महीने का एक और शानदार घटना भी होने जा रही है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जुलाई का सबसे बड़ा शो किसी स्टेडियम या सिनेमा हॉल में नहीं बल्कि आपके सिर के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो रहा है।
2: That's weird. How? Well, even I can tell our listeners about that. I may act, I don't know, but I actually do know. The best part, every ticket, it is completely free. So listeners, cancel all your plans for these 5 nights in July. First, mark July 9th on your calendar. On this evening, dazzling Venus, the brightest planet in our sky. This will pass right next to Regulus, the brightest star in the constellation Leo. A brilliant planet and a brilliant star almost touching. So just look west after sunset. You can't miss it. We would not want to.
1: सोच के ही कितना खूबसूरत लग रहा है, तो देखने में कितना
2: विजुलाइज, राइट?
1: जी बिल्कुल। और श्रोताओं, फिर ठीक 5 दिन बाद 14 जुलाई को आसमान आपको अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाएगा। इस दिन सुपर न्यू मून होगा, यानी चांद पूरी तरह से अदृश्य रहेगा और उसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं होगी। यही वजह है कि ये पूरी साल की सबसे बेहतरीन रात होगी, क्योंकि इस दिन आप अपने मिल्की वे गैलेक्सी को अपनी आंखों से देख सकेंगे। अगर आप शहर की तेज रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाएं तो दक्षिणी आसमान में हमारी गैलेक्सी का चमकता हुआ केंद्र साफ दिखाई देगा, जहां 100 अरब से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं।
2: वाओ, मिल्की वे गैलेक्सी, वी विल बी एबल टू सी इट विद आवर नेकेड आईज। सो ऑन नाउ आफ्टर 14th ऑफ जुलाई, लेट मी टेल आवर लिसनर्स अबाउट जुलाई 16th एंड जुलाई 17th। वेल, वी शुड लुक वेस्ट अगेन। अ डेलिकेट crescent moon will glide right beside Venus, forming one of the prettiest pairings of the summer. The moon and the evening star shining together just

0: Just after the sunset, and then comes the grand finale. On the nights of July 30th and 31st, two meteor showers, they will peak at the exact time, the Delta Aquarids and the Alpha Capricornids. This raining shooting stars from two directions at once, all at once. A double meteor shower ending the month on a very beautiful note. Well, how can we wait for it? I can't actually.
1: बिल्कुल मुझे भी उस दिन का इंतजार है जब हम दोनों साथ में चल के देखेंगे.
0: We should actually.
1: जी बिल्कुल.
0: Okay, so on this particular note, let's begin our program. Well, Vaishnavi told us about the news, discussion segment, Dateline India reports, capsules, tributes. There is so much that we will unfold today. We have planned it for you and we have lined it up for you. So let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi dedicates India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra, Rajasthan. Also inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport.
1: गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया.
0: सेंटर इश्यूज नोटिस टू टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप ओवर वाइड स्प्रेड पायरेसी रिपोर्ट्स, आस्क्स टू सबमिट रिपोर्ट विद इन 15 डेज.
1: भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू.
0: IMD says southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 4 days.
1: और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा.
0: This is our discussion segment Dateline India. Well, it will be about International Day of Cooperatives. First, there is another topic as well. So, let's begin with International Day of Cooperatives. Let's begin our discussion with that. Vaishnavi.
1: Shagun, agar main aapse kahun ki duniya ke sabse taakatwar business model mein se ek ka malikana haq arabpatiyon ke paas nahi balki aap aur mere jaise aam logon ke paas hai. क्या आपने कभी अपनी लोकल डेयरी कोऑपरेटिव के बारे में सोचा है जहां किसान हर सुबह अपना दूध बेचने आते हैं?
0: ओ राइट, एग्जैक्टली. सो दिस वेरी मॉडल, इट गेव इंडिया द अमूल कोऑपरेटिव. दिस इज अ मूवमेंट दैट स्पार्क्ड इंडियाज वाइड रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कंट्री फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट नेशन इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर. हाउ ग्रेट.
1: जी, और बिल्कुल सही कहा आपने. यहाँ फिर हम अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को ही ले लीजिए, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन महिलाओं को जो अचार, मसाले या हैंडीक्राफ्ट बनाती और बेचती हैं. अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है.
0: And that's the very idea behind a cooperative. And when you were mentioning pickles and these spices, even papad, right? It tastes so good, right? And every year on first Saturday of July, the world celebrates International Day of Cooperatives. The roots of this celebration, Vaishnavi, they go back to August 19 in the year 1895. When the International Cooperative Alliance was founded in London during the first Alliance Cooperative Congress.
1: 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि 1895 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की शताब्दी के उपलक्ष्य में जुलाई 1995 के पहले शनिवार को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाएगा.
0: वी शुड ऑल्सो टेल आवर लिसनर्स अबाउट दिस ईयर्स थीम. सो दिस ईयर्स थीम इज प्रीटी ब्यूटिफुल. Pretty and beautiful, International Day of Cooperatives. So, cooperatives for a peaceful world. This is the theme for this year, the year 2026. So, at first, peace and business may sound like two completely different things, don't they? But are they? Because peace isn't only about the absence of war. Peace also means trust. It means fairness. It means knowing that nobody, absolutely nobody gets left behind.
1: जी, और इसका मतलब ये भी है कि लोग साथ मिलकर बैठते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं. और सहकारी समितियां यही काम करती हैं. पारंपरिक व्यवसायों के विपरीत, जहां निर्णय अक्सर निवेशकों द्वारा लिए जाते हैं, सहकारी समितियां लोगों को प्राथमिकता देती है.
0: एंड वैष्णवी, इफ एन इंडिविजुअल इज अ फार्मर, अ कंस्यूमर और समवन सीकिंग अफोर्डेबल सर्विसेज, you aren't merely a customer. You can actually become an owner, and this changes the dynamic completely. When people own an enterprise together, they also share a responsibility.
1: बिल्कुल सही कहा आपने शगुन. जो सहकारी समितियों के जो लोग होते हैं, वे चर्चा करते हैं, मतदान करते हैं, समाधान निकालते हैं और आखिर में सब मिलकर आगे बढ़ते हैं. ये लोकतंत्र है न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि रोजमर्रा के कामकाज में भी।

0: आइए आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। गांव में डेयरी किसानों का एक समूह होता है जिसमें हर किसान के पास कुछ ही गाय हैं। अकेले अकेले उन्हें सही कीमत पर मोल भाव करने में मुश्किल होती है, इसलिए वे एक साथ आते हैं, दूध इकट्ठा करते हैं, उसे मिलाकर प्रोसेस करते हैं, एक भरोसेमंद ब्रांड को बेचते हैं और मुनाफे को सही तरीके से आपस में बांटते हैं।
1: Well, this explains a lot. And if we talk about one farmer alone had limited bargaining power. But thousands of farmers, if they come together, they build one of India's greatest success stories. And that is the strength of cooperation. Or if we think about a group of women in a village, they start making pickles, spices, papad, handcrafted products as well. And working alone, they will reaching the customers. It's actually difficult. And if they work together, they purchase raw materials at lower prices. Then they can divide their responsibilities. They can build a brand and then earn much better incomes.
0: बिल्कुल। और शगुन, इसे हम देखें तो सिर्फ उनका व्यापार ही नहीं बढ़ता है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और शायद इसीलिए भारत ने हमेशा सहकारी संस्थाओं की ताकत को समझा है। डेयरी और खेती से लेकर बैंकिंग, हाउसिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है।
1: वेल ट्रूली लेट मी टेल यू हाउ दिस इज एम्पावर्ड फार्मर्स क्रिएटेड लाइवलीहुड्स strengthen rural economies and also ensure that development reaches people at the grassroots. So at the heart of every cooperative lies a very simple belief, people are stronger together than being alone. And now here's something interesting that I would be mentioning. Members in cooperatives, they contribute financially according to their capacity and then Vaishnavi, they collectively decide how the surplus should be used then.
0: इसका इस्तेमाल कोऑपरेटिव को बढ़ाने में, सदस्यों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में और मुश्किल समय के लिए कोई सुरक्षा फंड बनाने में होता है। ये फैसला सदस्य खुद लेते हैं। सफलता सिर्फ मुनाफे से नहीं मापी जाती, ये इस बात से मापी जाती है कि कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है।
1: Well, this model, it matters more than ever. The world is witnessing rising inequality, social divisions, declining trust. But cooperatives, they come to rescue. They offer a different path, a path where competition doesn't eliminate cooperation. And the numbers, they tell an incredible story. More than 12% of humanity is associated with one of the nearly 3 million cooperatives across the globe. 3 million.
0: बिल्कुल। और दुनिया की 300 सबसे बड़ी सहकारी और म्यूचुअल संस्थाएं मिलकर हर वर्ष 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कारोबार करती है। और शायद सबसे खास बात यही है कि सहकारी संस्थाएं लगभग 280 मिलियन लोगों को नौकरी देती है, यानी कि दुनिया में काम करने वाले हर 10 लोगों में से लगभग एक व्यक्ति को। ये एक वैश्विक ताकत को दर्शाता है शगुन।
1: So India proudly stands among the countries where the cooperative movement has become a pillar of inclusive growth, and perhaps that's the real message of the United Nations theme this year. A peaceful world isn't built only by governments. So listeners, as part of our series Prakriti Ki Baat Akashwani Ke Saath, we bring you a conversation with Devendra Sura, who has been working towards tree plantation and environmental conservation.
2: जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: So to listen to this conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. So you can listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. This will also be brought, in case you miss it, it will also be broadcast tomorrow morning at 10:30 a.m. So now we will be doing the actual work, the parikrama, right? We will find out what our correspondents have lined up for ourselves, for us and for our listeners.
0: मिथिला की सदियों पुरानी वैवाहिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर माने जाने वाली विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा एक बार फिर सज गई है। इस साल 2 जुलाई से शुरू हुई सभा में बिहार और नेपाल से बड़ी संख्या में वर और कन्या पक्ष पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है ये अनूठी परंपरा और क्यों आज भी सदियों पुरानी व्यवस्था लोगों के विश्वास का केंद्र बनी हुई है, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
4: आषाढ़ की दस्तक के साथ मधुबनी जिले के सौराठ गांव में हर साल एक ऐसा अनोखा समागम सजता है जहां न बैंड बाजा होता है न शहनाइयां गूंजती हैं, फिर भी जीवन भर के रिश्तों की नींव रखी जाती है। जिले के रईका प्रखंड स्थित सौराठ सभा परिसर में हर साल आयोजित होने वाले सभा में मैथिल समाज के लोग मूल गोत्र और वंशावली के आधार पर वैवाहिक संबंध तय करते हैं। सभा सजते ही अब तक 7 सिद्धांत लिखे जा चुके हैं और पंजीकारों के पास लगातार और कन्या पक्ष से लोग पहुंच रहे हैं। इस साल मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग इस सभा में पहुंच रहे हैं। सौराठ सभा पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र कहते हैं,
5: ये पंजी प्रथा जो है वो जेनेटिक विज्ञान 14वीं सदी में जब डेवलप किया तो 7 जनरेशन का जीन का व्यवस्था दिया जो 7 जनरेशन तक जीन का असर रखता है, लेकिन हमारे पूर्वज से बहुत पहले इसका व्यवस्था दे चुके हैं। तो पितृता सप्तमम केजे तो मातृता पंचमम केजे, यानी पितृकुल के जो 7 जनरेशन है और मातृकुल के जो 5 जनरेशन है, मध्य का जो संबंध है एक रक्त संबंध में है। हम लोग वो एक रक्त संबंध वैवाहिक संबंध नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर।
4: तेजी से बदलते दौर में जब विवाह की परंपराएं नया रूप ले रही हैं, सौराठ सभा आज भी मिथिला की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बनी हुई है। परिक्रमा के लिए आकिल हुसैन के साथ निधिश्री की रिपोर्ट।
1: नाउ लेट्स फाइंड आउट अबाउट गोवा। So the Goa government has started the application process for the post-matric scholarship scheme for scheduled tribe students for the academic year 2026-27. The scheme supports students from class 11 up to post-graduation. We'll find out more details from our correspondent.
6: The post-matric scholarship scheme aims to support scheduled tribe students in continuing their higher education with financial assistance. Eligible students studying from class 11 to post-graduation who are residents of Goa and belong to scheduled tribe category can apply. The annual family income should not exceed 2.5 lakh. The entire application process is online through scholarships.gov.in. Both fresh and renewal applications are accepted and students can also apply through common service centers if required. Under the scheme, students receive financial support in the form of scholarships and fee reimbursement depending on their course, helping reduce the financial burden of higher education. The scheme is expected to benefit a large number of ST students in Goa, helping them continue their education with greater confidence and reducing financial barriers to learning. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani Parji.
0: और अब हिमाचल की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश के 8 और पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ है और अब हिमाचल की GI टैग उत्पादों की संख्या बढ़कर कुल 17 हो गई है। इनमें सिरमौरी लोहिया की GI को GI टैग मिलना खास तौर पर सिरमौर जिले और गिरपार क्षेत्र के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: सिरमौरी लोहिया भेड़ की ऊन से हथकरघे पर तैयार किया जाने वाला पारंपरिक ऊनी वस्त्र है। अपनी गर्माहट, मजबूती, टिकाऊपन और पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध ये लोहिया वर्षों से सिरमौर, विशेषकर गिरिपार क्षेत्र के जनजीवन, लोक संस्कृति और पहनावे का अभिन्न हिस्सा रहा है। GI टैग मिलने से सिरमौरी लोहिया की विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण मिलेगा और नकली उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय बुनकरों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग बढ़ने से रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश ने राज्य सरकार से इसके व्यापक प्रसार, ब्रांडिंग, आधुनिक पैकेजिंग, ई कॉमर्स से जोड़ने, शिल्पकारों के कौशल उन्नयन और युवाओं के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का आग्रह किया है। साथ ही सिरमौर और गिरिपार क्षेत्र की अन्य पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प तथा कृषि एवं खाद्य उत्पादों का भी वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से GI पंजीकरण दिलाने की मांग की है। निश्चित तौर पर सिरमौरी लोहिया को GI टैग मिलना केवल एक उत्पाद का सम्मान नहीं बल्कि पूरे सिरमौर और गिरिपार की सांस्कृतिक असीमता, पारंपरिक ज्ञान और लोक कला की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
0: देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात का सीमावर्ती जिला कच्छ अब केवल अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं बल्कि तेजी से विकसित हो रही हवाई संपर्क सुविधाओं के लिए भी नई पहचान बन रहा है। औद्योगिक निवेश, पर्यटन और व्यापार को नई गति देने में भुज हवाई अड्डा महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभा रहा है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ में औद्योगिक विकास, पर्यटन और व्यापार को नई गति देने में भुज हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। हाल के वर्षों में हवाई अड्डे पर आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विकास और देश के प्रमुख महानगरों से बढ़ती हवाई संपर्क व्यवस्था ने इसे जिले के विकास का एक प्रमुख आधार बना दिया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भुज हवाई अड्डे के निदेशक नवीन कुमार सागर ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सहज यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक नई पहल की गई।
2: भुज एयरपोर्ट जो है इस जिले के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 8-10 सालों में औद्योगिक क्रांति जिस तरीके से क्षेत्र में आई है और साथ ही साथ जो पर्यटन का विकास जो हुआ है वो एक अभूतपूर्व है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन के पेश हुआ है। 2047 में हम जो है साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बने, उसके लिए भुज को नामित किया गया। यहाँ पे मेजर आप कह रहे हैं टर्मिनल रिकन्फिग्रेशन शुरू हुआ, जिससे खत्म होने के बाद अब उसको 31 जुलाई की हमारे इंजीनियर्स ने डेट दी है, तो उसके बाद हमारी टर्मिनल कैपेसिटी जो पैसेंजर के लिए है वो दुगनी लगभग हो जाएगी, 540 अभी है और वो 1200 यात्रियों को सहजता से प्रति घंटे आवागमन करवा सकते।
1: कच्छ में तेजी से बढ़ते औद्योगिक निवेश, बंदरगाह आधारित विकास, ऊर्जा परियोजनाओं और पर्यटन के विस्तार को देखते हुए आने वाले वर्षों में भुज हवाई अड्डे का महत्व और बढ़ने की उम्मीद है। बेहतर हवाई संपर्क न केवल निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहन देगा बल्कि सीमावर्ती जिले के समग्र आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।
0: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
3: इन टुडेज एपिसोड वी पे आवर ट्रिब्यूट्स टू पैट्रियट सेंट स्वामी विवेकानंद, who died on the 4th of July 1902. His vast knowledge of Eastern and Western culture, as well as his deep spiritual insight and broad human sympathy, made an irresistible appeal to humans across the world who came in contact with him. At the Parliament of Religions held in Chicago in 1893, Swami Vivekananda represented India and its cultural heritage.
4: I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
5: Through his mission of interpreting India's spiritual culture, especially Vedantic philosophy, Swami Vivekananda inspired the Indian national consciousness. He enriched religious consciousness through the rational and humanistic teachings of the Vedanta philosophy. His mission was both national and international. A lover of mankind, he strove to promote peace and human brotherhood.
3: Swami Vivekananda organized the Ramakrishna Order of Monks, which is the most outstanding religious organization of modern India.
5: Swami Vivekananda once spoke of himself as a condensed India. In the course of a short life of 39 years, he left for posterity his four classics, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga and Raj Yoga. Salutes the great patriot saint Swami Vivekananda.
3: We also remember Gandhian freedom fighter Pingala Venkaiah, who died on the 4th of July 1963. India's national flag is based upon his design, which Pingala Venkaiah first presented to Mahatma Gandhi in 1921.
5: Pingali Venkaiah was born on the 2nd of August 1876 in Krishna district of Andhra Pradesh. He served as a soldier in the British Army in South Africa during the Anglo-Boer War in Africa, where he first met Mahatma Gandhi. He was 19 when the meeting took place and formed an association which would last for more than 50 years.
3: Pingala Venkaiah met Gandhiji once again in Vijayawada and showed him his publication with the various designs of the flag. Acknowledging the need for a national flag, Gandhiji then asked Venkaiah to design a new flag and present it at the National Congress meeting in 1921. Initially, Venkaiah came up with red and green colors, but it later evolved with saffron color, a spinning wheel at the center, and a third color, white.

0: अब हम बात करेंगे समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा की सदस्य अम्मू स्वामीनाथन के बारे में। वे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा की उन चुनिंदा 15 महिला सदस्यों में शामिल थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और समानता की आवाज को मजबूती से उठाया था। वर्ष 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जिसने महिलाओं के मताधिकार, शिक्षा और आर्थिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग स्टीफन कॉलिन्स फॉस्टर्स, वेल द कंपोजर प्राइमरली फॉर हिज, वी नो हिम फॉर हिज पार्लर एंड फोक म्यूजिक ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। ही रोट मोर देन 200 सॉन्ग्स, दिस इंक्लूड्स हार्ड टाइम्स, कम अगेन, नो मोर, कैंप टाउन रेसेस एज वेल। मेनी ऑफ हिज कंपोजिशंस दे रिमेन पॉपुलर टुडे।

आज ही के दिन वर्ष 1982 में हिंदी सिनेमा के संवेदनशील और कालजयी गीतकार भरत व्यास का निधन हुआ था। ए मालिक तेरे बंदे हम जैसे अमर प्रार्थना रचने वाले भरत व्यास ने अपने रचनात्मक सफर में 100 से अधिक फिल्मों के लिए 2000 से भी अधिक गीत लिखे थे। आइए आपको सुनाते हैं भरत व्यास का एक गीत।

0: Today, we're also remembering Marie Curie. Well, Polish and naturalized French physicist and chemist, she shared the 1903 Nobel Prize in Physics with her husband, actually, Pierre Curie, for their joint searches on the radioactivity phenomena discovered by Professor Henri Becquerel. The first woman to win a Nobel Prize, the first person to win a Nobel Prize twice, and the only person to win a Nobel Prize in two different scientific fields.
1: 4 जुलाई 1916 को हिंदी सिनेमा की पहली ब्यूटी क्वीन और अपने दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली नसीम बानो का जन्म हुआ था। 1930 और 40 के दशक में उन्होंने पुकार, खून का खून, अनोखी अदा और शीश महल जैसी फिल्मों में अपने प्रभावशाली अभिनय से अलग पहचान बनाई थी। उनकी खूबसूरती और सशक्त अभिनय के कारण उन्हें भारतीय सिनेमा की शुरुआती महिला सुपरस्टार्स में गिना जाता है। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरोबाना की मां थी। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन

0: सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1.05 lakh crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery-cum-petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotara district. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with the engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 3. I beg your pardon, Phase 2. A greenfield refinery is an industrial processing plant for oil, gas or minerals built from scratch on undeveloped clean land. Addressing the program, Prime Minister Modi said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: The monsoon session of parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of next month. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the session from 20th July. In a social media post, Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Defence Minister Rajnath Singh today highlighted India's significant progress in manufacturing and technology, saying the country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organized by a private media organization in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defense platforms. The defense minister said annual defense production has also touched an all-time high of over 1,78,000 crore rupees in the financial year 2025-26, nearly 3 times the level recorded in 2014-15. The government has issued a notice to Telegram over widespread piracy reports. According to the official sources, the government has directed Telegram to take immediate measures against pirated films and over-the-top OTT content. Sources further said that the platform has been asked to submit the action taken report in 15 days. The move aims to protect India's creator economy, film industry, broadcasters, OTT platforms, producers and distributors. Heavy rainfall continued to lash several parts of Maharashtra today, disrupting normal

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए जी। और समाज में बड़ा परिवर्तन है।
2: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है। अच्छा। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ।
2: अच्छा।
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया, जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
2: तो ये कब शुरुआत की आपने?
3: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया, राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया, प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
2: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं?
3: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
2: जी,
3: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
2: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
3: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा।

0: को परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे, वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर सुनोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम। और उसमें मातृ शक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते
1: हैं। पर है बेटी रोड कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें, पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अब भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IPS हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे DGP हैं, IG हैं, SSP हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब GK के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है, चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है, तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े, जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरह बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग, भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ,

0: उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गाँव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गाँव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गाँव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गाँव भी हमारा है, ये गाँव भी मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गाँव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गाँव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं गाँव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया, समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे, वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, अब हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतड़ प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था, हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाएं, तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर जैसे एरी

0: का पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अशोकगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है, और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, तो मैं अपना अनुभव साझा करता हूँ आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस, धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं, पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहाँ पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं, आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की, वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर या हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें, तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है, या नीम का पेड़ है, या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं, वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े और थैला प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की हजारों पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे, तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ, व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है, तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले, या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव पर, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है, जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जाती है, जिनके बड़े पेड़ हैं या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है,
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में चार सदस्य है तो चार पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी और

0: ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं, अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहाँ से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेल पत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से, जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं, और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है, इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है, एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूं पूरे विश्व में, 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ, 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए, और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना, और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में, पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा मानें।

0: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

सारी दुनिया के खास मत रहिए, सारी दुनिया के खास मत रहिए, भीड़ के आसपास मत रहिए, जिंदगी क्या है मैं बताती हूँ, मुझसे मिलिए, उदास मत रहिए। स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 के साथ शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ आपकी दोस्त सीमा वर्मा। पहला गीत मिलके एंजॉय करते हैं।

वेलकम बैक जी। बहुत खूबसूरत कुछ पंक्तियां हैं जो दिल की कहानी कहती हैं, हो सकता है आप रिलेट कर पाए तो आप तक पहुंचाती हूँ। और वो कुछ यूं हैं कि बैठे हैं चैन से, बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, तुम भी बीते वक्त की मानिंद हूबहू, तुम भी बीते वक्त की मानिंद हूबहू, याद में आते हो, तुम्हें आना तो है नहीं।

पहचाने आप ये कौन सी फिल्म का गीत है, या गीत को पहचाने आप? भाई कहना होगा कि ये जो गाना रहा ये एक चार्ट बस्टर गाना रहा, और इसमें माधुरी दीक्षित जी को हमने परफॉर्म करते हुए देखा, किस तरह से वो स्टेज पर ये परफॉर्मेंस दे रही हैं। इस फिल्म का नाम है सैलाब साथियों, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ये गाना पसंद नहीं होगा। इस गीत को कोरियोग्राफ किया सरोज खान जी ने, आज हमारे बीच में नहीं है, मास्टर जी कहकर सब पुकारते थे उन्हें, और माधुरी दीक्षित तो बहुत आज भी बात करती हैं कि बहुत कुछ सीखा है उनसे। इस गीत के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड सरोज जी को मिलता है। इस गीत को सुनते हैं, माधुरी जी का लिप सिंक बहुत खूबसूरत इस फिल्म में रहा है। अभी तो आप सुन लीजिए, मौका मिले तो देखिएगा भी।

0: साथियों, इस गीत में जिनका इंतजार हो रहा था उनका इंतजार तो खत्म होता है क्योंकि आखिर में हमने सुना आ गए आ गए आ गया आ गया व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पर अब मुझे ये कहना है कि मुझे जिनका इंतज़ार था, जिन्हें स्टूडियो में आना था, वो आ गए हैं स्टूडियो में। इसका मतलब ये है कि मुझे अब आपसे इजाज़त लेनी है और गाते गुनगुनाते प्रोग्राम जो है वो अब अपने समापन की ओर है। अब आप तक एक आखिरी गाना आपकी दोस्त सीमा वर्मा को पहुंचाना है। तो ये जो लास्ट सॉन्ग है आज के हमारे इस प्रोग्राम का, ये है फिल्म गुलाम से, जो 1998 में आई। इस फिल्म में हमने देखा आमिर खान साहब को, रानी मुखर्जी को और दीपक तिजोरी को। याद करिए, ये वो समय था जब रानी मुखर्जी का किसी भी फिल्म में आना एक गारंटी होता था कि फिल्म तो चलनी ही है। और इस फिल्म की अगर हम बात करें तो ये फिल्म मध्यम रही, पर इसका संगीत बहुत पसंद किया गया, ख़ास तौर पर वो एक गाना जो अब मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं। ये भी बताऊं आपको मैं कि म्यूज़िक तो खैर जतिन ललित साहब का रहा, जो आप म्यूज़िक के लोग हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, वो पहचान ही जाएंगे। हर म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना एक अलग स्टाइल होता है। लेकिन 1999 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जो है उसके लिए उनको नॉमिनेट किया गया, किसको भला, आमिर खान साहब को। अब पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने किस तरीके से डायलॉग्स के तरीके से इस गीत को अंजाम दिया और सबने बहुत पसंद किया। थोड़ा सा हम भी सुन लेते हैं।
1: घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को

सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। आज के कार्यक्रम में हम भारत और जापान संबंधों और दोनों देशों के बीच आयोजित 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री सुनाई ताकायची 1 से 3 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या रहे, भारत और जापान की ये रणनीतिक साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों का बढ़ता सहयोग भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पिछले शिखर सम्मेलन के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने किन किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या रहे और ये निर्णय दोनों देशों के संबंधों को किस प्रकार नई दिशा देंगे, आइए विस्तार से समझते हैं।
2: आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, खनिज, एआई, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दोनों देशों ने सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी और मानव केंद्रित एआई के विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। इसके अलावा इंडिया एआई मिशन और जापान की जेनिक पहल के बीच संस्थागत सहयोग को भी मजबूत किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के रणनीतिक भंडारण, समुद्री ऊर्जा परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। वहीं पूरे देश में 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बैटरी निर्माण और औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों ने नेक्स्ट जनरेशनल मोबिलिटी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इसके अंतर्गत रेल, सड़क, मानन, जहाज निर्माण, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश और औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने जापान से भारत में बढ़ते निजी निवेश का स्वागत किया और विकसित भारत के लक्ष्य में उसके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पिछले शिखर सम्मेलन में तय किए गए 10 ट्रिलियन येन के निवेश लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति की भी सराहना की। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA की समीक्षा, निवेश का माहौल और बेहतर बनाने तथा व्यापार को नई गति देने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत जापान SME फोरम की शुरुआत का स्वागत किया और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स, औद्योगिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर बल दिया। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए सड़क, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सेमीकंडक्टर, जैव ईंधन और संपर्क परियोजनाओं में जापान के सहयोग की सराहना की। दोनों देशों ने पूर्वोत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाले औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए भी अपनी साझा प्रतिबद्धता।
1: श्रोताओं, 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई ये पहले इस बात का संकेत है कि दोनों देशों की साझेदारी अब पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी, आर्थिक सुरक्षा, निवेश और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नए क्षेत्रों तक पहुंच रही है। आकाशवाणी समाचार ने भारत जापान संबंध और 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन पर जापान में भारत के पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मूले से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस

0: देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं, वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई है तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है। इसका अर्थ यह है कि ये रिश्ता ऑलरेडी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों की ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाए। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात तो है ही है, इसके साथ ऊर्जा की सिक्योरिटी की बात है, इसमें AI से लेकर कोलैबोरेशन की बात है, रेयर अर्थ और प्रेशियस मटेरियल जो होता है उसके बारे में, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा है।
1: श्रोता, 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं में इंडो पैसिफिक क्षेत्र बार बार सामने आया। हिंद प्रशांत की अवधारणा नई नहीं है। पिछले 2 दशकों में ये विचार धीरे धीरे विकसित हुआ जब जापान ने अपनी रणनीतिक सोच को पूर्वी एशिया से आगे बढ़ाकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक साझा रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखना शुरू किया। इसी दौरान भारत ने भी अपनी लुक ईस्ट नीति को आगे बढ़ाते हुए एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। समय के साथ साथ दोनों देशों की ये सोच एक दूसरे के करीब आई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित हुआ। आखिर ये क्षेत्र दोनों देशों की विदेश और सुरक्षा नीति में इतना अहम क्यों माना जाता है और भारत जापान की साझेदारी से इसका क्या संबंध है, आइए समझते हैं।
2: इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। भारत के लिए ये क्षेत्र आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक हितों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का अधिकांश समुद्री व्यापार और ऊर्जा आयात इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। वहीं जापान की अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार मार्गों पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी साझा सोच के आधार पर भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत किया है। दोनों देश फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, विशेषकर मलक्का जलडमरू मध्य जैसे मार्ग, भारत और जापान दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में समुद्री मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और कानून आधारित व्यवस्था बनाए रखना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। रक्षा और रणनीतिक सहयोग भी साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। भारत और जापान क्वाड के सदस्य हैं और दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत नियमित शिखर बैठकें, रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और नई प्रौद्योगिकियों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडो पैसिफिक की अवधारणा केवल किसी एक विशेष देश के उदय की प्रतिक्रिया नहीं है, ये भारत और जापान की उस साझा सोच का परिणाम है जिसमें दोनों देश इस पूरे क्षेत्र में खुले, समावेशी, संपर्क संपन्न और संतुलित समुद्री क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं। यही साझा दृष्टिकोण आज भारत जापान संबंधों को नई मजबूती देने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को भी नई दिशा दे रहा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: श्रोताओं, बदलते वैश्विक परिदृश्य में हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी भी नई दिशा ले रही है। इस पूरे परिदृश्य और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की भूमिका को लेकर आकाशवाणी समाचार ने भारत के पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: विश्व में जो भी सामरिक समीकरण थे वो बदल रहे हैं, देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है और इस सब बैकग्राउंड में भारत और जापान के जो संबंध हैं वो बहुत स्थिर हैं। भारत और जापान की जो सोच है, जो मित्रता है, वो प्रगाढ़ है और इस रीजन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विश्व में शांति और सद्भावना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र बिंदु है। इस समय जो विश्व में स्थिति है उससे विश्व की, खासतौर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है और एक आवश्यक है कि कोई भी देश जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की, पैसिफिक की बात करते हैं, उस पर कोई देश खलल न डाले, ये बहुत ही आवश्यक है।
1: भारत के महासागर विजन, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बीच बढ़ता तालमेल इस बात का संकेत है कि दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। यही साझा दृष्टिकोण न केवल भारत जापान संबंधों को

0: नई मजबूती दे रहा है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, स्थिरता तथा सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप सिंह।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु, अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां, ऊर्जायां, परिवहने, उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
2: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
1: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शतकस्य शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः, कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं 30,000 रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते 300 रूप्यकेषु एव सुरक्षितम्। अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघुनगराणां सुदूर क्षेत्राणां च कृते वैमानिक संपर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।

भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रांतानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूलं वर्तते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अंतरराष्ट्रीय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। भारतीय समयानुसारं क्रीडेयं अद्य सायं 7 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: Welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix the Delhi code 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phones. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर हम नजर डालेंगे. आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 2331-4444, दूसरा नंबर 2331-0481 और तीसरा नंबर 2371-7106. और दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. हम श्रोता आपको बता दें, किसी भी स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आज स्टूडियो हमारे साथ हैं विशेष हमारे मेहमान वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद. नमस्कार.
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले हेडलाइंस.
0: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the fourth straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%. And monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सांणंद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी केंद्र का उद्घाटन किया. घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए और संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा.

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम गुजरात के साणंद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत तैयार की गई यह फैसिलिटी देश की टेक मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक अहम पड़ाव है। साणंद पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने हाईटेक प्लांट का दौरा किया और प्रोडक्शन प्रोसेस का जायजा लिया। पूरी तरह से क्रियान्वित होने पर इस फैसिलिटी से सालाना प्रोडक्शन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की बढ़ती ग्लोबल मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
0: And Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for several development projects worth over 1 lakh crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotara district. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers and

0: virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. And in the meanwhile, we are joined in by our first caller, B.R. Nath from Delhi. Mr. Nath, welcome to the show.
1: Hello.
2: जी नमस्कार सवाल
1: नमस्कार साहब देखिए आज एक एक्सपर्ट से पूछना नमस्कार एक्सपर्ट और आपको भी ये जो क्या नाम TDS और AIS बने 30 जून तक अपडेट नहीं है इसमें कुछ रह जाता है दूसरा प्रॉब्लम ये है बायबैक जो किया था इंफोसिस का दिसंबर में उसको लोग डिविडेंड भी दिखाते हैं और बायबैक भी दिखाते हैं ये AIS में और TIS क्या नाम इसमें TIS में ये एनोमली क्यों है
2: देखिए ये आयकर विभाग ने अब जो आयकर रिटर्न की प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी है जितने भी फॉर्म हैं ITR 1 से 7 तक वो किए गए हैं और ITR 1 और 2 जो है वो 31 जुलाई तक और ITR 3 और 4 जो है वो 31 अगस्त तक भरे जा सकते हैं आपका जो दो मूल सवाल है कि ये अंतर क्यों है अगर अंतर आपको नजर आता है तो आप आयकर विभाग से तुरंत उसका प्रश्न पूछें उस पे आपकी दोनों की सहमति जैसे आपने कहा TIS है और AIS है तो AIS में आपने देखा होगा कि जब आपके पास वो आता है कंप्लीट डिटेल उसमें ये भी होता है कि एक असेसी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड क्या किया अगर असेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है उसको तो अगर कोई अंतर है तो कृपया करके आयकर विभाग से अविलंब संपर्क करें समय चूंकि कम है रिटर्न दाखिल करने में काफी कम समय तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ समय थोड़ा कम बचा हुआ है तो उस हिसाब से आप तुरंत उनसे करें जो कुछ भी विसंगतियां होंगी या जो कुछ भी अंतर होगा उसको दूर किया जा सकता है
3: और इस बीच दिल्ली से योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं योगेश जी कार्यक्रम में स्वागत है प्रश्न पूछिए
4: आप सभी को नमस्कार मेरा सवाल यह है कि गोल्ड बॉन्ड होते थे पहले लोग काफी निवेश करते थे गोल्ड में तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में निवेश अच्छा माना जाता था और अभी सडनली गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है और कोई ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि इसको क्यों बंद किया गया है फिर कब तक ये बंद किया गया है और कई बार सुनने में आया है कि गवर्नमेंट को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं तो आपका इस पर क्या व्यू है और क्या ऐसा सच में कुछ नुकसान होने के स्कोप था इसमें गवर्नमेंट को जो वो देख नहीं पाए उस टाइम पर
2: देखिए जो गोल्ड बॉन्ड लाया गया था उसके पीछे मकसद ये था कि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदें और उसकी वजह पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें एक तरीके से कागजी गोल्ड आप इसे कह सकते हैं और इसमें ये कहा गया था कि 8 साल के बाद जो कुछ भी बाजार की कीमत होगी उस कीमत पर आपको उसका भुगतान किया जाएगा तो इससे सरकार के लिए इसके लिए फायदे का सौदा यह था कि उनको आयात करने के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसके लिए जो डॉलर देना पड़ता है वो डॉलर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि सरकार सीधे सीधे आयात नहीं करती लेकिन जो भी एजेंसीज आयात करती हैं उनको डॉलर पे भुगतान करना पड़ता तो डॉलर के ऊपर दबाव कम करने और सोने के आयात को कम करने के लिए कदम उठाया गया लेकिन जब इसकी प्रकल्पना की गई थी तो उस समय किसी ने इस बात को सोचा नहीं था कि सोने के भाव इतने तेजी से ऊपर चले जाएंगे आज 1.61 का है और ये भी आप याद रखिए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मकसद जो था सरकार की उधारी का एक हिस्सा वो था तो अगर सरकार की उधारी बहुत महंगी हो जाती है तो इसका नुकसान सरकारी खजाने को ही होगा बजट के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि इसे क्यों जारी अभी नहीं रखा गया है और इसमें किस किस तरह के परेशानी हो सकती है सरकारी व्यवस्था को अगर आप देखें उनके ऊपर खर्च के बोझ को देखें तो इस वजह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है वो बंद किया गया है लेकिन जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए जो कुछ भी देनदारी है वो पूरी की जा रही है 8 साल का समय जब पूरा होगा उनको भुगतान होगा हर साल 2.5% की दर से ब्याज जो कि मूल जिस रकम पे आपने लिया था उस के हिसाब से 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद आप प्री मिच्योर रिडम्पशन भी कर सकते हैं और 8 साल के बाद जब आप पूरा रिडम्पशन करेंगे तो आपको एक भी पैसा कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा तो एक अच्छी स्कीम थी लेकिन इसकी लागत सरकार के लिए बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा है
0: एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर जितेंद्र
5: हेलो हेलो सर हाँ सर एक प्रश्न था मैंने एक महीना पहले पूछा था लेकिन शायद हम ठीक से पूछ नहीं पाए थे तो इसलिए ठीक से जवाब नहीं मिल पाया तो जैसे एक हम न्यूज पढ़े थे राजस्थान पत्रिका में कि कुछ कंपनियों का नाम था वो नाम तो ले नहीं सकते इंडियन कंपनी का कि इनका मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है मतलब मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है तो ये अच्छा बात है या कैसा हम इसको कैसे कैसे रूप में लें
2: देखिए जितेंद्र जी मार्केट कैप क्या है मार्केट कैप अगर बाजार पूंजीकरण को एक आम बिल्कुल आम व्यक्ति के नजरिए से सोचे तो जो शेयर की मौजूदा कीमत है और बाजार की जो में जितने

0: उपलब्ध है उनको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास एक बाजार पूंजीकरण आता है। बाजार पूंजीकरण में नियमित तौर पे बदलाव होता रहता है, बाजार ऊपर जाएगा तो बाजार पूंजीकरण ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो बाजार पूंजीकरण भी नीचे आ सकता है। अब आपका मूल प्रश्न है कि आपने कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ा कि उनका जो कुल निवेश है उनके बाजार पूंजीकरण से ज्यादा हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। उनके पास बस ये ध्यान में रखना है कि उनका इक्विटी डेट रेशियो क्या है, यानी कि कितना उन्होंने कर्ज ले रखा है। अगर बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है और उससे उनके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के वित्तीय स्थिति के लिए वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अगर संतुलित वे में है तो कोई गलत नहीं है, और ये दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है कि आपकी जो शेयरों की कीमत है उससे ज्यादा आप लेते हैं, वो एक लेवरेजिंग होता है एक तरीके से, इसको कहते हैं, जिसके आधार पे आप बाजार से पैसा उठाते हैं। तो कितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा है तो वो शायद थोड़ा सा उसके ऊपर एक नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन अगर समझ लीजिए कि 10% 15% ज्यादा है तो उसमें कोई हैरानी या कोई भी दिक्कत की बात हमें नजर नहीं आती।
1: राइट शिशिर जी, टॉकिंग ऑफ द ओसेट फैसिलिटी इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन गुजरात इन सानंद दिस इवनिंग, यू नो दिस इज रियली हार्टनिंग। ऑलमोस्ट 5 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स कैपेसिटी, एनुअल कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, दिस इज ह्यूमंगस given the importance of semiconductors across electronics industries and of course the new technology which is coming in, AI as well. So how do you see this kind of if we look at our dependence on the foreign countries, especially Taiwan and other countries, China of course.
0: When you are developing a mobile handset, when you are becoming a leader in mobile handset export, you need a complete value chain. You need a complete supply chain. So first you develop the product, then you develop the component, now you need the semiconductor. So many of the companies are coming into this field, many of the projects have been approved. So with this kind of infrastructure, we are going to have a complete supply chain for the electronic goods. What we can, you can also call it as the second phase of Make in India. We started with the assembling a mobile handset. Now we will have the entire components as well as the semiconductor, which is a key requirement for any electronic items. So this is going to help in that way. Second thing which you need to remember, that we have started with what we call as the chip designing, then we can go for the fabrication, and then we can go for the packaging. So on the one side, on the one hand, we are talking about the entire supply chain for electronic goods. On the other hand, we are talking about the entire ecosystem for the semiconductors. So combination of these two, after say 5 years or after say 4 years, we will be in a position to export large quantity of semiconductor chip from India, which is at this moment, you rightly mentioned that from where we are importing, whether we talk about Taiwan, whether we talk about China, or whether we talk about South Korea, because I mean recently these at least one of these country was in news because one of the key chip maker played a key role in the entire stock market thing. So we are not going to have that kind of situation, but the important thing for us that we will be becoming a good exporter, a big exporter of the semiconductor on the line of the electronic goods.
2: भारतीय घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे हफ्ते बढ़त देखी गई, इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के माहौल के और बेहतर होने की संभावनाएं थी। इस सप्ताह की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 664 अंक यानी 0.86% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 215 अंक यानी 0.89% बढ़कर 24,271 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार का प्रदर्शन भी घरेलू शेयर बाजार जैसा ही रहा। निफ्टी मिड कैप में 0.6% से ज्यादा की बढ़त देखी गई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में इस सप्ताह 2% का उछाल आया। सेक्टर के हिसाब से देखें तो रियल्टी, फार्मा और हेल्थ केयर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एनर्जी सेक्टर नुकसान में देखे गए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से जबरदस्त रिकवरी देखी गई। फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपया 82 पैसे कमजोर हुआ और अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.22 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में बेंचमार्क इंडेक्स ने नकारात्मक रुख दिखाया। सेंसेक्स में 10.2% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 8.7% नीचे आ गया, जबकि विस्तृत बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा। निफ्टी मिड कैप में लगभग 2.2% और निफ्टी स्मॉल कैप में 6.5% की बढ़त देखी गई।
1: शिशिर जी, the fourth consecutive

0: Negative week of gains. If we look at the backdrop of the last 4 or 5 months, ever since the Middle East or the West Asian crisis happened, are the bad days behind us, and can we look forward to greener pastures in the coming days?
1: Just last week, I was talking to one of the largest mutual fund of the country, and the first line he said that the worst is behind us, and we are on a better path. Now, the key concern at this moment is, one is, of course, the monsoon. Of course, we are coming out from the West Asia crisis.
0: El Niño has
1: El
0: to be factored in.
1: Niño.
0: Yes.
1: So, after West Asia, the
0: Yes.
1: biggest concern at this moment is El Niño. Because if we go by the number, I think 40% deficit was in the month of June. And when you are entering July, of course, we are seeing good spread of rain, but we do not know that what will happen. And if I go by the
0: Right.
1: IMD forecast, they are saying that it will be below normal. So that is a real concern. And why this is a concern? Because 65% of population is in the rural area. 50% of labor force is in the rural area. So when the rural economy will be in distress, then of course entire economy will be in a problem, because we will not be having what we call as the virtuous cycle, but we may have the vicious cycle. That is a concern. And market is also, at this moment, they are talking more about the West Asia crisis, but they are also concerned, little bit concerned about El Nino, and the real impact will be after the Q1 results, which we are going to have from 11th of this month, 10th and 11th of this month.
0: Right.
1: So that then Q1 results will decide that what kind of direction we are going to have in the market in the month of July as well as in the month of August.
0: Absolutely.
2: महाराष्ट्र से मंगेश फोन लाइन पर है. मंगेश जी, सवाल पूछिए.
3: हाँ, नमस्कार सर.
0: नमस्कार
3: सर. अब आईटी सेक्टर में निवेश करना अच्छा रहेगा कि आपके निवेश करना, इसके बारे में पूछना था. और युद्ध का प्रभाव कहाँ तक रहा कि खत्म हुआ, उसके बारे में पूछना था.
1: अच्छा मंगेश जी, देखिए पहला जो आपका प्रश्न है आईटी सेक्टर का, ये एक एक कह लीजिए कि एक अजीब सी विडंबना भी है कि बीच में हमने देखा कि आईटी सेक्टर में इसलिए गिरावट है क्योंकि एआई में जो है वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और फिर ये भी देखने को मिला कि आईटी सेक्टर में थोड़ी रिकवरी हुई क्योंकि एआई सेक्टर को लेकर के कंसर्न्स कुछ अलग तरीके के आ गए. फिर हमारे पास ये बयान भी आता है कि अभी के समय में भी पारंपरिक आईटी कंपनियों का भविष्य है. तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से साल भर के बीच में आईटी कंपनियों को लेकर के ये असमंजस की स्थिति और अनिश्चितता की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी. लेकिन अगर आप 3 साल या 5 साल के निवेश के नजरिए से सोचें, आप साल भर की बात मत करिए, 3 साल के निवेश के नजरिए से सोचिए, तो आईटी के वैल्यूएशंस अभी नीचे हैं और आपके लिए खरीदने का एक अच्छा मौका है. एक ही सुझाव है, किस्तों में खरीदें, एक साथ सारा पैसा ना लगा दें. दूसरा आपका प्रश्न था कि पश्चिम एशिया के संकट के बाद की स्थिति का क्या है. देखिए पश्चिम एशिया के संकट को लेकर के कह सकते हैं कि शांति समझौता हुआ है, उसके बाद तकनीकी दौर की बातचीत चल रही है. हम उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, सभी लोग उम्मीद करेंगे और खासतौर पे बाजार से जुड़े लोग तो खासतौर पे चाहेंगे. लेकिन बीच बीच में ऐसे से कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जिससे कि इस शांति समझौते पे कुछ समय के लिए प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है. तो अनिश्चितता थोड़ी है और उस अनिश्चितता को मॉनसून ने भी कुछ हद तक बढ़ाया है. तो मेरे ख्याल से अभी शेयर बाजार के लिए कहते हैं ना कि चैन से सांस लेने का समय नहीं है. वहां पर अभी भी घबराहट की थोड़ी स्थिति हमें देखने को मिलेगी. हाँ, आप रैली जो देख रहे हैं, ये 4 सप्ताह हमने लगातार 4th सप्ताह देखा कि शेयर बाजार में तेजी आई. उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह भी थोड़ी स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर बाजार में शायद थोड़ी हलचल अलग तरीके की देखने को मिलेगी.
0: राइट, और नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल. शंकर जी
4: नमस्ते, गुड आफ्टरनून.
0: नमस्कार
4: सर. माय क्वेश्चन इज अबाउट फॉरेन रुपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर. क्या अभी वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर स्लाइड डाउन इन नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू, और वी कैन नाउ एक्सपेक्ट इट टू स्टेबल एट अराउंड 95 फॉर सम मोर टाइम? व्हाट इज योर व्यू ऑन डॉलर?
0: ओके,
1: Shankar ji, if you see the numbers of the debt investment by foreign portfolio investment, after we have seen this tax benefit given by the government, we have seen good inflow in terms of that, and that is giving some support to rupee, which was below 95. So at this moment, I think for the next 2 months or 3 months, we will have some more stability. But at the same time, if there is

0: any kind of disruptions in the West Asia crisis, West Asia situation, there may be more demand from the oil marketing companies for crude purchase, then it can have some problem. But at this moment, I don't think, at least for the next 2 to 3 months, more a sliding of the rupee, and it will be below 95 or between 94 and 95.
1: Right, and moving on to the U.S. markets, the United States stock markets remained closed yesterday in observance of Independence Day. Meanwhile, major U.S. indices finished the holiday-shortened week with solid gains. The Nasdaq Composite Index surged 2.1%. The Dow Jones Industrial Average rose by 2% during the week to close at a record high of 52,900. The S&P 500 gained 1.75% during the week. Investors cheer the weaker than expected U.S. jobs data and are now looking for a softer inflation numbers, reinforcing expectations that the Federal Reserve will keep interest rates unchanged at its policy meeting scheduled for the end of this month. Shishirji, softer inflation number expectations from the U.S., the public over there, and of course the hawkish Fed. Your views on that?
0: I think that's something, expectation is there, but going by the current price movement, and especially after this entire West Asia thing, I don't think that the inflation will be much softer there, and that is why Federal Reserve is very much cautious. And the commentary which we have seen, which we have heard from the Federal Reserve, is something which we have to keep in mind, and the month and meeting of Federal Reserve will also determine. But softer inflation, not much fall in inflation one can expect in the U.S.
1: Right. And in some other news, the monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that President Draupadi Murmu has approved the government's proposal to convene the session from the 20th of July. In a social media post, Mr. Rijiju said that the session will focus on meaningful debates, discussions and decisions on issue of national importance. You are tuned in to the Market Mantra program on Akashwani. Listeners, you can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106, and do not forget to prefix 011 before these numbers. The Delhi STD code if you're calling from out of Delhi or from your mobile phones. Meanwhile, we are joined in by our next caller, Tapash from Kolkata. Tapash.
2: CTG, Tapash Chakravarti. Actually, last week that Kolkata zone now started. Actually, last 1 year we are unable to contract actually. पता नहीं मैंने क्यों इधर टेलीकास्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आपने भी कैलकाटा से कोई कॉलर आपको मिला क्या, नहीं मिला आपको, ये नहीं है. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरा डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है. तो सर आप सुन रहे हैं ना?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए.
2: हाँ, तो उसमें मैं अभी क्या किया, बॉन्ड खरीद रहा हूँ. बॉन्ड में 10-11% मेरे को इंटरेस्ट देता है और मैं वो इंटरेस्ट में चल रहा हूँ. तो आप मेरे को बताइए, ये ठीक है क्या? ये बेसिकली ए प्लस और ए कैटेगरी बी प्लस ऐसा आता है. तो मैं उसमें इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है महीना में
0: जी जी,
2: और मेरे को इसमें चल रहा है. तो सर ये ठीक ठाक है क्या, ये जरा सा आप बोलेंगे तो अच्छा है.
0: नहीं देखिए, आपका फैसला अच्छा है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपने कहा कि आप ट्रिपल ए और ट्रिपल बी की बात करें, तो ट्रिपल ए के नीचे तो बिल्कुल मत जाइएगा. अगर बॉन्ड लेना भी हो तो आप कोशिश करिए कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनके बॉन्ड्स को अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है. म्यूचुअल फंड में भी कुछ जो खास तौर पर डेट फंड हैं उसमें आप लगा सकते हैं, ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो. और कुछ पैसा, मेरी सलाह होगी कि डाकघर में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है उसमें ज़रूर रखिए. वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक हेजिंग है आपके लिए, जिसको कहते हैं ना, सुरक्षा आपको देगा. वैसे बॉन्ड में कहते हैं कि काफ़ी हद तक सुरक्षा तो रहता है, रिस्क तो है, जोखिम है वहाँ भी, लेकिन और भी बेहतर करना हो तो थोड़ा पैसा 15-20% आपकी जितनी भी कमाई है वो आप डाकघर के सीनियर सिटीजन में ज़रूर रखें.
1: And moving on to oil now, the global crude oil prices are hovering near the levels last seen before the

0: West Asia conflict erupted in late February as traffic through the Strait of Hormuz has improved amid progress in the US-Iran talks. A spokesperson for Qatar's foreign minister said in a social media post that the talks made positive progress on the matters related to the memorandum that halted the war in June. During the week at the Intercontinental Exchange, that is ICE, Brent crude September futures dropped nearly 0.7% to settle at $72.12 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI August futures declined 0.6% to end at $68.82 per barrel. Shishirji, of course, you know, the decline from almost near about $120 to $72 with the crude is on expected lines, but we are talking here of the energy sector stocks. What do you think of that when we look at this crude sector?
1: There are two parts. One, you rightly mentioned about the slide in the crude oil prices. Mm. And at this moment, we are seeing some good performance by the oil marketing companies in terms of what we call as the under recovery. Their under recovery has come down. Mm-hmm. So that is one positive for them. And we should also remember that during this period, they bought large quantity of crude at a very high price. So until unless that supply is exhausted,
0: yes,
1: they will not be in a very comfortable position. So their under recovery has come down, but that has not come down much below than what we are saying about the pre-war release. So at this moment, I believe that the OMC companies, there should be some kind of caution, at least for the next 1 month. Mm. And after this supply exhausted, and if the prices of Indian basket of crude is hovering around say 70-75, then they will be in a better position in second quarter. So somebody, if somebody is planning to make put money in the oil marketing company stock, they should wait at least for one month or 2 months, then they can plan for making fresh investment into that.
0: Right.
2: गुजरात में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया है कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुजरात खंड का 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। सूरत से बिलिमोरा को जोड़ने वाला पहला परिचालन खंड अगले साल खुलने वाला है। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। शिशिर जी, एक प्रश्न आपसे पूछना मैं चाहूंगा कि आने वाला जो सप्ताह है उसमें बाजार को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब आपने Q1 रिजल्ट की बात की है, पहली छमाही भी गुजर चुकी है।
1: देखिए, अगले सप्ताह जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो क्यू होगा वो हमारे लिए रिजल्ट्स ही हैं, जो कि 10 तारीख से शुरू होता है। तो उसके अनुमान में कुछ नए गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है, तो बाजार थोड़ा सबड्यूड रहेगा। जो हमने 4 सप्ताह से तेजी देखी है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हम देखेंगे, एक सबड्यूड माहौल रहेगा। नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे अगले 20-25 दिनों के भीतर, उसके बाद बाजार में गतिविधियां और तेज होगी। लेकिन अगले सप्ताह मुझे लगता है कि थोड़ी सी हलचल उस तरीके की देखने को नहीं मिलेगी जो हमने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देखी।
2: तो छोटे निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल? अभी
1: किस्तों में शेयर खरीदिए, जहां कहीं भी आपको गिरावट अच्छी दिख रही है वहां पर आप किस्तों में खरीदिए, लेकिन बहुत ज्यादा गिर गया उसको मत खरीदिए। जो गिरे हैं, थोड़े गिरे हैं, उनमें आप किस्तों में खरीदिए और किस्तों में मुनाफा कमाना भी मत भूलिए।
0: वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम शशि जी, फ्रॉम यू, हाउ डू यू सी द स्मॉल कैप्स फेयरिंग?
1: स्मॉल कैप आई थिंक have always been either going on a very high or going on a very low. So personally, I am not very small cap is not very favorite for me. I would rather go for the mid cap where some of the companies are very good.
2: Right. शिशिर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
0: थैंक यू सो वेरी मच शिशिर जी। एंड बिफोर वी क्लोज, रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the fourth straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%, and the monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Nikhil.

0: कुमार saying goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह की औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैसे मोहम्मद, लश्करे तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: सबसे पहले तो बात इस पर कि राजस्थान के इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए उनका शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए एक नई व्यवस्था की एक नई आधारशिला रखी। आइए सुनते हैं कि भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करने और विभिन्न मेगा परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है।
1: अशोक टंडन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
1: पूरे कार्यक्रम को देखें तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम है या फिर एक विकसित भारत 2047 की जो रूपरेखा लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं उस दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
3: बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जो कोई भी योजना हाथ में लेते हैं और उनका वो वहां पर केवल नींव पत्थर नहीं लगाते बल्कि उनको पूरा होने पर उनका उद्घाटन भी करते हैं। और उसी कड़ी में हम जब देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर गए तो उन्होंने जो है सबसे पहले तो जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किया
1: जी,
3: और जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया, और उसके बाद बालोतरा में गए जहां उन्होंने 1,00,000 करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया और कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया। तो ये जो एक हम बात कर रहे थे कि इसमें जो आज जो भी कार्यक्रम हुए उनमें शहरी विकास, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों और ये ऊर्जा के नए स्रोत, पावर ट्रांसमिशन, ये सारे प्रोजेक्ट जो थे आज विकसित भारत की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जा रहा है उसी कड़ी में ये अलग अलग योजनाओं का जो आज हमने देखा कार्यक्रम हुआ, और उसमें से मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण था कि राजस्थान के बालोतरा जिले में देश के पहले ग्रीन फील्ड इंटेग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र के नाम समर्पित किया उन्होंने, और उन्होंने इससे भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भी बताया। तो इस तरह से आज राजस्थान का जो दौरा हुआ उसमें अगर हम बात करें तो एक एक कार्यक्रम को हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ने जो अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहली बात भी यही कही कि जो राजस्थान में जो आज मैं ये कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहा हूँ मैं पेट्रोकेमिकल का, क्योंकि आज के संदर्भ में हमारी जो डिप्लोमेसी है उसने जंग में भी ये बात दिखा दी कि पहले हम जो तेल था कम देशों से लेते थे
1: जी।
3: अब हमने अपनी डिप्लोमेसी को देखते हुए उसका दायरा बढ़ाते हुए अब हम 40 देशों से कच्चा तेल मंगवा रहे हैं। तो ये हमारे जो मित्र देशों के साथ संबंध हैं उसको उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि जब पश्चिमी एशिया में युद्ध के दौरान हरमुज बंद हो गया था और दुनिया भर में बड़े संकट आ रहे थे, और लेकिन हमारे प्रयासों ने हमें संकट से उबरने के लिए भी मदद की, और इसीलिए पूरी दुनिया में इस लड़ाई के चलते हमारे पर जो असर हुआ भारत ने सही फैसले लिए और सही रणनीति बनाई और अपनी कूटनीतिक ताकत का सकारात्मक इस्तेमाल किया, और इसी वजह से भारत इस संकट से उभरने में सफल रहा। भारत ने संकट का समय रहते आकलन किया था और इसीलिए हम उसमें से उभर कर आए
1: जी। टंडन जी, एक तरफ भारत पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का विस्तार कर रहा है तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा जैसी हरित परियोजनाओं में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, तो ये जो संतुलित ऊर्जा नीति सरकार अपना रही है तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक बड़ी सामर्थ्य के रूप में उभर कर सामने आएगी?
3: बिल्कुल, जितनी भी योजनाओं की बात हमने की है उसमें जैसे आपने बात की अभी उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो था ही रिफाइनरी वाला और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम से ये जिस रूप में विकसित हुआ है इसमें 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स

0: कंपनियां, इसमें लगभग 80,000 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है।
1: जी जी
0: और तो उत्पादन की क्षमता की हम अगर बात करें तो पेट्रोकेमिकल क्षमता जो है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, और इस रिफाइनरी का जो कुल मिलाकर उत्पादन है वो 26% जो है वो बड़ा है, और ये जो दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। तो इसी ऊर्जा के संबंध में पेट्रोकेमिकल की तो हमने बात की, आपने जैसे कहा कि सौर ऊर्जा की भी बात की है प्रधानमंत्री ने, और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि राजस्थान में तो सूर्य देवता की बहुत कृपा रहती है, और इसीलिए यहाँ पर जो सौर ऊर्जा का है 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया।
1: बिल्कुल,
0: और इसे लगभग 5,500 करोड़ के निवेश से विकसित किया गया है, और इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित 24.22 लाख सौर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। यानी प्रधानमंत्री ने ये जो 300 मेगावाट के बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र के साथ समर्पित किया, तो इससे स्वदेशी रूप से निर्मित 7.75 लाख सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया गया है।
1: जी टंडन जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस उनकी कही गई इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि उर्वरक संकट भी देखा गया है बीते दिनों में वैश्विक स्तर पर, और दुनिया भर में यूरिया महंगा हुआ, लेकिन भारत में किसानों को सब्सिडी के साथ सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह के जो फैसले सरकार लेती है, क्या लगता है कि इनका किसानों और कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक सकारात्मक असर पड़ता होगा?
0: मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कुल मिलाकर पेट्रोकेमिकल उत्पादन की बात है, इसमें पेट्रोकेमिकल जो इसमें जो कुल मिलाकर सारा इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की जो बात की गई है, उसी में देखने को ये मिलता है कि पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेंगे। तो इससे उद्योगों में, और जैसे आपने कहा कि उर्वरक इत्यादि में भी उनके उत्पादन और हम जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो बनेगी। तो कुल मिलाकर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार इस पर बहुत ही महत्व देते आ रहे हैं और अलग अलग समय पर योजनाओं को लागू करते हैं, तो देश में ऊर्जा संकट जो है, और जैसा कृषि में भी हम देखते हैं कि उसमें भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमें ये सब देखने को मिला।
1: राजस्थान में 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। कहा जा सकता है कि सिर्फ युवाओं के विश्वास को बढ़ाने का एक अवसर नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमताओं को भी मजबूती प्रदान करना, आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, इस पर भी प्रधानमंत्री का काफी फोकस रहता है, तो आप किस पर क्या विचार होंगे?
0: देखिए, आज जो 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए वो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वो चुनकर आए, यानी उनकी नियुक्ति जो हुई इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी क्षमता से उसके टेस्ट पास किए, और ये राजस्थान के लगभग सरकार के लगभग सभी विभागों से जुड़े हुए, और हम देख रहे थे टेलीविजन पर कि सब नौजवान जो है वो 20 से 25 साल की उम्र के थे, और उनको नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री से जब मिले तो वो गदगद हो रहे थे, और प्रधानमंत्री ने उनमें से कुछ लोगों से बात भी की। तो ये जो समस्या रहती है कि भारत में जो है हम लोग रोजगार सृजन करने के बारे में बात करते हैं नौकरियों की, तो प्रधानमंत्री का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम नौकरी पाने की बजाय नौकरी देने वाली बात करें, जो स्टार्टअप के जरिए। लेकिन सरकार के पदों पर भी जो नियुक्तियां होती हैं, तो राजस्थान सरकार के पदों पर जो नियुक्तियों के आज 54,000 दिए गए नौजवानों को नियुक्ति पत्र, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था।
1: टंडन जी, अब गुजरात की हम बात करते हैं, तो गुजरात में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो रही है, OSAT सेमीकंडक्टर संयंत्र का शुभारंभ होना एक बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ, और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
1: भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे समय में जब भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद भागीदार बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, तो इस संयंत्र का शुभारंभ होना हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता होगी?
0: भारत के सेमीकंडक्टर

0: क्षेत्र में ये सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में जो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है, ये वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है। क्योंकि ये जो परियोजना है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, उस मिशन के तहत स्वीकृति पहली 4 परियोजनाओं में से एक है, और इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है।
1: जी
0: और अगर ये पूर्ण क्षमता के साथ जब संचालन में आ जाएगा, तो इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप की होगी, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रहे विकास के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में सहयोग करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ऐसा संयंत्र है, ये ऑटोमेटिव, औद्योगिक, दूर संचार, 5G, इंटरनेट और इन सब क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और उस क्षेत्रों के जो ग्राहकों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा। क्योंकि चिप की कमी के बिना, चिप की कमी होने से इन सब क्षेत्रों पर असर पड़ रहा था, और अब ये जो संयंत्र, ये वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेज डिजाइनिंग और विश्लेषण, टेस्ट प्रोग्राम, ये सब निर्धारित, और इन सब को ये सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेवाएं जो है, ये जो आज संयंत्र प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, उनकी सेवाओं को ये प्रदान करेगा। तो ये एक शुरुआत है, और इसमें भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनियम
1: जी
0: केंद्र के रूप में जो इसका हुआ है, ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने में भी प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है, ये उसके अनुरूप भी हुआ।
1: जी टंडन जी, गुजरात को वैसे भी व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, कई सारी परियोजनाएं लगातार वहां पर काम कर रही हैं। बुलेट ट्रेन की भी हम बात करते हैं, वहां उसकी शुरुआत भी गुजरात से ही हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा जो हर बार नई योजनाएं शुरू की जाती, नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाता, उद्घाटन किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, गुजरात की बात तो है ही है, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री का अपना राज्य है, लेकिन जितनी भी परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने लागू की हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी,
1: जी
0: सभी का, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो जो परियोजनाएं देश की भागों में की गई है, चाहे वो पूर्वोत्तर का भाग हो, चाहे दक्षिण भारत हो, उन सब में जो परियोजनाएं लागू की जाती हैं, वो पूरे समय पर ही हुई हैं। तो गुजरात थोड़ा, जैसे प्रधानमंत्री पहले भी कहते थे कि
1: जी
0: हमारा जो पश्चिम क्षेत्र है भारत का, वो तो विकास की दर से बहुत आगे है, लेकिन हमारा जो पूर्वोत्तर या पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें हम देखते थे कि पूर्वोत्तर के राज्य तो से ही, लेकिन बंगाल, उड़ीसा, ये राज्य पिछड़े थे, बिहार था, झारखंड था, उनके भी विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, तो उन पूर्वी राज्यों को भी अब पश्चिमी राज्यों के मुकाबले में लाकर खड़ा किया गया है। और ये सारी योजनाएं जो है, हर देश के हर प्रांत में लागू की गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई भी राज्य हो, उसमें कहीं भेदभाव नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजनाएं जब इनका शिलान्यास होता है, तो इनको पूर्ण भी, इनको इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री उसी समय सीमा के अंदर करते हैं। यही उनका निर्देश भी है कि जो भी मुझसे लोकार्पण करवाना है या जिसका मुझसे आपने नींव पत्थर लगवाया है, उसकी योजना को पूरा भी मेरे से ही करवाएंगे, तभी मैं उसके लिए आगे आऊंगा। तो ये कुल मिलाकर जो अप्रोच है विकसित भारत की ओर बढ़ने की, उसमें सभी प्रदेशों के साथ न्याय हो रहा है, और देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसको ये शिकायत हो कि प्रधानमंत्री जो है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
1: जी टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव अग्निहोत्री लेकर के हाजिर हूं महफिल सांझ ढले आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1। ये वही फ्रिक्वेंसी है जिस पर आप हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। वक्त हुआ है 7:25:59।

जी हाँ दोस्तों, रिमझिम फुहारों का मौसम शुरू हो गया है और मानसून भी समझिए आ ही गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी थोड़ी थोड़ी रुक रुक के बारिश हो रही है। हम सब कितने तैयार हैं इस बरसात के मौसम के लिए, ज़रा सोचिए, रिव्यू कीजिए अपने आप को और अपनी तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दीजिए, क्योंकि अब बारिशें अगर बढ़ेंगी तो उसमें हम सबको सावधानी रखनी होगी। हम घर से बाहर निकलें तो अपने साथ एक छाता लेकर चलें, पीने का पानी लेकर के चलें, बाइक पे चल रहे हैं तो रेनकोट लेकर के चलें, और गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी दुरुस्त रखें, क्योंकि अगर वाइपर आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं विंडस्क्रीन पर तो फिर आपको गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गाड़ी को दुरुस्त रखिए। मौसम के हिसाब से हमको बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं और मौसम से संबंधित बीमारियां भी जो हम लोगों के आसपास हो जाती हैं वातावरण में, पानी से उपजी हुई बीमारियां, इनका भी ध्यान रखिए कि साफ़ सुथरा पानी पिएं और बेहतर है कि पानी को उबाल कर पिएं। छोटे बच्चों का ध्यान रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और तभी आप इस मौसम का पूरा पूरा आनंद ले पाएंगे और इंजॉय कर पाएंगे बरसात के मौसम का।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
2: आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर आप सुन रहे हैं सांझ ढले की महफिल, संजीव अग्निहोत्री के साथ।

ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म अपनापन से किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। और इस गीत के साथ ही सांझ झल की महफिल हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि जुड़े रहिए एफएम गोल्ड 100.1 के साथ। संजीव को दीजिए इजाजत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की और सोनिया विहार जल संयंत्र तथा तैमूर नगर ड्रेन के पास नई पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्कों के सौंदर्यीकरण, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, मुनक नहर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। साथ ही अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए।
3: श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा के BDFD पार्क में सौंदर्यीकरण कार्यों और इसमें नई प्रकाश व्यवस्था के लिए 93 नए इलेक्ट्रिक पोल का उद्घाटन किया। इसके अलावा शालीमार बाग में जल भराव और सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए आधुनिक जल निकास प्रणाली और अतिरिक्त सीवेज पंपिंग स्टेशन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों को जल भराव और सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए आधुनिक तथा दीर्घकालिक संरचना विकसित कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा परिसर स्थित दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक तथा तकनीकी सुविधाओं, प्रशिक्षण अवसंरचना और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुख और आधुनिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश कर रही है, जिससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया है। स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के अंतर्गत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: तबादला किए गए अधिकारियों में 23 उप लेखा नियंत्रक और 29 वरिष्ठ लेखा अधिकारी शामिल हैं। साथ ही 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को पदोन्नत कर उप लेखा नियंत्रक बनाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
2: पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के अनुसार अब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अलग अलग समय को बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर दिया गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम के लिए समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग $120 अरब है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
5: मैं मानता हूं कि यहां जो सभी भारतीय स्वदेशी खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं, ये एक प्रकार से भारत के भविष्य को तैयार कर रही हैं और ये विदेश से आने

0: वाले सब खिलौने बच्चों के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं, ये इनोसेंट पेरेंट्स को कभी ध्यान ही नहीं आता। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में इस बात का उजागर किया था कि भारत के पास इतना टैलेंट है कि हमें ग्लोबल टॉय हब बन सके, पूरी दुनिया में भारत के खिलौने जाने चाहिए।
1: आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय एक्सपो इस महीने की 7 तारीख तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कड़कड़डूमा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की। आरोपियों ने ट्रायल शुरू किए बिना लगातार जेल में रखने पर व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर जमानत मांगी थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक स्थानीय और 2 अफ्रीकी निवासी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल होने वाले 3 दोपहिया वाहन और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों अफ्रीकी नागरिक वैध पासपोर्ट और वीजा प्रस्तुत करने में असफल रहे। वहीं एक अन्य मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को सीलमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 350 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज जय सिंह रोड स्थित NDCC कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन किया। शिविर में नागरिकों से सीधे संवाद के माध्यम से 60 जन शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर संबंधित विभागों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान परिषद के 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर एक ही स्थान पर शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की। दक्षिण दिल्ली में प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत लोगों को उनके घरों के पास ही मालिकाना अधिकार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविरों की शुरुआत की गई है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज तेखंड गांव स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA बारात घर में पहले शिविर का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय शिविर तेखंड एक्सटेंशन और तेखंड गांव के निवासियों के लिए आयोजित किया गया है। श्री बिधोड़ी ने बताया कि ऐसे शिविर दक्षिण दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम के जन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जन स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निगम के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्पा सेंटरों, होटलों और मोटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही श्री वाही ने भारी मात्रा में कचरा उत्पादकों जैसे रेस्तरां, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि को अपने परिसरों तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता निरीक्षकों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जहां देश के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, वहीं आज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से जुड़े दक्षिणी दिल्ली के मुख्य पाइपलाइन पर काम के कारण कल दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।
2: जलापूर्ति प्रभावित होने के कारण कल सवेरे 10 बजे से करीब 8 घंटे तक इन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जल बोर्ड के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में कैलाशनगर, गांधीनगर, पटपड़गंज, ओखला, जाकिरनगर, बटला हाउस, खान मार्केट, निजामुद्दीन, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, सराय काले खां, बदरपुर, सरिता विहार, श्रीनिवासपुरी, छतरपुर और इसके आसपास के इलाके शामिल हैं। वहीं तैमूर नगर ड्रेन के पास नई जल पाइपलाइन को मौजूदा पाइपलाइन से जोड़ने के कार्य के कारण कल सवेरे 10 बजे से सोमवार शाम 4 बजे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पहले से पर्याप्त

0: पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्रनाथ सिंह ने द्वारका में सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के अंतर्गत आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। एक रिपोर्ट।
2: श्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने बताया कि सहकारिता सप्ताह के दौरान द्वारका, नरेला, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे पौधों का रोपण किया जा रहा है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पक्षियों और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही श्री सिंह ने विशेष रूप से अधिक फलदार पौधे लगाने पर बल देते हुए कहा कि फलदार वृक्ष न केवल हरित आवरण बढ़ाने में सहायक होते हैं बल्कि पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आज सभी सहकारी संस्थाओं और उनके सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ सहकारिता जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त आधार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के संकल्प पर बल देते हुए कहा है कि इसे अब जन भागीदारी से पूरा करने का समय आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है जहां नागरिक पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामुदायिक पौधारोपण अभियान के लिए वृक्ष रथ बुला सकते हैं तथा दिल्ली ग्रीन वॉरियर के रूप में पंजीकरण भी करा सकते हैं।
3: दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे, साथ मिलके लगाएंगे। 7 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इनॉग्रेशन करेंगे इस पूरी मेगा प्लांटेशन ड्राइव का। मिलकर के पेड़ लगाएंगे और आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दिल्ली ग्रीन वॉरियर के नाते भी, कि सरकार जब भी प्लांटेशन करेगी आपको इनवाइट कर सकती है। ईवी पॉलिसी आ चुकी है, कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आइए मिलकर के दिल्ली को हरा भरा करें।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप के निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महान आध्यात्मिक चिंतक और भारतीय संस्कृति के वैश्विक संवाहक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में आयोजित 35वें आम महोत्सव 2026 का आज दूसरा दिन है। दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय उत्सव दिल्ली हाट और जनकपुरी में कल तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
4: महोत्सव में आम की 400 से अधिक किस्में प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें हुसनारा, केसर, मल्लिका, आम्रपाली, फजली सहित अनेक प्रसिद्ध किस्में शामिल हैं। महोत्सव में आम उत्पादकों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और किसान संगठनों ने भी भाग लिया। साथ ही आगंतुकों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। वहीं इस महोत्सव में आम और आम से बने उत्पाद तथा पौधों की खरीदारी की सुविधा भी उपलब्ध है। ये उत्सव कल भी दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की। और सोनिया विहार जल संयंत्र और तैमूर नगर ड्रेन के पास नई पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ चिप का उत्पादन का लक्ष्य रखने के लिए बधाई दी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विकास को रेखांकित करती है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मैनचेस्टर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालीन योगदान को महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सैन्यकर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका।

वक्त हुआ है 8:56, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर आप सभी का फिर से स्वागत। महफिल है मधुरिमा की। इस महफिल में हम बात करते हैं शास्त्रीय राग और उन पर आधारित गीतों की। तो आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, ये फिल्म जो आपने गीत सुना है, इसका नाम है प्यासा सावन, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। और आज हम जिस राग की बात कर रहे हैं वो राग है राग चारुकेशी। भारतीय संगीत का एक बहुत ही मधुर और लोकप्रिय राग है जो मूल रूप से कर्नाटक संगीत से हिंदुस्तानी संगीत में आया। इसमें कोमल धैवधा और कोमल निषाद नी का प्रयोग होता है, जबकि अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी प्रकृति अत्यंत भावपूर्ण, रोमांटिक और भक्तिमय मानी जाती है।

0: जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
2: मधुरिमा की महफिल में आज हम बात कर रहे हैं राग चारुकेशी की, और इस महफिल में आपके साथ हूं मैं संजीव अग्निहोत्री।

राग चारुकेशी के थाट की बात अगर करिए तो हालांकि ये दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का 26वां मेल करता राग है, हिंदुस्तानी संगीत में इसका कोई निश्चित थाट नहीं माना गया और इसमें रे गा मा पा शुद्ध लगते हैं, धा और नी कोमल फ्लैट होते हैं। जाति इसकी संपूर्ण आरोह और अवरोह दोनों में सात सात स्वर होते हैं। वादी स्वर षडज सा और संवादी स्वर मध्यम मा है। कुछ संगीतज्ञ वादी को पंचम पा भी मानते हैं और गाने बजाने के समय इसका दिन का दूसरा प्रहर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक माना जाता है।

फिल्म हसीना मान जाएगी का एक गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही मधुमा की महफिल यहीं समाप्त करेंगे। संजीव अग्निहोत्री को दीजिएगा इजाज़त, लेकिन आप सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर अपने को होस्ट शक्ति सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। नमस्कार शक्ति।
1: नमस्कार नवीन।
0: शक्ति, खेल प्रेमियों और विशेषकर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें आज उस शख्स पर थी जो इतिहास रचने जा रहा था, और उसने आज कर भी दिखाया जब 145-46 की स्पीड से आ रही उस तेज तर्रार गेंद को उसने बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इंग्लैंड के जॉफ्री आर्चर को बता

0: दिया कि ये बल्ला रुकने वाला नहीं है। वैभव सूर्यवंशी।
1: बिल्कुल नवीन, आज की पहली खबर है वैभव सूर्यवंशी। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं। आज उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया दूसरे T20 मुकाबले में।
0: और वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगी। और शक्ति, क्रिकेट में ही अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर महिला क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में श्रीलंका का दौरा करेगी।
1: बिल्कुल, क्रिकेट के बाद नवीन बात करते हैं फुटबॉल की, जहां फीफा फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले अब प्री क्वार्टर फाइनल की स्टेज में पहुंच गए हैं। और आज कनाडा का सामना मोराको से और पराग्वे का सामना फ्रांस से होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।
0: शक्ति, फुटबॉल के बाद बात स्क्वैश की करेंगे, जहां बहुत अच्छी खबर हमारे पास आ रही है। भारत की तन्वी खन्ना ने PSA चैलेंजर्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है।
1: जी नवीन, आपने कोर्ट की बात की तो बात होगी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के कोर्ट की भी, जहां आज कई मुकाबले खेले जा रहे हैं जिसपे हमारी नजर रहेगी।
0: स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत क्रिकेट से। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मैनचेस्टर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
1: जी नवीन, और भारत ने इस समय ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट खोकर 160 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में आज कुछ बदलाव किए गए और संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।
0: सुनते हैं मुकेश की ये खास रिपोर्ट।
2: लगातार अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर उतरते ही 15 वर्षीय वंडर बॉय ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसमें सबसे खास है महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 वर्ष पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड का टूटना। सचिन ने नवम्बर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में जब अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, तब उनकी उम्र केवल 16 वर्ष 205 दिन थी। वे तब से भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने रहे हैं। लेकिन वैभव ने आज केवल 15 वर्ष और 99 दिन की आयु में ये कीर्तिमान स्थापित कर लिया। वैभव IPL और घरेलू क्रिकेट में पहले ही सबसे कम उम्र में खेलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। IPL के हालिया सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए वैभव ने 237 के स्ट्राइक रेट के साथ 776 रन बनाए हैं। इसके साथ ही वैभव IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने केवल 35 गेंद में शतक जड़ा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति, आज क्रिकेट प्रेमियों का वो इंतजार खत्म हो गया जो हमें आयरलैंड से लगातार क्रिकेट प्रेमियों की एक जिज्ञासा थी कि कब सूर्यवंशी मैदान में उतरेंगे, कब कोर्ट में उतरेंगे और कब पहला छक्का उनके बल्ले से हमें दिखाई देगा, और ऐसा उन्होंने कर भी दिखाया।
1: जी बिल्कुल, आज जब तिलक वर्मा ने उनको अपनी डेब्यू कैप सौंपी तो वो जो उनके चेहरे पे इमोशंस थे वो साफ बता रहे थे कि ये इंतजार सिर्फ हमारे जहन में नहीं था, हमारे मन में नहीं था, इंतजार शायद वैभव को था, उनके बल्ले को था। और गेंद जब जोफ्रा आर्चर की बाउंड्री पार गई है तो शायद सारे जवाब मिल गए।
0: 140 की स्ट्राइक रेट से वो खेले, हालांकि केवल 10 बॉल ही खेल पाए हैं, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी उसमें एक 15 साल का लड़का 146 की स्पीड से खेलता है, 10 बॉले खेलता है, 14 रन बनाता है और छक्के से शुरुआत करता है।
1: जी बिल्कुल, और शायद दर्शक यही देखने आए थे, 2 छक्के लगे, लेकिन कह सकते हैं नवीन ये अभी ट्रेलर है और एक बहुत बड़ी फिल्म बाकी है।
0: 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हुए थे वैभव सूर्यवंशी।
1: और बिल्कुल, और इसके एक साल बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू किया था मात्र 13 साल की उम्र में नवीन।
0: और अगर IPL की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर IPL का इतिहास भी रचा था और सबसे तेज भारतीय शतक भी उन्होंने बनाया था।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि देखने में छोटन लगे और घाव करे गंभीर।
0: बिल्कुल, और ऐसे ही घाव करने के लिए उन्हें भारतीय टीम में शामिल भी किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं, और तमाम खेल प्रेमियों की तरफ से उम्मीद करते हैं कि भारत आज का मैच शायद जीतेगा और अगले मैच में वैभव और तेज तर्रार खिलाड़ी की तरह सामने आएंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: बात महिला क्रिकेट की करते हैं। शक्ति, क्रिकेट की दुनिया में अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर यानी डेफ महिला क्रिकेट टीम इस सप्ताह श्रीलंका का दौरा करेगी और अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलेगी। यह दौरा बधिर महिला टीम का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में पदार्पण होगा।
1: जी नवीन, पांच मैचों की इस ऐतिहासिक टी20 अंतर्राष्ट्रीय बधिर टीम की कप्तानी काजल धवन करेंगी, जबकि निदा जबी शेख उपकप्तान होंगी और भारतीय महिला डेफ

0: क्रिकेट टीम 7 जुलाई से 13 जुलाई तक श्रीलंका के मोरातुवा में डी सेसवा पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेलेगी।
1: अब आपको सीधा लिए चलते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की ओर। इस विश्व कप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स में होगा, जहां ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन है और इंग्लैंड अपनी धरती पर कभी नहीं आ रही। और शक्ति, ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7वीं बार चैंपियन बनने का इतिहास रचने की कोशिश करेगा और इंग्लैंड अपनी जमीन पर अजेय रहने की भी कोशिश करेगा।
0: बिल्कुल, 2009 से लेकर 2026 T20 विश्व कप फाइनल इंग्लैंड आज तक अपनी जमीन पर कोई मुकाबला नहीं हारा है और ऐसा ही रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहेगा। मेजबान इंग्लैंड ने अपनी घरेलू सरजमी पर 11 मुकाबले खेले हैं और सभी 11 के 11 में उसको जीत मिली है। तो यानी एक तरफ फाइनल में 8 बार अपना फाइनल खेलने उतरेगी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ होगी 5वां फाइनल खेलने वाली ये इंग्लिश टीम। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: T20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है और 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई है। यही कहानी इंग्लैंड की भी रही है। नेट साइवर ब्रंट की कप्तानी में मेजबान टीम अजय रहते हुए खिताबी मुकाबले तक पहुंची है। हालांकि कल इन दोनों में से किसी एक टीम के विजय रथ पर विराम लगना तय है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 45 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 22 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। वहीं 20 मुकाबलों में इंग्लैंड ने बाजी मारी है, 2 मुकाबले टाई रहे हैं जबकि 1 मैच का नतीजा नहीं निकल सका है। आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबले में भी कड़ी टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति, क्रिकेट के मैदान से अब हम सीधा फुटबॉल के उस महाकुंभ की तरफ चलते हैं, जहां पे राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रखे हैं। लगभग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर ये फीफा महाकुंभ यानी विश्व कप अपना पहुंच रहा है। हालांकि कल अर्जेंटीना और काबो वर्डे ने कड़ी टक्कर हुई, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अर्जेंटीना मैच 3-2 से अपने नाम कर जीत का सिलसिला उसने बरकरार रखा है।
0: नवीन, मिस्र ने भी इतिहास रचा है और अपना पहला नॉकआउट मुकाबला जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, जहां मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में शानदार डिफेंस और अटैकिंग का एक कॉम्बिनेशन दिखाया और प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया। सुनते हैं कल खेले गए इन मैचों का हाल।
3: फीफा विश्व कप में अब राउंड ऑफ 16 की रेस के सभी स्लॉट फिक्स हो गए हैं। राउंड ऑफ 32 के अंतिम मुकाबले में कोलंबिया ने कैनसस सिटी स्टेडियम में घाना को 1-0 से हरा दिया और मैच के 14वें मिनट में ही जॉन एरियास ने कोलंबिया की ओर से पहला गोल दाग दिया। दूसरे हाफ में कोलंबिया ने अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया और कोई गोल नहीं होने दिया। एक अन्य मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना काबो वर्डे के खिलाफ एक उलटफेर से बाल बाल बच गया। म्यामा स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेस्सी ने अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। इसके बाद काबो वर्डे के डेराय डुआर्टे ने 59वें मिनट में गोल करते हुए हर किसी को चौंका दिया। अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना की ओर से 92वें मिनट में लिसांड्रो मार्टिनेज ने दूसरा गोल दागा और टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। काबो वर्डे के लिए 103वें मिनट में सिडनी लोप्स कारबेल ने शानदार गोल दागा और स्कोर को 2-2 से बराबर किया। इसके बाद अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया गया। मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस बचाव करने की कोशिश में अपना ही गोल कर बैठे। इससे पहले कल मिस्र ने इतिहास रचते हुए विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज की और ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। मुकाबले में 90 मिनट तक दोनों टीमों की तरफ से 1-1 गोल किया गया। शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रयास विफल किए, जबकि मिस्र ने 4 बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए पहली बार अंतिम 16 का टिकट पक्का किया। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति, अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन कल एक बहुत बड़ा उलट फेर होते होते बच गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भले ही अर्जेंटीना जीत गया हो, लेकिन दिल जीता काबो वर्डे ने।
0: जी बिल्कुल, और एक वो गलती जो हुई मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस से, जब अपने ही गोल्फ कोस्ट में उनकी गेंद चली गई लियोनेल मेसी का एक गोल बचाते बचाते। लेकिन जो अभियान शुरुआत से पहला मैच स्पेन के साथ ड्रॉ खेलना हो या उसके बाद जिस तरह से टीम खेली, शायद कोई फुटबॉल प्रेमी नहीं कहेगा नवीन कि ये टीम अपना पहला विश्व कप खेल रही है।
1: शक्ति, ये इतिहास रहा है फीफा विश्व कप का कि कभी ना कभी कोई ना कोई एक छोटी टीम ऐसे बाहर निकल कर आती है जो सबको चौंका देती है, और शायद ये कल जो मैच हुआ था वो सबको चौंका चौंका देने वाला मैच होता कि मेसी के रहते अर्जेंटीना हार जाती। लेकिन बात यह है कि पूरा का पूरा मैच खेला गया और मैच अंतिम समय तक गया, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें आपको मैच खेलना पड़ा। अगर यही परफॉर्मेंस अर्जेंटीना की राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों में रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल, अर्जेंटीना को वापस एक बार अपने परफॉर्मेंस की तरफ देखना होगा और मूर्चों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो इस टूर्नामेंट से निकल के आई, इस मैच से निकल के आई, कि इस पूरे सीजन का जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है काबो वर्दे।
1: जी, फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले आज रात से शुरू हो रखे हैं और आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ह्यूटन स्टेडियम में होगा कनाडा और मोरक्को के बीच, और दूसरा होगा फ्रांस की टीम का, और फ्रांस जो है इस बार खेलेगी पराग्वे से।
0: जी बिल्कुल, और जब फ्रांस की बात होती है तो बात होती है एम्बापे की। किलियन एम्बापे सबसे आगे हैं गोल्डन बूट की रेस में और टीम को सबसे अधिक उम्मीदें टीम के स्टार खिलाड़ी से होने वाली हैं।
1: जी, शक्ति पैराग्वे और फ्रांस के बीच अब तक कुल मिलाकर 5 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं और इसमें फ्रांस का जो पलड़ा है वो लगातार भारी रहा है। फ्रांस ने 3 मैच जीते हैं जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रखे हैं और फ्रांस को पैराग्वे के खिलाफ अपनी पहली जीत का इंतजार है। अगर आपको ये जीत देखनी है, ये मैच देखना है, तो आज इंतजार करना होगा।
0: जी बिल्कुल, इंतजार करना होगा। लेकिन उसके पहले एक और बहुत शानदार मुकाबला होना है जो कि कनाडा और मोराको के बीच खेला जाना है। दोनों टीम के अगर आपस के स्कोर की बात की जाए, 2 मुकाबले खेले गए हैं और मोराको का दबदबा थोड़ा सा भारी है, 1 मैच जीता है और 1 ड्रॉ किया है। नवीन,
1: भी फीफा विश्व कप के इतिहास में दोनों की ये दूसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 2022 में वर्ल्ड ग्रुप स्टेज में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया था। अगर आप इन दोनों मैचों को देखना चाहते हैं तो सुबह 2:30 यानी 2:30 पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे और आज रात 10:30 टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। फुटबॉल के बाद अब आपको लिए चलते हैं हम उस ग्रास कोर्ट पे जिसका इंतजार टेनिस प्रेमियों को शुरू से ही रहता है। जून का महीना हो, जुलाई का महीने की शुरुआत हो, जून का आखिर हो, तो सब रुक करते हैं विंबलडन की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जहां पुरुष सिंगल्स में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के मार्कस गिरा से होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडी मिनार ने अमेरिका के जेट्री स्वाजदा को 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 से हरा दिया।
0: जी, और महिला सिंगल्स की बात की जाए तो पोलैंड की ईगा स्वीटेक का मुकाबला फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा इला से जारी है और एक अन्य मुकाबले में कजाकिस्तान की एलिना रॉय बकीना ने बेल्जियम की एलिस मार्टिस से उनको हार का सामना करना पड़ा 7-6, 6-1 से।
1: शक्तिकल इस टूर्नामेंट में एक शानदार मुकाबला खेला गया जिसमें नोवाक जोकोविच ने आर्थर रिंडरकनेक को 3 घंटे चले मुकाबले में 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 से हरा दिया। On the grass of center court, but it's Djokovic first to rise. 6-4, 1-6, 7-6. What a point to finish a great match, a great test for Djokovic, a scare from Arthur Rinderknecht. But it is Novak Djokovic who survives and will celebrate again. And take the acclaim of the crowd one more time.
0: और इस जीत के साथ ही जोकोविच विंबलडन के पुरुष सिंगल्स में सबसे अधिक जीत के मामलों में दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर के बराबरी पर आ गए हैं। अब उनसे आगे सिर्फ मार्टिना नवारितोवा हैं जिनके नाम पर 120 जीत दर्ज हैं।
1: और अब बात स्क्वैश की। स्क्वैश में तन्वी खन्ना ने पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब जीत लिया और मुंबई में खेले गए फाइनल में तन्वी ने मिस्र की फरीदा वालिद को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है लेकिन चलते चलते अब तक का स्कोर सुन लेते हैं शक्ति से।
0: जी बिल्कुल, और 19 ओवर 4 गेंद का खेल हो चुका है। भारतीय टीम 6 विकेट खोकर 188 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ा चुकी है।
1: तो आज के इस अंक में लिस्टनर्स बस इतना ही। उम्मीद है आज का अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए मुझे नवीन और मेरे साथ शक्ति को। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों

0: से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर, और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल

0: विकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांणद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बी हेल्ड फ्रॉम 20th ऑफ दिस

ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।

0: सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है। कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है। जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
1: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज वृक्षनीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
2: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
1: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
2: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
1: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है।

0: कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
1: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
2: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
1: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
2: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है। यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
2: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
1: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मल्लिका। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का।

0: साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारणकर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी

0: अब याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है, इसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बूंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहां तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो लिखते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन यह है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9

0: दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी, सुरसर स्नाता राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही, जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक

0: प्रभावित थे। उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गा जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे, जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभति उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50 60 70 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हो, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।

0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर विकसित नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास की आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। तेहरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, थाने, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हैं। मुंबई, थाने और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 बजे से पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 मैच में 191 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Margo. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को ले

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता को उनकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में शुरू हुआ। डीआर कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के अंतर्गत सेवारत भारतीय सेना के 651 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। और फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा निवेश का एक सुरक्षित अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा है कि यह समझौता निवेश

0: के निवेश की सुरक्षा के मामले में मजबूत होने के साथ साथ वैध सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप संप्रभु नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पर्याप्त लचीला भी है। बीआईए अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्यायशास्त्र को भी दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि बीआईए से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत और इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अगले 250 वर्ष अमेरिका के लिए और अधिक समृद्धि, शांति तथा प्रगति लेकर आएंगे और भारत अमेरिका साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप के पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोयो सुबियांतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जकार्ता के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की ये चौथी यात्रा है। मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्तर तक पहुंचने के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसाला में अयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों में राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर दलीबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। बिहार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेडिटा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदेवेदेव, चीन के के वरिष्ठ प्रतिनिधि है वे अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल।

0: शामिल थे। इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में 28 फरवरी को खामेनेई के मारे जाने के बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 9 जुलाई को पवित्र शहर मशहद में दफनाए जाने से पहले अगले कुछ दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी रहेगा। उसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक का पालन किया जाएगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC के स्थायी परिचालन ठिकाने साके में आयोजित एक औपचारिक पदक परेड के दौरान संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। ये पदक कल आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा है। सरकारी मौसम एजेंसी के अनुसार जून में औसत तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण लू से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से 24 और 25 जून अब तक के सबसे गर्म दिन रहे। पहली बार फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फीफा विश्व कप में प्री क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में आज रात 10:30 टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को और मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हराकर इस राउंड में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। भारत के लिए ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता को उनकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में शुरू। DR कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के अंतर्गत सेवारत भारतीय सेना के 651 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। और फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. Bilateral investment agreement between India and Israel comes into force. Prime Minister Narendra Modi extends greetings to President Trump and the people of the United States on the 250th anniversary of their independence. 6-day state funeral of Iran's former supreme leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei begins in Tehran. 651 Indian Army personnel serving under the United Nations peacekeeping mission in DR Congo receive prestigious UN medal. And in FIFA World Cup, a round of 16 to begin with Canada taking on Morocco in Houston, Texas tonight. The bilateral investment agreement BIA between India and Israel came into force today. The agreement was signed in September last year in New Delhi. The finance ministry said that the BIA is a landmark step towards strengthening bilateral economic relations and ensuring a secure and predictable investment climate. The ministry noted that the BIA is expected to contribute to increased cross-border investment activity and further deepen the economic partnership between India and Israel. The United States is today marking the 250th anniversary of the Declaration of Independence,

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 14.1 MHz पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 10 सेकेंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल जिसका नाम है हर सिंगार। और हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और

वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। और ऐसे ही सदाबहार नगमों और कहानियों के साथ हम हाजिर हैं आपके अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। त्रिपुरारी कहते हैं कि आंखों में एक चेहरा कुछ ऐसे घुल रहा था, आंखों में एक चेहरा कुछ ऐसे घुल रहा था, काजल पिघल पिघल कर तस्वीर बन गई थी। और बात जब आंखों के काजल की हुई है तो आइए आज के इस सफर का आगाज भी ऐसे ही एक सदाबहार गीत से करते हैं जो अपने जमाने के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना साहब की एक बेहद खूबसूरत और सुपरहिट फिल्म दो रास्ते से है। आपके लिए लेकर आया हूं और यह फिल्म आई थी 1979 में और यह नगमा मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये बेहद खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं। और आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बेहद खूबसूरत मौसिकी से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब की जोड़ी ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार नगमा रफी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

फिल्म दो रास्ते का यह नगमा था मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं इस वक्त आप। और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में बात अब एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्मों में से एक रही, और वह फिल्म है 1976 में आई कभी कभी। एक ऐसी फिल्म जिसने मोहब्बत, शायरी और संगीत तीनों को एक नई पहचान दी, जो तकरीबन 50 साल बाद भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसी है। कहते हैं कि इस फिल्म का ख्याल निर्देशक यश चोपड़ा साहब को उस वक्त आया जब उन्होंने अपने अजीज दोस्त और इस फिल्म के गीतकार साहिर लुधियानवी की एक नज्म पढ़ी। बस वहीं से जन्म हुआ एक ऐसी कहानी का जो आज भी दिलों को छू लेती है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कश्मीर की दिलकश वादियों में हुई। यश चोपड़ा साहब अक्सर कहा करते थे कि कभी कभी की शूटिंग उनके लिए किसी हनीमून से कम नहीं थी। पूरी यूनिट एक परिवार की तरह साथ रहती थी और इसी अपनापन ने फिल्म में भी एक खूबसूरत एहसास भर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन साहब की छवि को भी एक नया रंग दिया। जंजीर, शोले और दीवार जैसी फिल्मों में गुस्सैल नौजवान की भूमिका निभाने वाले अमिताभ कभी कभी में एक नर्म दिल शायर और अधूरी मोहब्बत की कसक लिए आशिक के रूप में नजर आए। दर्शकों ने उनके इस अंदाज को भी उतना ही पसंद किया जितना पहले की फिल्मों को, हालांकि इसको कुछ ज्यादा ही पसंद किया। एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म की कहानी शुरू से ही अभिनेत्री राखी को केंद्र में रखकर लिखी गई थी, लेकिन इसी दौरान उनकी शादी मशहूर शायर और फिल्मकार गुलजार साहब से हो गई। गुलजार साहब चाहते थे कि राखी फिल्मों से दूरी बना लें, मगर यश चोपड़ा साहब के इसरार पर आखिरकार राखी ने इस फिल्म में काम करने की हामी भर दी और यह फैसला हिंदी सिनेमा के लिए यादगार साबित हुआ। अब बात अगर इसके संगीत की करें तो इस फिल्म के संगीत ने कभी कभी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। संगीतकार खयाम की मधुर धुनें और साहिर लुधियानवी के दिल को छू लेने वाले अल्फाज, क्या कमाल का संगम था दोनों का। दोनों को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी नवाजा गया। फिल्म में ऋषि कपूर के लिए किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन साहब के लिए मुकेश साहब ने

आवाज दी। खास तौर पर कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है, आज भी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तराना माना जाता है। इस गीत के लिए मुकेश साहब को उनके इंतकाल यानी मरणोपरांत उनको आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और अगर संगीत प्रेमियों की राय की बात करें तो कभी कभी का संगीत बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन साउंड ट्रैक में गिना जाता है। इसकी हर धुन, हर मिसरा और हर एहसास आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जितना लगभग 50 साल पहले था। तो आइए इसी फिल्म का एक दूसरा बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है खयाम साहब ने।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। और हर सिंगार की वो महफिल है जहां पर सदाबहार गीतों की महफिल सजती है, और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और जज्बाती फिल्म की। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कालजयी फिल्म की जिसके गीत, संवाद और अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में ताजा हैं। दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ अपनी कहानी की वजह से नहीं बल्कि अपने अल्फाज, अपने संगीत और अपने एहसास की वजह से हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। ऐसी ही एक शाहकार फिल्म है आंधी, और यह फिल्म आई थी 1975 में। बहुत कम लोग जानते हैं कि आंधी की कहानी को पहले मशहूर पटकथा लेखक सचिन भौमिक ने लिखा था, लेकिन निर्देशक गुलजार साहब को वो रूप पसंद नहीं आया। उनके जहन में एक अलग ही तस्वीर था, दो ऐसे लोगों की दास्तान जो बरसों बाद एक होटल में अचानक आमने सामने आते हैं। इसी ख्याल को उन्होंने अपनी नजाकत भरी लेखनी से एक नई शक्ल दी। दिलचस्प बात यह भी है कि गुलजार उस दौर में एक साथ दो फिल्मों मौसम और आंधी की पटकथा पर काम कर रहे थे। उसी साल उनकी एक और फिल्म खुशबू भी रिलीज हुई। साल 1975 गुलजार साहब के रचनात्मक

सफर का शायद सबसे सुनहरा दौर साबित हुआ। संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी हमारे प्यारे पंचमदा और गीतकार गुलजार साहब की जोड़ी ने इस फिल्म में ऐसा जादू रचा जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में बसता है। इन दोनों ने पहली बार फिल्म परिचय में साथ में काम किया था और बीती न बिताए रहना तथा मुसाफिर हूँ यारो जैसे बेमिसाल गीत दिए थे, लेकिन आंधी और खुशबू ने इस जोड़ी को कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आंधी के गीतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरत खुशबू झलकती है। इस मोड़ से जाते हैं में राग यमन की मधुर छाया सुनाई देती है और इसीलिए यह नगमा बेहद खूबसूरत और बन जाता है। तो आइए इसी फिल्म का वही बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार नगमा हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। संगीत है आर डी बर्मन साहब।

इस मोड़ से जाते हैं। बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा यह नगमा फिल्म आंधी से। आवाजें थी किशोर कुमार साहब और हम सब की प्यारी लता जी की। और इस गीत को लिखा था गुलजार साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था आरडी बर्मन साहब ने। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइएगा, और उसके लिए आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं fmgoldeirdaily@gmail.com पे। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldeirdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम हम तक जरूर पहुंचाएं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार की ये दिलकश और सदाबहार गीतों की महफिल, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फिरोज। और अब वक्त है कि हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट, और उसके पश्चात आज 11:40 पर हम आपके लिए हाजिर रहेंगे लेकर आपका अपना पसंदीदा गोल्डन एरा के वो नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब है, और प्रोग्राम होगा गीत मेरे मनमीत। और गीत मेरे मनमीत की महफिल सजेगी आज 11:40 पर। अमूमन ये 11:10 पर यह महफिल सजती थी। इसी के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए हर सिंगार से इजाजत। फिलहाल वक्त हो रहा है समाचारों का, आइए सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का

0: समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।

0: Welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic, and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers, 2331-4444, 2331-0481. And 2371-7106. And of course, do not forget to prefix the Delhi code 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phones. Well, my name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर हम नजर डालेंगे. आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 2331-4444, दूसरा नंबर 2331-0481, और तीसरा नंबर 2371-7106. और दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. हम श्रोता आपको बता दें, किसी भी स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे. और आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं विशेष हमारे मेहमान वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद. नमस्कार.
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले हेडलाइंस.
0: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the fourth straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%. And monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne aaj Gujarat ke Sanand mein Crompton Greaves semi

आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी केंद्र का उद्घाटन किया। घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए और संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम गुजरात के साणंद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत तैयार की गई यह फैसिलिटी देश की टेक मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक अहम पड़ाव है। साणंद पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने हाईटेक प्लांट का दौरा किया और प्रोडक्शन प्रोसेस का जायजा लिया। पूरी तरह से क्रियान्वित होने पर इस फैसिलिटी से सालाना प्रोडक्शन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की बढ़ती ग्लोबल मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
0: And Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for several development projects worth over 1 lakh crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra, in Balotara district. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. And in the meanwhile, we are joined in by our first caller, B.R. Nath from Delhi. Mr. Nath, welcome to the show.
2: Hello.
3: Ji, namaskar. Sawal
2: namaskar. देखिए आज एक एक्सपर्ट से पूछना, नमस्कार एक्सपर्ट, और आपको भी, ये जो क्या नाम TDS और AIS बने हैं, 30 जून तक अपडेट नहीं हुआ, इसलिए कुछ रह जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, बायबैक जो किया था इंफोसिस का दिसंबर में, उसको लोग डिविडेंड भी दिखाते हैं और बायबैक भी दिखाते हैं, ये AIS में और TIS, क्या नाम इसमें TIS में, ये एनोमली क्यों है?
3: देखिए, ये आयकर विभाग ने अब जो आयकर रिटर्न की प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी है, जितने भी फॉर्म हैं ITR 1 से 7 तक वो किए गए हैं, और ITR 1 और 2 जो है वो 31 जुलाई तक, और ITR 3 और 4 जो है वो 31 अगस्त तक भरे जा सकते हैं। आपका जो दो मूल सवाल है कि ये अंतर क्यों है, अगर अंतर आपको नजर आता है तो आप आयकर विभाग से तुरंत उसका प्रश्न पूछें, उस पर आपकी दोनों की सहमति, जैसे आपने कहा TIS है और AIS है, तो AIS में आपने देखा होगा कि जब आपके पास वो आता है कंप्लीट डिटेल, उसमें ये भी होता है कि एक असेसी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड क्या किया। अगर असेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है उसको। तो अगर कोई अंतर है तो कृपया करके आयकर विभाग से अविलंब संपर्क करें। समय चूंकि कम है, रिटर्न दाखिल करने में काफी कम समय तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ समय थोड़ा कम बचा हुआ है, तो उस हिसाब से आप तुरंत उनसे करें, जो कुछ भी विसंगतियां होंगी या जो कुछ भी अंतर होगा उसको दूर किया जा सकता है।
1: और इस बीच दिल्ली से योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न पूछिए।
4: आप सभी को नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि गोल्ड बॉन्ड होते थे पहले, लोग काफी निवेश करते थे गोल्ड में, तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में निवेश अच्छा माना जाता था, और अभी सडनली गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, और कोई ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि इसको क्यों बंद किया गया है, फिर कब तक के लिए बंद किया गया है। तो कई बार सुनने में आया है कि गवर्नमेंट को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है, इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो आपका इस पर क्या व्यू है, और क्या ऐसा सच में कुछ नुकसान होने के स्कोप था इसमें गवर्नमेंट को, जो वो देख नहीं पाए उस टाइम पे?
3: देखिए, जो गोल्ड बॉन्ड लाया गया था उसके पीछे मकसद ये था कि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदें और उसके वजह पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें, एक तरीके से कागजी गोल्ड आप इसे कह सकते हैं। और इसमें ये कहा गया था कि 8 साल के बाद जो कुछ भी बाजार की कीमत होगी उस कीमत पर आपको उसका भुगतान किया जाएगा। तो इससे सरकार के लिए, इसके लिए फायदे का सौदा यह था कि उनको आयात करने के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसके लिए जो डॉलर देना पड़ता है वो डॉलर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सरकार सीधे सीधे आयात नहीं करती, लेकिन जो भी एजेंसीज आयात

0: करती हैं उनको डॉलर पे भुगतान करना पड़ता, तो डॉलर के ऊपर दबाव कम करने और सोने के आयात को कम करने के लिए कदम उठाया गया। लेकिन जब इसकी प्रकल्पना की गई थी तो उस समय किसी ने इस बात को सोचा नहीं था कि सोने के भाव इतने तेजी से ऊपर चले जाएंगे, आज 160-161 का है। और यह भी आप याद रखिए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मकसद जो था सरकार की उधारी का एक हिस्सा वो था, तो अब अगर सरकार की उधारी बहुत महंगी हो जाती है तो इसका नुकसान सरकारी खजाने को ही होगा। बजट के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि इसे क्यों जारी अभी नहीं रखा गया है और इसमें किस किस तरह के परेशानी हो सकती है। सरकारी व्यवस्था को अगर आप देखें, उनके ऊपर खर्च के बोझ को देखें, तो इस वजह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है वो बंद किया गया है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए जो कुछ भी देनदारी है वो पूरी की जा रही है। 8 साल का समय जब पूरा होगा उनको भुगतान होगा, हर साल 2.5% की दर से ब्याज, जो कि मूल जिस रकम पे आपने लिया था उस के हिसाब से 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा। 5 साल के बाद आप प्री मिच्योर रिडम्पशन भी कर सकते हैं और 8 साल के बाद जब आप पूरा रिडम्पशन करेंगे तो आपको एक भी पैसा कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। तो एक अच्छी स्कीम थी लेकिन इसकी लागत सरकार के लिए बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा है।
1: एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र,
2: हेलो हेलो सर। हाँ सर, एक प्रश्न था, मैंने एक महीना पहले पूछा था लेकिन शायद हम ठीक से पूछ नहीं पाए थे तो इसलिए ठीक से जवाब नहीं मिल पाया। तो जैसे एक हम न्यूज पढ़े थे राजस्थान पत्रिका में कि कुछ कंपनियों का नाम था, वो नाम तो ले नहीं सकते, इंडियन कंपनी का, कि इनका मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, मतलब मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, तो ये अच्छा बात है या कैसा, हम इसको कैसे कैसे रूप में लें?
0: देखिए जितेंद्र जी, मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप अगर बाजार पूंजीकरण को एक आम बिल्कुल आम व्यक्ति के नजरिए से सोचे तो जो शेयर की मौजूदा कीमत है और बाजार की जो में जितने शेयर उपलब्ध हैं उनको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास एक बाजार पूंजीकरण आता है। बाजार पूंजीकरण में नियमित तौर पर बदलाव होता रहता है, बाजार ऊपर जाएगा तो बाजार पूंजीकरण ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो बाजार पूंजीकरण भी नीचे आ सकता है। अब आपका मूल प्रश्न है कि आपने कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ा कि उनका जो कुल निवेश है उनके बाजार पूंजीकरण से ज्यादा हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। उनके पास बस ये ध्यान में रखना है कि उनका इक्विटी डेट रेशियो क्या है, यानी कि कितना उन्होंने कर्ज ले रखा है। अगर बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है और उससे उनके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के वित्तीय स्थिति के लिए वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अगर संतुलित वे में है तो कोई गलत नहीं है और ये दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है कि आपकी जो शेयरों की कीमत है उससे ज्यादा आप लेते हैं, वो एक लेवरेजिंग होता है एक तरीके से, इसको कहते हैं, इसके आधार पे आप बाजार से पैसा उठाते हैं। तो कितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा है तो वो शायद थोड़ा सा उसके ऊपर एक नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन अगर समझ लीजिए कि 10-15% ज्यादा है तो उसमें कोई हैरानी या कोई भी दिक्कत की बात हमें नजर नहीं आती।
1: राइट शिशिर जी, टॉकिंग ऑफ द ओसेट फैसिलिटी इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन गुजरात इन सानंद दिस इवनिंग, यू नो दिस इज रियली हार्टनिंग। Almost 5 billion semiconductor chips capacity, annual capacity, production capacity. This is humongous given the importance of semiconductors across electronics industries and of course the new technology which is coming in, AI as well. So how do you see this kind of, if we look at our dependence on the foreign countries, especially Taiwan and other countries, China of course.
0: When you are developing a mobile handset, when you are becoming a leader in mobile handset export, you need a complete value chain. You need a complete supply chain. So first you develop the product, then you develop the component, now you need the semiconductor. So many of the companies are coming into this field, many of the projects have been approved. So with this kind of infrastructure, we are going to have a complete supply chain for the electronic goods. What we can, you can also call it as the second phase of Make in India. We started with the assembling a mobile handset, now we will have the entire components as well as the semiconductor, which is a key requirement for any electronic items. So this is going to help in that way. Second thing which you need to remember, that we have started with what we call as the chip designing, then we can go for the fabrication and then we can go for the packaging. So on the one side, on the one hand, we are talking about the entire supply chain for electronic goods. On the other hand, we are talking about the entire ecosystem for the semiconductors. So combination of these two, after say 5 years or after say 4 years, we

0: will be in a position to export large quantity of semiconductor chip from India, which is at this moment, you rightly mentioned that from where we are importing, whether we talk about Taiwan, whether we talk about China, or whether we talk about South Korea, because I mean recently these one of these countries was in news because one of the key chip maker played a key role in the entire stock market thing. So we are not going to have that kind of situation, but the important thing for us that we will be becoming a good exporter, a big exporter of the semiconductor on the line of the electronic goods.
1: भारतीय घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे हफ्ते बढ़त देखी गई, इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के माहौल के और बेहतर होने की संभावनाएं थी। इस सप्ताह की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 664 अंक यानी 0.86% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 215 अंक यानी 0.89% बढ़कर 24,271 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार का प्रदर्शन भी घरेलू शेयर बाजार जैसा ही रहा। निफ्टी मिड कैप में 0.6% से ज्यादा की बढ़त देखी गई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में इस सप्ताह 2% का उछाल आया। सेक्टर के हिसाब से देखें तो रियल्टी, फार्मा और हेल्थ केयर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एनर्जी सेक्टर नुकसान में देखे गए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से जबरदस्त रिकवरी देखी गई। फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपया 82 पैसे कमजोर हुआ और अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.22 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में बेंचमार्क इंडेक्स ने नकारात्मक रुख दिखाया। सेंसेक्स में 10.2% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 8.7% नीचे आ गया, जबकि विस्तृत बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा। निफ्टी मिड कैप में लगभग 2.2% और निफ्टी स्मॉल कैप में 6.5% की बढ़त देखी गई।
2: शशि जी, द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक ऑफ गेन्स, if we look at the backdrop of the last 4 or 5 months, ever since the Middle East or the West Asian crisis happened, are the bad days behind us and can we look forward to greener pastures in the coming
0: just
2: days?
0: Last week I was talking to one of the largest mutual fund of the country, and the first line he said that the worst is behind us and we are on a better path. Now the key concern at this moment is, one is of course the monsoon. Of course we are coming out from the West Asia crisis.
2: El Nino.
0: Yes. So after West Asia, the biggest concern at this moment is El Nino. Because if we go by the number, I think 40% deficit was in the month of June. And when you are entering July, of course, we are seeing good spread of rain, but we do not know that what will happen. And if I go by the IMD forecast, they are saying that it will be below normal. So that is a real concern. And why this is a concern? Because 65% of population is in the rural area, 50% of labor force is in the rural area. So when the rural economy will be in distress, then of course entire economy will be in a problem, because we will not be having what we call as the virtuous cycle, but we may have the vicious cycle. That is a concern. And market is also at this moment, they are talking more about the West Asia crisis, but they are also concerned, little bit concerned about El Nino, and the real impact will be after the Q1 results, which we are going to have from 11th of this month, 10th and 11th of this month. So that the Q1 results will decide that what kind of direction we are going to have in the market in the month of July as well as in the month of August.
2: Absolutely.
1: महाराष्ट्र से मंगेश फोन लाइन पर है। मंगेश जी, सवाल पूछिए।
3: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार
3: सर, अब आईटी सेक्टर में निवेश करना अच्छा रहेगा कि आपके मित्र रहेगा निवेश करना, इसके बारे में पूछना था। और युद्ध का प्रभाव कहाँ तक रहेगा कि खत्म हुआ, उसके बारे में पूछना था।
0: अच्छा मंगेश जी, देखिए पहला जो आपका प्रश्न है आईटी सेक्टर का, ये एक कह लीजिए कि एक अजीब सी विडंबना भी है कि बीच में हमने देखा कि आईटी सेक्टर में इसलिए गिरावट है क्योंकि एआई में जो है वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और फिर ये भी देखने को मिला कि आईटी सेक्टर में थोड़ी रिकवरी हुई क्योंकि एआई सेक्टर को लेकर के कंसर्न्स कुछ अलग तरीके के आ गए। फिर हमारे पास ये बयान भी आता है कि अभी के समय में भी पारंपरिक आईटी कंपनियों का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि अगले छह महीने से साल भर के बीच में आईटी कंपनियों को लेकर के ये असमंजस की स्थिति और अनिश्चितता की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप तीन साल या पांच साल के निवेश के नजरिए से सोचें, आप साल भर की बात मत करिए, तीन साल के निवेश के नजरिए से सोचिए, तो आईटी के वैल्यूएशंस अभी

0: नीचे हैं और आपके लिए खरीदने का एक अच्छा मौका है। एक ही सुझाव है, किस्तों में खरीदें, एक साथ सारा पैसा ना लगा दें। दूसरा आपका प्रश्न था कि पश्चिम एशिया के संकट के बाद की स्थिति का क्या है। देखिए, पश्चिम एशिया के संकट को लेकर के कह सकते हैं कि शांति समझौता हुआ है, उसके बाद तकनीकी दौर की बातचीत चल रही है। हम उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, सभी लोग उम्मीद करेंगे और खासतौर पर बाजार से जुड़े लोग तो खासतौर पर चाहेंगे। लेकिन बीच बीच में ऐसे ऐसी कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जिससे कि इस शांति समझौते पे कुछ समय के लिए प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। तो अनिश्चितता थोड़ी है और उस अनिश्चितता को मॉनसून ने भी कुछ हद तक बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से अभी शेयर बाजार के लिए कहते हैं ना कि चैन से सांस लेने का समय नहीं है। वहां पर अभी भी घबराहट की थोड़ी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। हाँ, आप रैली जो देख रहे हैं, ये 4 सप्ताह हमने लगातार चौथे सप्ताह देखा कि शेयर बाजार में तेजी आई। उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह भी थोड़ी स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर बाजार में शायद थोड़ी हलचल अलग तरीके की देखने को मिलेगी।
1: राइट, नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी
2: नमस्ते, गुड आफ्टरनून।
0: नमस्कार
2: सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट फॉरेन रुपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर। क्या अभी वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर स्लाइड डाउन इन नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू, और वी कैन नाउ एक्सपेक्ट इट टू स्टेबल एट अराउंड 95 फॉर सम मोर टाइम? व्हाट इज योर व्यू ऑन डॉलर?
0: ओके शंकर जी, इफ यू सी द नंबर्स ऑफ द डेट इन्वेस्टमेंट बाय फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आफ्टर वी हैव सीन दिस टैक्स बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट, वी हैव सीन गुड इनफ्लो इन टर्म्स ऑफ दैट, एंड दैट इज गिविंग सम सपोर्ट टू रुपी विच वॉज बिलो 95. सो एट दिस मोमेंट आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ और 3 मंथ वी विल हैव सम मोर स्टेबिलिटी। बट एट द सेम टाइम इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डिसरप्शंस इन द वेस्ट एशिया सिचुएशन, देर मे बी मोर डिमांड फ्रॉम द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर क्रूड परसेज, देन इट कैन हैव सम प्रॉब्लम। बट एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months मोर स्लाइडिंग ऑफ द रूपी, एंड इट विल बी बिलो 95 और बिटवीन 94 and 95.
1: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द US मार्केट्स, द यूनाइटेड स्टेट स्टॉक मार्केट्स रिमेन्ड closed yesterday in observance of Independence Day. Meanwhile, major US indices finished the holiday shortened week with solid gains. The Nasdaq Composite Index surged 2.1%. The Dow Jones Industrial Average rose by 2% during the week to close at a record high of 52,900. The S&P 500 gained 1.75% during the week. Investors cheer the weaker than expected US jobs data and are now looking for a softer inflation numbers, reinforcing expectations that the Federal Reserve will keep interest rates unchanged at its policy meeting scheduled for the end of this month. Shishirji, softer inflation number expectations from the US, the public over there, and of course the hawkish Fed. Your views on that?
0: I think that's something, expectation is there, but going by the current price movement, and especially after this entire West Asia thing, I don't think that the inflation will be much softer there, and that is why Federal Reserve is very much cautious. And the commentary which we have seen, which we have heard from the Federal Reserve, is something which we have to keep in mind. And the month and meeting of Federal Reserve will also determine, but softer inflation, not much fall in inflation one can expect in the US.
1: Right, and in some other news, the monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that President Draupadi Murmu has approved the government's proposal to convene the session from the 20th of July. In a social media post, Mr. Rijiju said that the session will focus on meaningful debates, discussions and decisions on issue of national importance. You are tuned in to the Market Mantra program on Akashwani. Listeners, you can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106, and do not forget to prefix 011 before these numbers. The Delhi STD code if you are calling from out of Delhi or from your mobile phones. Meanwhile, we are joined in by our next caller, Tapash from Kolkata. Tapash.
3: CTG, Tabusha Kurti, actually last

0: week that Kolkata zone now started. Actually, last 1 year we are unable to contract. Actually, पता नहीं मैंने क्यों इधर कैलिकट नहीं हुआ था, क्योंकि आपने भी कैलकाटा से कोई कॉलर आपको मिला क्या? नहीं मिला आपको, ये नहीं है. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरा डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है. तो सर आप सुन रहे हैं ना?
1: हाँ जी, बोलिए बोलिए.
0: हाँ, तो उसमें मैं अभी क्या किया, बॉन्ड खरीद रहा हूँ. बॉन्ड में 10-11% मेरे को इंटरेस्ट देता है और मैं वो इंटरेस्ट में चल रहा हूँ. तो आप मेरे को बताइए ये ठीक है क्या? ये बेसिकली ये ए प्लस और ए कैटेगरी बीवी बी प्लस ऐसा आता है. तो मैं उसमें इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है महीना में
1: जी जी,
0: और मेरे को इसमें चल रहा है. तो सर ये ठीक ठाक है क्या? ये जरा सा आप बोलेंगे तो अच्छा है.
1: नहीं देखिए, आपका फैसला अच्छा है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपने कहा कि आप ट्रिपल ए और ट्रिपल बी की बात करें तो ट्रिपल ए के नीचे तो बिल्कुल मत जाइएगा. अगर बॉन्ड लेना भी हो तो आप कोशिश करिए कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनके बॉन्ड्स को अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है. म्यूचुअल फंड में भी कुछ जो खास तौर पर डेट फंड है उसमें आप लगा सकते हैं ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो. और कुछ पैसा मेरी सलाह होगी कि डाकघर में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है उसमें ज़रूर रखिए. वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक हेजिंग है आपके लिए, जिसको कहते हैं ना, सुरक्षा आपको देगा. वैसे बॉन्ड में कहते हैं कि काफ़ी हद तक सुरक्षा तो रहता है, रिस्क तो है, जोखिम है वहाँ भी, लेकिन और भी बेहतर करना हो तो थोड़ा पैसा 15-20% आपकी जितनी भी कमाई है वो आप डाकघर के सीनियर सिटीजन में ज़रूर रखें.
2: And moving on to oil now, the global crude oil prices are hovering near the levels last seen before the West Asia conflict erupted in late February, as traffic through the Strait of Hormuz has improved amid progress in the US-Iran talks. A spokesperson for Qatar's foreign minister said in a social media post that the talks made positive progress on the matters related to the memorandum that halted the war in June. During the week at the Intercontinental Exchange, that is ICE, Brent crude September futures dropped nearly 0.7% to settle at $72.12 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI August futures declined 0.6% to end at $68.82 per barrel. Shishirji, of course, you know, the decline from almost near about $120 to $72 with the crude is on expected lines, but we are talking here of the energy sector stocks. What do you think of that when we look at this crude sector?
1: There are two parts. One, you rightly mentioned about the slide in the crude oil prices. And at this moment, we are seeing some good performance by the oil marketing companies in terms of what we call as the under recovery. Their under recovery has come down. So that is one positive for them. And we should also remember that during this period, they bought large quantity of crude at a very high price. So until unless that supply is exhausted,
2: yes,
1: they will not be in a very comfortable position. So their under recovery has come down, but that has not come down much below than what we are saying about the pre-war release. So at this moment, I believe that the OMC companies, there should be some kind of caution, at least for the next 1 month. And after this supply is exhausted, and if the prices of Indian basket of crude is hovering around say 70-75, then they will be in a better position in second quarter. So somebody, if somebody is planning to make put money in the oil marketing company stock, they should wait at least for one month or 2 months, then they can plan for making fresh investment into that.
2: Right.
3: गुजरात में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया है कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा. उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुजरात खंड का 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है. सूरत से बिलिमोरा को जोड़ने वाला पहला परिचालन खंड अगले साल खुलने वाला है. सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी

0: हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। शिशिर जी, एक प्रश्न आपसे पूछना मैं चाहूंगा कि आने वाला जो सप्ताह है उसमें बाजार को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब आपने Q1 रिजल्ट की बात की है, पहली छमाही भी गुजर चुकी है।
1: देखिए, अगले सप्ताह जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो क्यू होगा वो हमारे लिए रिजल्ट्स ही हैं, जो कि 10 तारीख से शुरू होता है। तो उसके अनुमान में कुछ नए गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। तो बाजार थोड़ा सबड्यूड रहेगा, जो हमने 4 सप्ताह से तेजी देखी है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हम देखेंगे, एक सबड्यूड माहौल रहेगा। नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे अगले 20-25 दिनों के भीतर भीतर, उसके बाद बाजार में गतिविधियां और तेज होगी। लेकिन अगले सप्ताह मुझे लगता है कि थोड़ी सी हलचल उस तरीके की देखने को नहीं मिलेगी जो हमने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देखी।
0: तो छोटे निवेशकों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल? अभी
1: किस्तों में शेयर खरीदिए, जहां कहीं भी आपको गिरावट अच्छी दिख रही है वहां पर आप किस्तों में खरीदिए, लेकिन बहुत ज्यादा गिर गया उसको मत खरीदिए। जो गिरे हैं, थोड़े गिरे हैं, उनमें आप किस्तों में खरीदिए और किस्तों में मुनाफा कमाना भी मत भूलिए।
2: वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम शशि जी, फ्रॉम यू, हाउ डू यू सी द स्मॉल कैप्स फेयरिंग?
1: स्मॉल कैप आई थिंक have always been either going on a very high or going on a very low. So personally, I am not very favorite. I mean, small cap is not very favorite for me. I would rather go for the mid cap where some of the companies are very good.
0: Right. शिशिर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
2: Thank you so very much, शिशिर जी. And before we close, a reminder of the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the 4th straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%, and the monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Nikhil Kumar saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में हम आपके लिए लेकर आते हैं सुनहरे दौर के उन चुनिंदा नगमों को जिसे आप बेहद पसंद करते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। और कहते हैं कि इश्क की शुरुआत जितनी मीठी होती है उतनी ही अनिश्चित भी। दिल में नई नई धड़कनें जन्म लेती हैं, सपने आंखों में सजने लगते हैं और फिर एक सवाल बार बार मन में दस्तक देता है आगे क्या होगा। आज हम आपको लिए चलते हैं 1962 के उस सुनहरे दौर में जब संगीत सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता था। उस दौर की एक बेहद नाजुक रोमांटिक और सदाबहार पेशकश फिल्म हरियाली और रास्ता का ये यादगार बेहद खूबसूरत गीत। इस गीत को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है लता जी ने और दर्द भरी आवाज के बादशाह मुकेश साहब ने। गीत के

लिखे हैं हजरत जयपुरी साहब ने और इसे अपने मधुर धुनों से सजाया है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। तो आइए इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मन मीत में।

मुकेश साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म हरियाली और रास्ता से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन मीत की ये बेहद खूबसूरत महफिल जिसे लेकर हाजिर हूं मैं फेरोज। दिल जब किसी अनकही चाहत में डूब जाए तो बेचैनी भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। आज अब हम आपको लेकर चलते हैं 1958 के उस दौर में। उसी दौर में एक फिल्म आई थी बेहद खूबसूरत यहूदी, और जहां भावनाओं को सुरों का अनुपम बेहद खूबसूरत साथ मिला। गीता दत्त और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो आज भी दिल को छू जाती है। शरद की भावनाओं पूर्ण शब्द और शंकर जयकिशन का अमर संगीत इस रचना को और भी बेहद खूबसूरत बना देता है। तो आइए इस बेहद खूबसूरत सफर पर चलते हैं। एक और बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं, प्यार की नाजुक धड़कनों और मधुर एहसासों से सजा ये अनमोल गीत बेचैन दिल खोई सी नजर आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:53 और 15 सेकंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदा। दोस्तों कहते हैं कि इश्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर बात जबां से नहीं की जाती। कभी एक मुस्कान, कभी झुकी हुई नजर, तो कभी एक मासूम सा इशारा दिल की पूरी दास्तान बयान कर देता है। आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। खामोश इजहार मोहब्बत की मीठी सी कहानी सुनाता है और दिल में उतर जाता है। और यह नगमा है सन 1964 की सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली से। ये सदाबहार युगल गीत मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की बहुत ही सुरीली आवाजों में बेहद खूबसूरत दिल में उतर जाने वाला है। SH बिहारी यानी शमसुल हुदा बिहारी साहब के खूबसूरत बोल और OP नैयर साहब के चुलबुले मधुर संगीत ने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो आइए मुस्कुराइए और प्यार के उन नाजुक इशारों को महसूस कीजिए जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ जाते हैं।

फिल्म कश्मीर की कली के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अंजलि रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे।

0: इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत भारतीय सेना के 651 कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर पूरा कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defence platform.

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरी ही कलम से निकली एक कहानी जिसका शीर्षक है वापसी। आइए सुनते हैं।

डॉक्टर दिवाकर आज किधर की ओर? अस्पताल की नर्स ने डॉक्टर दिवाकर से पूछा। बस घर जा रहा हूँ माँ के पास, ये कहकर डॉक्टर दिवाकर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी शहर से बाहर थी और धूल धुआं छोड़कर सामने नजर आ रहे थे हरे भरे पहाड़। शुरू हो रहे थे जंगल, ऊंचे पहाड़ों के बीच और बीच में से जाती वो सड़क जिसमें खुली खिड़की से आ रही थी बर्फीली हवा। उन्होंने अपनी जैकेट को कस के बंद कर लिया। हवा की ताजगी उनके मन को छूने लगी। पत्थर उन्हें हमेशा से पसंद थे और पत्थरों से बने वो पहाड़ भी। उसकी खूबसूरती, वहाँ की सर्दियाँ, वहाँ के जाड़े

उन्हें याद आने लगे बचपन के वो दिन जब वो दौड़ते हुए दूर पहाड़ पर बने छोटे से प्राइमरी स्कूल के लिए निकल जाते थे और रास्ते में प्यास लगती थी तो छोटे छोटे जंगली आंवले खा लेते थे और फिर पहाड़ी सोतों से निकलता मीठा पानी पीते तो आंवले की मिठास और बढ़ जाती। वही थी उनकी पहाड़ी मिठाई। ये जंगल तब भी जानवरों से भरा हुआ था लेकिन उन्हें डर नहीं लगता था। वो अपनी माँ के साथ पलाश और बुरांस के वनों में घूमता रहता। दिवाकर था ही अपनी माँ का दाहिना हाथ। दो ही तो प्राणी थे घर में। अनाज पीसती माँ का अथक परिश्रम देखकर किताब पढ़ता दिवाकर सोचता, कब करेगा वो अपनी माँ की परेशानियों को दूर। उस अनाज को देखकर कितनी ही गौरैया आंगन में उतर आती। अभी भी वो दिन उसकी यादों में बसे थे। अब तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता था कि इन्हीं पगडंडियों पर दौड़ते भागते हुए वो स्कूल पहुंच जाता था और कंधे पर रहता था उसका बस्ता। माँ पीछे से देखती रहती जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। उन दिनों ना तो कोई फोन था, बस मन में ये संतोष था कि उनका बेटा स्कूल पहुंच गया है। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था पर माँ के आंचल में संघर्ष महसूस ही नहीं होता था। उसे तो हमेशा छांव ही लग

गाड़ी पहाड़ी रस्तों पर हिचकोले खाते खाते उसको अपना घर दिखाई देने लगा, अपना गांव दिखाई देने लगा और साथ ही दिखाई देने लगा छोटा सा बाग, घर के सामने अखरोट के वृक्ष और पहाड़ी बेरियों की झाड़ियां। ये वो बगिया थी जहां पर बरसों पहले उसके बाबा ने पेड़ लगाए थे। आज उनके फल टूट टूट कर गिरते थे, देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने दौड़कर एक फल तोड़ा और खाता हुआ घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसको माँ दिखाई दी, बोली, अरे मैंने वहीं से देख लिया था, और तुम यहाँ से क्यों खा रहे हो, घर में तो बहुत सारे फल हैं। वो हंस पड़ी। उसने माँ को गले लगा लिया और गोदी उठा लिया। अरे मुझे जमीन पर रखो भाई। वो दोनों घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर दिवाकर ने ज्ञान विज्ञान की राह चुनी थी। उनके बाबा कहते थे दिवाकर को बहुत पढ़ना है।

इस बात को कितने वर्ष बीत गए, जब कड़ी मेहनत से उसने MBBS की परीक्षा पास की थी तो पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। सबको बहुत सी उम्मीदें थी दिवाकर से। सब कहीं ना कहीं सोचते थे गांव का लड़का डॉक्टर बना है, कल को वो उन्हीं का इलाज करेगा, क्योंकि गांव में दूर दूर तक अस्पताल की सुविधा नहीं थी। MBBS करके और आगे की डिग्री हासिल करके आज डॉक्टर दिवाकर दिल्ली के जाने माने सर्जनों में से माने जाते हैं। सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में उसे अपना घर बहुत याद आता था। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी कि अम्मा को दिल्ली लेकर आ जाएं, पर अम्मा ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये घर हमारे पुरखों की धरोहर है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो यहाँ कौन रहेगा? देखो ना, वैसे भी सब लोग तो घर छोड़कर जा ही रहे हैं शहरों की ओर। लेकिन माँ, मैं आपको कब तक यहाँ अकेला रहने दूँ? दिवाकर ने कहा था। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। तुम आते जाते भी रहोगे तो फिर यहाँ अकेलापन भी नहीं लगेगा। ये पहाड़, ये जंगल, ये सारे मेरे ही तो हैं। उसे वो पुरानी बातें याद आ रही थी। जब डॉक्टर दिवाकर ने माँ की ओर देखा तो लगा माँ का चेहरा थोड़ा और पीला हो गया है, वो और कमजोर दिख रही थी। बोले, माँ तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार अपने साथ दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। अरे अभी तो तू आया है और आज ही जाने के लिए कहने लगा। घर पहुंचकर लकड़ी के चूल्हे पर बनी मोटे अनाज की रोटी, हरी चटनी और घी के साथ खाकर उसका मन और आत्मा तृप्त हो गई। दोनों माँ बेटे बतियाते रहे और कब नींद की गोद में सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह दिवाकर उठा तो पास ही के मोहन चाचा के घर चला गया, पर वहां कोई नहीं था, न कोई आवाज सुनाई दी। वापस घर लौटकर पूछा, माँ मोहन चाचा किधर है? क्या मोहन चाचा का परिवार इन छुट्टियों में गांव आया हुआ है? अरे नहीं, उन्होंने अपना घर किराए पर दे दिया है। किराए पर? यहाँ? किसको? अंकिता को। अंकिता? दिवाकर के दिमाग में घंटी सी बजी। उसके बचपन की एक साथी थी अंकिता। दोनों मिर्ची के खेत में मिर्च खाने की शर्त लगाते थे और अक्सर वो शर्त हार जाया करता था। अपने बचपन के उस खेल को सोचकर वो मन ही मन हंस पड़ा। वो जानता था कि ये वो अंकिता नहीं हो सकती। ये लो बेटा, आ गई अंकिता, माँ ने कहा। उसने सर उठाया तो साड़ी में एक दुबली पतली सी लड़की लंबी चोटी किए सामने से चली आ रही थी। माँ ने चाय का कप दिया, बेटा चाय पी लो। अरे नहीं चाची, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ, आकर मिलूंगी, हंसकर वो निकल गई। दिवाकर ने सीढ़ियों से देखा और अनदेखा कर दिया। उसने प्रश्न सूचक नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने बताया कि अंकिता पड़ोस के गांव की लड़की है, और बेटा ये जो नया स्कूल खुला है ना, सरकारी स्कूल, उसी में टीचर लगी है, तभी तो इधर आ गई। वहीं पढ़ाती है और यहाँ किराए पर रहती है। बहुत अच्छी लड़की है, याद है ना तेरे साथ पढ़ती थी बचपन में, तेरी ही तो क्लास में थी। मेरी बहुत मदद करती है बेचारी। पिछले हफ्ते भी तेज बुखार में तप रहे एक बच्चे को लेकर रातों रात शहर गई थी। यहाँ कोई तो है नहीं जो देखता उसे। शुक्र करो अंकिता बच्चे को लेकर गई और उसकी जान बच गई। अरे दिवाकर तू जा कहाँ रहा है, बात तो सुन ले। दिवाकर बोला, माँ मैं कल्याण के यहाँ जा रहा हूँ। अपने दोस्त कल्याण से बातें करते करते दिन कैसे बीत गया दिवाकर को पता ही नहीं चला। वो कल्याण से मिलकर नदी की ओर निकल गया, तभी दूर से घंटे की आवाज सुनाई दी। उसे लगा किसी मंदिर से ये आवाज आ रही है, पर देखा तो ये आवाज तो स्कूल से आ रही थी। देखा कि खुली कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगा है, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। पास आया देखा तो अंकिता ही थी। फिर वो लंबे लंबे डग भरते हुए घर की ओर निकल गया। सोचा सामने ही पहाड़ी पर तो छोटा सा मंदिर है, क्यों ना देवता के दर्शन करता हुआ जाए। पुजारी बाबा भी तो वहीं रहते थे और वहीं रहता था उनका छोटा सा परिवार। शांत सलोने मंदिर में कोई दिया जला गया था, धूप की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी का छोटा लड़का केशव दिखाई दिया। अरे दिवाकर भैया नमस्ते, कब आए? कल शाम को ही आया हूँ केशव, कैसे हो तुम? पिताजी कहाँ हैं? ये सुनते ही केशव वहीं थम गया। पिताजी तो इस बार, कहकर उसने सर झुका लिया। दिवाकर का दिल धक से रह गया। वो डॉक्टर जो दिन रात मौत को देखता था, दिन रात उसका सामना करता था, पता नहीं क्यों ये वाक्य उसके दिल में तीर सा घुप गया। वो दयालु बाबा, वो पुजारी और उनके साथ
बचपन के बिताए वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। डॉक्टर दिवाकर ने आगे बढ़कर केशव का कंधा थपथपाया, इधर उधर की बातें की और गांव लौट आए, पर एक गहरी उदासी उनके मन पर छा गई।

पूछा, तो क्या पुजारी काका ने कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी? बेटा यहाँ कहाँ दवाई, ना यहाँ कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, ना ही कोई वैद्य, बस प्रकृति ही माँ है, वही डॉक्टर वही वैद्य। तुम तो जानते हो बेटा, पंडित जी अस्थमा के रोगी थे और कोरोना के बाद तो बहुत झटका खा गए थे। किसी कथा के लिए गांव से दूर शहर में गए थे, बस वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा और क्या कहें बेटा, कहने को कुछ नहीं। दिवाकर को अब समझ में आया, उसके मन में अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंता रहती थी। वो जानता था पहाड़ों के अकेलेपन में उसकी माँ। माँ, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा, अगर मैं चली गई तो अंकिता तो यहाँ अकेली रह जाएगी ना। दिवाकर ने नजरें उठाकर देखा तो अंकिता सामने खड़ी थी। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अंकिता बोली, ये लो चाची, मैं आपकी दवाइयां लेकर आ गई हूँ। अरे दवाइयां? दवाइयां मैं लेकर आया हूं ना, दिवाकर बोला। अरे नहीं, ये तो आयुर्वेदिक टॉनिक है जो मैं चाची के लिए लेकर आई हूँ। आप दिल्ली जाओगे ना तो ये भी लेकर जाना। ठीक है अंकिता बेटी, माँ बोली, अब तू भी यहीं बैठ, यहीं खाना खा ले। कमरा जैसे भरा भरा सा लगने लगा, खिला खिला सा। दिवाकर वहीं बैठ गया पसंदीदा आराम कुर्सी में। उसने आंखें बंद कर ली और बस रसोई में काम करती अपनी माँ को देखने लगा।

0: क्या इशारा।
1: उसके मन का तनाव और दिमाग की चिंताएं कपूर बनकर उड़ गई थीं। बेटा बहुत रात हो गई है, जरा अंकिता को घर तक तो छोड़ाओ। वो आगे आगे निकल पड़ा और अंकिता पीछे। गांव कितना सुनसान हो गया है, पहले जैसे समय होता तो छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप कष्ट मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ सुविधाएं भी तो नहीं है, सब कुछ बहुत दूर है। सही कहा आपने, दुकान से अस्पताल, स्कूल, बाजार, दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। पर इस वजह से कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता ना। मैं तो यहीं पर हूँ, मेरी दुनिया यही है और मेरा स्कूल भी यहीं, और हाँ चाची जी भी तो यहीं हैं। पर मेरा अस्पताल तो दिल्ली में है ना, दिवाकर बोले। आप यहाँ भी तो अस्पताल खोल सकते हैं डॉक्टर दिवाकर, अंकिता ने धीरे से कहा। वो चुप रह गया, बोला लीजिए आपका घर आ गया। डॉक्टर दिवाकर वापस मुड़े तो एक जोड़ी आंखें अंधेरे में उनका पीछा करती रहीं। अगले दिन डॉक्टर दिवाकर को वापस दिल्ली जाना था। वो जानते थे कि अस्पताल के कई मरीज उनका इंतजार कर रहे होंगे, बहुत सा काम बाकी था। माँ लगी थी सामान बांधने में, अपने बेटे के लिए अपने हाथ से बनाया गया कितना ही खाने पीने का सामान गाड़ी में रख दिया था। जब डॉक्टर दिवाकर अपना सूटकेस गाड़ी में रखने आए तो देखा साथ में अंकिता भी खड़ी है और माँ की मदद कर रही है। पता नहीं क्यों उनके मन के एक कोने में संतोष भर गया। एक मन जो हमेशा यहीं रहता था इन्हीं घाटियों में, उस मन में घाटियों की ठंडक उतरने लगी। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी की ओर निकल गया और दरवाजा खोल दिया। ध्यान से जाना बेटा, माँ ने कहा। डॉक्टर दिवाकर ने माँ के चरण छुए। माँ क्या तुम सच में साथ नहीं आओगी? माँ मुस्कुरा दी, बोली मेरी जगह वो नहीं है बेटा, और हंस पड़ी और मुस्कुरा दी। डॉक्टर दिवाकर की नजरें माँ के पीछे खड़ी अंकिता से टकराई, बोले सोचता हूँ अस्पताल की नौकरी छोड़कर यहीं पास में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लूँ। माँ यहाँ के लोगों को भी तो मेरी जरूरत है। उनकी नजरें फिर अंकिता से मिली, दो बड़ी बड़ी आंखें जमीन को देख रही थी। इधर माँ कहे जा रही थी, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी धरती, तुम्हारा अपना गांव, तुम्हारी जरूरत है यहाँ। बच्चे बाहर पढ़ने तो जाते हैं पर यहाँ कोई लौट कर नहीं आता, उसके बाद बस शहरों में बस जाते हैं। काश वो वापस आते अपने गांव की ओर, यहाँ आकर डॉक्टरी करते। अगर तुम यहाँ आओगे तो पता नहीं कितने

लोगों के प्राण बचेंगे। डॉक्टर दिवाकर ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो वापस आएंगे। उन्हें सामने अपना एक सुनहरा भविष्य दिखलाई दे रहा था। बोले, माँ मैं लौट कर आता हूँ। माँ और अंकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।

तो दोस्तों, ये थी कहानी वापसी जिसे मैंने आपके लिए लिखा था। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से निकल कर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर बनते हैं और उनके अपने गांव तरस जाते हैं आधारभूत मेडिकल सुविधाओं के लिए। हालांकि कितने ही ऐसे डॉक्टर घर वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने गांव में ही प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारी जरूरत हमारे घर में है, हमारे अपने गांव में। ऐसी ही थी ये कहानी डॉक्टर दिवाकर की, जो वापस अपने गांव आए और अपने गांव वालों के लिए उन्होंने काम किया। और इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम यानी पानी पर लिखी कहानी से चाहती हूँ आज्ञा। रश्मि कुकरेती आपसे कहती है नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रो केमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 वोटरों में से 32% से ज्यादा लोगों को गणन प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार शनिवार तक कुल 46,54,989 गणना प्रपत्र बांटे गए और 1,46,438 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। SIR प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए थे। जैकब बैथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 651 Indian Army personnel serving under the United Nations have been awarded the prestigious United Nations Medal during a ceremonial medal parade held at the permanent operating base Sake in the Democratic Republic of the Congo. The medals were presented during a ceremony honoring the Indian contingent for its professionalism, operational excellence and dedicated service under the United Nations peacekeeping mission.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। रात सुरमई हो तो भला दिल में उमंगे क्यों ना उमड़े, समुद्र में उफनती लहरों सी दिल की आवाज सुने या दिल की तन्हाइयों से कुछ बात करें। ये सफर कुछ ऐसा ही रहेगा, एहसास जज्बात सभी रंगों में रंगे गीत पहुंचेंगे आप तक। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

खुशबू की तरह आया वो मेरी जिंदगी में, खुशबू की तरह आया वो मेरी जिंदगी में और सांसों में इस तरह बसा कि जुदा होना मुश्किल हो गया।

0: समझ नहीं आता, इश्क है या इबादत अब समझ नहीं आता, एक तुम ही तुम नजर आते हो जहां तक दिल जाता है।
1: इतना काम, बीमार पड़ जाओगे। वैसे नाटक किस लिए?
2: तुम्हें ये नाटक नजर आ रहा है? मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है।
1: इतने बड़े घराने की लड़की होकर ये सब क्यों कर रही है? तुम्हारे एक इशारे पर सैकड़ों नौकर आकर ये काम कर जाएंगे, फिर ये दिखावा क्यों?
2: मुझे सफाई देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ। यूसुफ की माँ हमारे यहाँ नौकरी किया करती थी। बचपन में उसी ने मुझे पाला, माँ से ज्यादा प्यार दिया। जब उसकी अपनी बेटी जूनी मर गई तो वो नौकरी छोड़ के यहाँ वापस आ गई। अब जब भी मैं कश्मीर आती हूँ कुछ दिन उनके साथ बिताती हूँ, उनके लिए वही सब करती हूँ जो उनकी अपनी बेटी किया करती थी। इससे मुझे चैन मिलता है और एक तरह का सुख भी। मैं ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझे आप। मैं आरती हूँ, काजल की बेस्ट फ्रेंड। उसे नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया। जानते हैं वो यहाँ सिर्फ आपके लिए आई है, बचपन से उसे जानती हूँ, बहुत जिद्दी है। अगर वो आपके लिए यहाँ तक आ सकती है तो आपको छोड़ के जा भी सकती है। आप खड़ी खड़ी देख क्या रहे हैं? अगर वो अभी चली गई तो आप जिंदगी भर तरसेंगे, पछताएंगे।
1: काजल, I'm sorry, काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
2: तो कहो।

इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। ये तो वो एहसास है जो बस रूह से रूह तक होता है।

तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तो इस जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे नाम हो जाए।

दिन का हर एक लम्हा, रात की हर एक घड़ी बस तुम्हारी यादों की उंगली थामे गुजरती है। कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं मोहब्बत में जहां ना वक्त का होश रहता है और ना दुनिया का।

इसी के साथ अब अंजलि आपसे लेगी इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में सुनिएगा समाचार और आगे का सफर एफएम गोल्ड का जारी रहेगा आपके लिए रूपा के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को

स्वागत है आप सभी का हमराही कार्यक्रम में। आज आपके लिए संजोकर लाए हैं हम हमराही कार्यक्रम में वो युगल गीत जिसमें प्यार का मीठा एहसास है, जिसमें दो दिलों की कहानी है, एक दूजे में खो जाने की प्यार भरी दो दिलों की दास्तान है। इन युगल गीतों के साथ सजाकर आपके लिए लाए हैं हम हमराही कार्यक्रम। जी हाँ, और आज के हमराही कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ, हमराही कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। बस स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और सुन रहे हैं हम हमराही के जरिए मोहब्बत की कहानियाँ। जी हाँ, प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए कुछ युगल गीतों को याद कर रहे हैं हम, जिन्हें आज भी हम दिल लगा कर सुनते हैं, जो आज भी हमारे जहन में समाये हुए हैं। चलिए सुनते हैं अगला ही नगमा हमराही कार्यक्रम में, और आज आपके साथ हूँ मैं रूपा धवन। वक्त हुआ है 3:23 और 17 सेकंड।

तुमसे मुलाकात हुई, आज फिर तुमसे मुलाकात हुई, जैसे सूखी जमी पर बरसात हुई। बातों में कुछ खामोशी भी थी, बातों में कुछ खामोशी भी थी, आंखों में लेकिन 100 बात हुई।

साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल होता है। इस एहसास को सिर्फ दिल की धड़कनें ही समझ सकती हैं। सुनते हैं एक ऐसा ही दिलकश नगमा जिसके शब्द बहुत ही खूबसूरती से पिरोए गए हैं। फिल्म है आप आए बहार आई, और इसमें क्या महसूस कर रहे हैं दो दिल, आइए जानते हैं।

सिर्फ और सिर्फ धड़कने ही समझ सकती हैं। सुनते हैं अगला नगमा ऐसा ही कुछ बेहद ही खास। इस नगमे को हम ले रहे हैं फिल्म मन मंदिर से किशोर कुमार साहब की आवाज़ में।

हमराही में आप सुन रहे हैं उन युगल गीतों को जिन्हें आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, बार बार गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत जिसे हम शामिल कर रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से।

दुनिया की रस्मों से चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं, वक्त के थपेड़ों से चाहे राहें कितनी भी जुदा हो जाएं, पर जो रूह से बंधा है वो बंधन कभी टूटेगा नहीं। ये सच्चा प्यार है साहब, जमाने के आगे कभी झुकेगा नहीं।

और आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसे अपनी पुरनूर आवाज से सजाया है लता जी ने और उनके साथ नरेंद्र चंचल जी ने। फिल्म दो शत्रु जिसके संगीतकार हैं आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी, और सुनते हैं इसी खूबसूरत से गीत को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा की भी संभावना लगाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिसके भीतर अरुणिमा सा उजाला होता है, उसका हर रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। जी हाँ, अरुणिमा यानी सुबह की लालिमा या उगते हुए सूर्य की चमक। अदब में साहस को समर्पित ये खूबसूरत सा नाम और अरुणिमा बनकर धीरे धीरे अंबर पर नया सवारा लेकर आ रही है वो रोशनी की किरण, और रात के हर अंधेरे को मिटाती जाएगी धीरे धीरे। स्वागत है आप सभी का अरुणिमा में, जहां आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आपकी यादों में रचे बसे हम और हमारी यादों में रचे बसे आप, तो ऐसे में क्यों ना एक गीत आपके नाम कर दिया जाए।

0: साथियों, अरुणिमा का ये सफर जहाँ धीरे धीरे रात गहराती है और सुबह की मध्यम रोशनी धीरे धीरे अपनी चादर तानने की तैयारी करती है, वहीं ठंडी हवा के झोंके कानों को सुकून देती खामोशी भी अपने पांव पसार लेती है। इस खामोशी में एक अलग ही एहसास है, ठहराव का। आइए इसे महसूस करें कुछ चुनिंदा गीतों के साथ। मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर साहब की पुरनूर आवाज में आप सभी के लिए।
1: मुझे सारे गामा नी धा पा गा धा पा सा नी धा, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो मानेंगे नहीं, हमारी जनता ये सोच नहीं सकती। मुझे कुछ नहीं आता।

साथियों, हमारा मन ही सबसे बड़ा हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसका मन उसके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक की तरह काम करता है। सकारात्मक विचारों और आत्मनियंत्रण से हम अपने मन को बेहतरीन सोच की दिशा में मोड़ सकते हैं। यकीन नहीं आता तो करके देखिए और फिर हमें बताइएगा। कहां पर? आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल आप जुड़े हैं अरुणिमा में रूपा धवन के साथ।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा के इस खूबसूरत से सफर पर, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुप्रभात।

दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। जी हाँ, आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हैं। हर नया दिन अपने साथ नया अवसर और नई ताकत लेकर आता है। अगर आप मजबूत और सक्षम बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप पर यानी खुद पर विश्वास रखना होगा। जी हाँ, आत्मविश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको निखारता है और संवारता है। अरुणिमा के सफर पर हम सुन रहे हैं कुछ गीतों को और बातें कर रहे हैं सकारात्मक सोच वाली। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, जहां आप हैं रूपा के साथ।

कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, यानी चुनौतियाँ, मुश्किलें जिनका सामना हम करते हैं, पर ये मुश्किलें हमारा रास्ता रोकने नहीं बल्कि रास्ता सिखाने के लिए आती हैं। बस हमें धैर्य से काम रखना होता है। वक्त चाहे कैसा भी हो बदलता ज़रूर है, बस हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत कभी ना कभी तो एक ना एक दिन तो जरूर रंग लाएगी। कारवा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में।

समय हो चला है 4:44 और 35 सेकंड। आप हैं रूपा धवन के साथ अरुणिमा कार्यक्रम में। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं आपकी और आपकी खुशियों की। जी हाँ, हमारा जीवन जो है ना, जो हमें मिला है, हमें उसके लिए अगर खुशी और शांति की तलाश है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे पास है उसका शुक्रिया मानिए और जो पाना है उसके लिए प्रयास कीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि विचार ही आपका और हमारा भविष्य तय करते हैं। सुनते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

साथियों, हमने बात की खुशी और शांति की। खुशियां सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सादगी तो उसमें है जब हम दूसरों की भी मदद करते हैं, और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम किसी बेसहारा की मदद करते हैं या जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो, और उसके जो खुशी के पल होते हैं, आँखें बयां करती हैं उन खुशी के पलों को जब आप उनकी सहायता करते हैं। वो लम्हा अपने आप में एक छोटी सी कहानी कह जाता है। तो ऐसे खुशी के मौसम हम सबकी ज़िंदगी में आए तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। आक्रमण फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाज़ में।

कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को खूबसूरत बनाकर आने वाले कल को ज़रूर संवारा जा सकता है। अरुणिमा का सफ़र सिर्फ यहीं तक, अभी भोर सुहानी लेकर फिर से आपके साथ रहूँगी और अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। तब तक के लिए विदा दीजिए, रूपा को नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मृगनयनी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी

0: ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सारणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रावोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही इस समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi

सारी, गूंज रहा आकाश, भोर सुहानी बिखेर रही है चारों ओर प्रकाश। हरी घास पर ओस की बूंदें चमकी बनकर मोती, भोर सुहानी बिखराई जग में सुख की पावन ज्योति। जी हाँ, रात का हर अंधकार मिटाकर, सब परेशानियां मिटाकर, नई उम्मीदों की रोशनी लेकर भोर सुहानी आ गई है। कुदरत का ये निराला रूप हम सबके जीवन में एक नए उजाले के साथ आया है और हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात, नमस्कार। आइए स्वागत करें इस सुहानी सी भोर का और नाम लें उस प्रभु का जिसने हमें एक और नई सुबह दी, एक और नया दिन दिया।

सूरज की लालिमा धीरे धीरे अंबर पर छा रही है, सूरज भी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है। इस भोर सुहाने की सुंदरता कुदरत में किस तरह से समाई है, ये आइए जानते हैं इस गीत के माध्यम से, जिसे हम शामिल कर रहे हैं वासना फिल्म से, रफी साहब और लता जी के स्वर में।

किसी ने क्या खूब कहा है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको अस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। माना कि जब मुश्किलें आती हैं हमारे ऊपर तो हमें हताशा तो होती ही है, लेकिन उस हताशा में से भी आशा की किरण छोटी सी कहीं ना कहीं से झांक रही होती है, जो उस समय हमें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब हम हिम्मत रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो उस आशा की किरण का दामन थामकर हम आसान से उन मुश्किल राहों को पार कर जाते हैं। क्योंकि अगर एक अंधेरा है तो लाखों सितारे भी हैं हमारी जिंदगी को, हमारी जिंदगी की राहों को रोशन करने के लिए।

जो हमारे दोस्त अभी जुड़े हमारे साथ, तो आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये समय है भोर सुहानी कार्यक्रम का और इस वक्त समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 5:30:15। आप हैं रूपा के साथ। तो दोस्तों, भोर सुहानी जो है ना, भोर सुहानी हमारे लिए कुछ चुनौतियाँ भी लाती हैं, कुछ खुशियाँ भी लाती हैं। माना कि हर कदम पर एक नई ताजगी भी होती है और कुछ गहराई भी होती है, जी हाँ, जो पिछले दिन की यादों से जुड़ी हुई होती है। पर अगर लालिमा चाहिए है और हमारे लिए एक ऐसा संदेशा लाई है कि सूरज ने अंगड़ाई ली है और कुदरत में ऐसा रंग घुल गया है कि उस रंग में हमें भी रंगने का संदेश देती है भोर सुहानी, तो हम क्यों ना उसके रंग में रंगे। लबों पर हमें हंसी लेकर, आंखों में नए ख्वाब सजाकर, इस भोर सुहानी का खुलकर मुस्कुराकर स्वागत करना है और धन्यवाद देना है कि आज